हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरंजनी में अभी आप सुन रहे थे गायन, कलाकार थे नदीम अहमद खान, आपने प्रस्तुत किया राग अलैया बिलावल। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, लीजिए अब प्रस्तुत है हिंदी में समाचार और फिर अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित तरीकों की रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
2: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: इस कार्यबल में आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह पहल की गई है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है।

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वॉल्ट्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वॉशिंगटन जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबन

0: लगभग 24 घंटे तक चले खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू सैखोम ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। उधर भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Subhadra Ramachandran. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-power task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. Besides, former Education Secretary Anita Karwal and Logistics Expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament today with stringent provisions to deal with examination-related irregularities.
2: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: Union Minister Prahlad Joshi assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post on Saturday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Delhi government has constituted the Delhi Commission for Women and the Delhi Minorities Commission. Lata Gupta has been named chairperson of the Delhi Commission for Women with Shambhala Malti Verma, Lata Sodhi, Sandrika Sharma Jha and Renu Bhalla appointed as members. Nirmal Jain has been appointed chairperson of the Delhi Minorities Commission with Kuldeep Singh and Muhammad Haroon as members. Chief Minister Rekha Gupta stated that these initiatives aim to enhance the protection of women's rights, support the empowerment, ensure the welfare of minority communities and safeguard their constitutional rights. A deep depression over the Bay of Bengal is likely to intensify monsoon activity in Odisha from today, with the India Meteorological Department issuing red alerts for several districts. As a precautionary

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 6:40 होने को हैं। अब कार्यक्रम होगा चिंतन, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे चाणक्य के विचार।

एक बार चंद्रगुप्त मौर्य के मन में न जाने क्या बात सूझी और उन्होंने आचार्य चाणक्य से कहा, महामंत्री जी, कितना अच्छा होता कि आप प्रतिभावान होने के साथ साथ बहुत अधिक सुंदर भी होते। राजा का सवाल सुनकर चाणक्य हैरान परेशान कुछ सोचने लगे। इस बीच महारानी बोल पड़ी, महाराज, वस्तुतः किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके सौंदर्य से नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा से होती है। यह सुनकर चंद्रगुप्त बोले, महारानी, आप तो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति हैं, आपकी सुंदरता के चर्चे हर जगह होते हैं, आप ऐसी बातें कैसे कर रही हैं? और नारी होने के कारण आपको तो सौंदर्य पर अधिक बल देना चाहिए। इस बीच चाणक्य पानी के दो ग्लास भरकर ले आए और जल चंद्रगुप्त की ओर बढ़ाते हुए बोले, महाराज, लीजिए, आप पहले शीतल जल पीजिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर दो ग्लास बारी बारी से बढ़ा दिए। फिर उन्होंने पूछा, महाराज, आपको कौन से ग्लास का पानी अच्छा लगा? पहले ग्लास में स्वर्ण कलश का पानी था और दूसरे ग्लास में मिट्टी से निर्मित मटके का। चंद्रगुप्त बोले, मुझे तो मिट्टी से निर्मित मटके का पानी ज्यादा अच्छा लगा, उसे पीने से मैं तृप्त हो गया, लेकिन स्वर्ण कलश का पानी पीने योग्य नहीं था। लेकिन आपने ग्लास अपने हाथ से दिया था, अतः न चाहते हुए भी मुझे पीना पड़ा। महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, प्रधानमंत्री जी ने बुद्धि कौशल से आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। स्वर्ण निर्मित कलश देखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन उसका जल पीने योग्य नहीं होता। दूसरी ओर मिट्टी से बना मटका देखने में भले ही सुंदर न लगे, लेकिन उसका पानी शीतल और सुस्वादु होता है। अब आप ही निर्णय करें कि सुंदरता बड़ी होती है या प्रतिभा। अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र के रचयिता चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व से 350 साल पहले हुआ था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। वे आजीवन राजसी ठाट बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनके असंख्य विचार आज भी हम सबको सही राह दिखाते हैं। उनका मानना था कि आलसी मनुष्य का न कोई वर्तमान होता है न ही भविष्य, और भाग्य भी उनका ही साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। जो व्यक्ति शक्ति न होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। वे हरदम इसी सिद्धांत में विश्वास करते रहे कि कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आपने सुना चाणक्य के विचार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहें हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम श्री रामचरित मानस बालकांड भाग 129।

राजा दशरथ के महलों में नववधुओं के स्वागत सत्कार तथा अन्य विधियों की समाप्ति के साथ रात्रि का आगमन होता है। सभी कुमार उनीदे हो रहे हैं, किंतु माताओं की जिज्ञासा का अंत होता नहीं दिखता। राम लक्ष्मण जैसे सुकुमार बालकों ने किस प्रकार ताड़का जैसी भयानक राक्षसी तथा मारीच और सुबाहु जैसे बलशाली राक्षसों का वध किया होगा, किस प्रकार ऋषि मुनियों के यज्ञ में डाली जाने वाली विघ्न बाधाओं का नाश करके दोनों किशोरों ने गुरु कृपा से विद्या पाई। जिज्ञासाओं का अंत नहीं। दीर्घ अवधि के बाद पुत्रों का मुख देखकर माताएं हर्ष ममता जनित उद्गार तथा तृप्ति से ओतप्रोत हो रही हैं। अपने विनय भरे वचन से माताओं के प्रश्नों के उत्तर देकर श्री राम उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में सिर नवाकर नींद की गोद में विश्राम करने लगते हैं।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा परिष्कारार्थम् उच्चस्तरीय कार्यबलस्य निर्माणस्य घोषणां कृतवान्। अस्य कार्यबलस्य अध्यक्षतां विख्यातः प्रौद्योगिकी विशेषज्ञः नन्दन नीलेकणी करिष्यति। अस्मिन् कार्यबले आईबी इत्यस्य पूर्व निदेशकः तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्षः एस सोमनाथः, आईआईटी चेन्नई इत्यस्य पूर्व निदेशकः वी कामकोटिः, पूर्व शिक्षा सचिवा अनीता करवालः तथा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञः अमित लाल मीणा च सदस्याः भविष्यन्ति। एकस्मिन् दृश्य श्रव्य संदेशे प्रधानमंत्री अवदत् यत् एतत् कार्यबलं परीक्षा व्यवस्थायाः सुदृढीकरणे विशेषं ध्यानं प्रदास्यति। तस्य अनुशंसानां आधारेण भावि परीक्षाणां विश्वसनीयतां सुनिश्चेतुम् आवश्यकोपायाः यथाशीघ्रं क्रियन्ते। तेन एतदपि उक्तं यत् परीक्षा सम्बद्धानां अनियमिततानां निवारणाय कठोर प्रावधानयुक्तं नूतन विधेयकं प्रशासनम् अद्य संसदि प्रस्तौति।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
0: प्रशासनम् अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतस्य विधेयकस्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमं 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनमस्ति। केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। गतशुक्रवासरे केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगे परीक्षासु च अनुचित साधन प्रयोगस्य प्रकरणेषु द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय दोषिभ्यः कठोरतर दण्ड विधानं च सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकं अनुमोदितम्। केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी शिक्षामन्त्रिणः कार्यभारं अधिगृहीतवान्। धर्मेन्द्र प्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं गतशनिवासरे सः अस्मिन् पदे नियुक्तः। श्रीजोशी स्ववर्तमान मंत्रालयैः सह शिक्षा मंत्रालयस्य दायित्वमपि निर्वहिष्यति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् पाकिस्तान देशेन सह कापि वार्ता न भविष्यति। भारतस्य सम्पूर्णं ध्यानं केवलं पाकिस्तानाधिकृतस्य जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य भागं पुनः प्राप्तौ एव भविष्यति।
2: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: रक्षामंत्री ह्यः लद्दाखस्य द्रासनगरे 27वं कारगिल विजय दिवस समारोहं संबोधयन् एतद् वक्तव्यं प्रदत्तवान्। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली महिला आयोगस्य दिल्ली अल्पसंख्यक आयोगस्य च निर्माणं कृतम्। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोगस्य अध्यक्षा नियुक्ता, तया सह श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, सरनिका शर्मा झा च रेणु बल्ला सदस्यत्वेन नियुक्ताः। निर्मल जैन इत्येषः दिल्ली अल्पसंख्यकायोगस्य अध्यक्षः नियुक्तः। अमेरिका ईरान देशौ द्वितीय दिने आक्रमणानि स्थगितवन्तौ, येन प्रायः सप्ताहद्वयानन्तरं वर्धमानस्य सैन्याक्रमणस्यानन्तरं अन्तरिमयुद्धविरामविषये पुनः वार्तालापस्य सम्भावना समुत्पन्ना। संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य अमेरिका देशस्य राजदूतः माइक वाल्ट्ज इत्येषः ह्यः अवदत् यत् राष्ट्रपति ट्रम्पः कूटनीतेः अवकाशं प्रददाति। ग्लास्को नगरे प्रचलितासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु महिलानां 48 किलोग्राम स्पर्धायां भारतीय भारोत्तोलिका मीराबाई चानू इत्येषा स्वर्णपदकं विजितवती। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। श्री मोदी ने वीडियो संदेश में कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
3: कार्यबल में आसूचना ब्यूरो आईबी के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्याम बाला मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समुदाय का कल्याण और उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये पहल की गई है। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के राजदूत माइक वॉल्ट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमान, ईरान और अन्य पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल वाशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्षेत्रीय हालात पर चर्चा करेंगे। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 29 लोग घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लॉट के तौर पर हुई है। लगभग 24 घंटे की खोजबीन अभियान के दौरान शहर के बाहरी इलाके में हमलावर को मार गिराया गया। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आपने सुना संचिता रॉय द्वारा दुजेंद्र गीत। सितार पर थे अकील अहमद, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी और तबले पर प्रदीप्ता महाराणा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आरती गौड़ और आपको बताने आई हूं कि सुबह के 7:31 हो चुके हैं। सुबह हो चुकी है और एक नया दिन आपके लिए अपनी बाहें खोले खड़ा है। सोमवार का ये दिन है, शंकर जी का ये दिन है और आज के दिन कहते हैं कि उनसे जो मांगो वो बड़े भोले हैं, आपकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आप सबकी खुशी और मुस्कुराहट मांग लूं। और फिलहाल आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके लिए हमेशा की तरह मैं ताज़ा तरीन कुछ प्यारे प्यारे नगमे और एक खूबसूरत सी कहानी भी लेकर आई हूँ, लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

तो दोस्तों, भोलेनाथ का नाम लेके हमने कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। कार्यक्रम का नाम है गीतों भरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त, और मुझे पता है कि इस गीत को सुनने के बाद आपका जो मूड है वो बिल्कुल ही बदल चुका होगा। आप सिर्फ भक्ति मूड में नहीं बल्कि कुछ करने के मूड में भी आ चुके होंगे। दिल बहुत कुछ आपका चाह रहा होगा और भी करने का। तो चलिए, उसके लिए भी मेरे पास एक खूबसूरत सा गाना है, दिल चाहता है।

जी हाँ दोस्तों, हर दिन दिल बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ पाना चाहता है, और ये जो दिल है ये मानता भी नहीं है। पर एक बात ये भी है कि हम किसी भी परेशानी में भी फंसना नहीं चाहते। हमें लगता है कि सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, लेकिन बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी स्ट्रगल और बिना किसी मेहनत के चाहिए। पर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? कई बार तो हम भगवान से शिकायत करने पहुंच जाते हैं कि भगवान जी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि जब हमें कुछ मिल रहा होता है तब हम ये नहीं कहते कि मुझे ही क्यों दिया। जबकि तकलीफ आने पर हम शिकायतों का मोड ऑन कर देते हैं, और जब सब कुछ मिल रहा

अच्छा अच्छा हो रहा होता है तब हम कहते हैं कि ये सब तो मुझे मिलना चाहिए था ना, मैं डिजर्व करता हूँ या डिजर्व करती हूँ, कुछ ऐसा ही सोचते हैं ना। फिलहाल आज हमारी जो कहानी है कुछ इसी से जुड़ी हुई है, उस कहानी को भी मैं सुनाऊंगी आपको, लेकिन उसके पहले इसी गीत को इंजॉय करते हैं।

दोस्तों, हमेशा की तरह आपके लिए एक ऐसी कहानी मैं लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आपको कुछ न कुछ सीखने जरूर मिलेगा। जिंदगी की परेशानियों से अक्सर अगर आप घबराते हैं तो ये कहानी बस आप ही के लिए है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक मूर्तिकार थे और वो पत्थर से मूर्ति को तराश रहे थे। उन्होंने एक पत्थर उठाया और छेनी और हथौड़ी और अपने सारे सामान जो भी हैं उनसे वार करना उस पत्थर पर शुरू किया, क्योंकि उन्हें तो उस पत्थर से कुछ बनाना था। पत्थर दर्द से चीख उठा, चिल्लाने लगा, कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो मूर्तिकार ने तरस खाकर उस पत्थर को साइड में रख दिया, उसको छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरा पत्थर उठाया, उस पर भी उन्होंने वही सब प्रहार किए, लेकिन उस पत्थर ने सब कुछ शांत रहकर सह लिया। कुछ ही समय में उस दूसरे पत्थर से भगवान की एक बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति बन गई। मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया गया। लेकिन आपको पता है कि उस पहले पत्थर का क्या हुआ? वो भी बताऊंगी, पहले गीत को तो एंजॉय कर लें।

तो दोस्तों, मैं आपको कहानी सुना रही थी दो पत्थरों की, जिसमें एक पर प्रहार हुआ तो वो चीखने लगा और उसे साइड में रख दिया गया, लेकिन दूसरे ने बिल्कुल भी उस दर्द का मतलब जो था अंदाज़ा ऐसा लगाया कि उसने सह लिया उस दर्द को, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये यकीन था कि मैं आज अगर दर्द सह लूँगा तो कल मेरी ज़िंदगी की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। और ऐसा ही हुआ, उस पत्थर की मूर्ति से बने भगवान और भगवान की उस मूर्ति को स्थापित किया गया, कहाँ पर, मंदिर में। लेकिन जो दूसरा पत्थर था उसका क्या हुआ, यही आप सोच रहे हैं ना, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उसका क्या हुआ। उस दूसरे पत्थर को मंदिर के दरवाजे पर रख दिया गया, किस काम के लिए, नारियल फोड़ने के लिए। अब रोज आते जो दर्शालु होते, जो भक्त होते, वो सारे के सारे आते और उस पर सैकड़ों लोग नारियल फोड़ते, जबकि जो दूसरा पत्थर था वो रोज पूजा जाता था। कुछ समझ में आया दोस्तों क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जो छोटी छोटी मुश्किलों से घबराते हैं वो अपनी मंजिल को कभी नहीं पा सकते। जो हर रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को बना लेते हैं, जो कहते हैं कि नहीं, मैं परेशानियों से, जीवन की जो परेशानियां हैं, मेहनत है, उनसे मैं तो नहीं घबराऊंगा, मेरी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना है और मैं अपना 100% दूंगा, वही पहुंचता है मंजिल तक। तो इसीलिए अगर आज का दर्द सह लिया तो कल दुनिया आपकी कद्र करेगी। तो आप भी अगर चाहते हैं कि दुनिया आपकी कद्र करे तो फिर आपको भी उस दूसरे पत्थर की तरह बनने की कोशिश करनी होगी।

दोस्तों, इस कहानी से मुझे पूरा यकीन है कि आपको सीखने को मिल गया होगा कि ज़िंदगी में जब आपकी कुछ परेशानियाँ आएँ, कुछ मुश्किलें आएँ और आपको लगने लगे कि अब तो जैसे सब कुछ ख़त्म होने सा हो रहा है, तब आपको अपने मन के अंदर ये विश्वास जगाना है, ये उम्मीद जगानी है कि नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो काली रात आपकी ज़िंदगी में आई है, इसकी सुबह बहुत ही सुनहरी होने वाली है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से मुस्कुरा के निपटना है, क्योंकि ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दर्द नहीं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको लेकर बैठे रहते हैं या फिर आप उसके साथ आगे बढ़ते हैं और उसे मुस्कुरा कर सह कर दिखा देते हैं ज़माने को कि देखिए, मैंने ये भी सहा था तब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी है और साथ ही आपको ये गीत सुनना है।

तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ अब आप अपनी जीवन की परेशानियों से दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आपको इस कहानी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम से मुझे यानी अपनी दोस्त आरती को दीजिए इजाजत। आपके लिए मैं फिर से हाजिर होंगी कोई एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी लेकर, जो आपको कुछ और सिखा सके। लेकिन फिलहाल आने के लिए जाना पड़ता ही है, तो फिलहाल अभी इस कार्यक्रम से आपसे इजाजत ले रही हूँ। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम की तो भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के,
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
8: लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
7: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंध विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संद्रिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
2: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि विकसित गांव ही विकसित भारत की मजबूत नींव है और इस लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार की सीमावर्ती गांव पहले गांव की सोच के तहत इन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कई गांवों तक सड़क, बिजली और नल से जल जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं।
2: हर कठिनाई के बावजूद सीमावर्ती गांवों के लोग देशभक्ति को पल प्रतिपल जीते हैं। कुछ वर्ष पहले तक तो बॉर्डर के गांवों को अंतिम गांव कहकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, ऐसी हर बेसिक सुविधाओं का अभाव था और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी सीमावर्ती गांवों के लोगों की देशभक्ति कभी भी कमजोर नहीं पड़ी।
1: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे।
2: भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से आज उड़ीसा में तेज वर्षा का पूर्वानुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
3: उड़ीसा में आज मानसून का जोरदार असर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण राज्य भर में व्यापक बारिश हो रही है। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह या दोपहर के समय पारादीप और सागर द्वीप के बीच उत्तरी उड़ीसा पश्चिम बंगाल तट को पार करने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़, केंदुझर और मयूरभंज जिले के लिए रेड वार्निंग जारी की है, जबकि कई उत्तरी, मध्य और तटीय जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में आज कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन,

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की।
1: मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए, और इस बार भी मेडल दे तो पाऊंगी। इस बार सोच रहा था कि पूरा इंडियन वेटलिफ्टिंग टीम को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मेरा थर्ड गोल है और मेरा फोर्थ मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, इससे और ज्यादा खुशी क्या हो सकता है।
0: इससे पहले ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या अब 4 हो गई है, इसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में कांस्य पदक जीतकर देश का खाता खोला था। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। जिम्बाब्वे निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सका। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वेक्टर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। परीक्षा में सुधार के लिए प्रधानमंत्री के टास्क फोर्स बनाने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पेपर लीक पर प्रहार के लिए टास्क फोर्स बनाई, मोदी का ऐलान, नंदन नीलकर्णी होंगे अध्यक्ष, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक पर जोर। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने नीलकर्णी को सौंपा परीक्षा में सुधार का जिम्मा। अमर उजाला ने इस्तीफे से आगे शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण से पैदा हुए युवाओं के आक्रोश के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा राजनीतिक परिस्थितियों की अनिवार्य परिणति माना जा सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह कदम देश के समग्र परीक्षा तंत्र में सुधार की कोई वास्तविक गारंटी बन सकेगा। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से लिखा है, जेन जी का सबक, रील ने बदली राजनीति, अब आईटी नहीं इंस्टाग्राम सेल, युवा शक्ति ने बदली आंदोलन की तस्वीर, पार्टियां बदलेंगी रणनीति। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, पाकिस्तान से अब बातचीत सिर्फ गुलाम जम्मू कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने कहा, सेना को दुश्मन के घर में घुसकर मारने की खुली छूट, करगिल की विजय आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जनसत्ता ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है, भारत वैश्विक रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा, श्री मोदी ने करगिल युद्ध के वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नवभारत टाइम्स के अनुसार 13 दिन के बाद अमेरिका और ईरान ने रोके अपने हमले, सीज फायर पर बात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। हिंदुस्तान का शीर्षक है, पिनाक खरीदने के लिए देशों में होड़, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के बाद एक और हथियार प्लेटफॉर्म को भी कई देश खरीदने के इच्छुक। पत्र के अनुसार अगस्त में रफाल विमानों के सौदे पर जवाब सौंपेगा फ्रांस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मीराबाई चानू ने ग्लासगो में जीता गोल्ड, लहराया तिरंगा, ऋषिकांत को रजत, भारतीय पुरुष 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले टीम भी फाइनल में। दैनिक भास्कर ने खास खबर में लिखा है, दिमाग जीत जल्द भूल जाता है, हार याद रखता है, आत्मविश्वास का खाता बनाइए, खुद पर शक होने लगे तो यह बताइएगा आप हारेंगे नहीं।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की।

0: Chhattisgarh today. And India's weightlifting queen Mirabai Chanu wins third successive Commonwealth Games gold medal in women's 48kg category. Rishikant Singh bagged silver in men's 60kg class. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में तरमीम का 2026 का बिल पेश करेगी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने सभी अरकान पार्लियामेंट से जोर देकर कहा है कि वो इम्तिहान के इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकणी की सरबराही में आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है। वजीर आजम ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के सरहदी गांवों के साथ अपने राब्तों को मुस्तहकम करें। उन्होंने तरक्की याफ्ता गांवों को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया। भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। और भारत की माया नाज वेटलिफ्टिंग एथलीट मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम जुमरे में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में लगातार तीसरी बार सोने का तमगा जीता है। ऋषिकांत सिंह ने मर्दों के 60 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में 2026 का तरमीमी बिल पेश करेगी। ये बिल आज कामकाज में लाजमी तौर पर शामिल है। इस बिल में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीके अपनाए जाने की रोकथाम के 2024 के कानून में तरमीम के लिए कहा गया है। ये बिल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। जुमे को मरकजी काबीना ने तेज रफ्तार अदालतें कायम करने के लिए इस बिल के मसवदे को मंजूरी दी थी, ताकि पेपर लीक और इम्तिहान में गलत तौर तरीकों के मामलों में सख्तर सजा को यकीनी बनाया जा सके। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट के सभी अरकान से अपील की है कि वो इम्तिहानात की इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि नौजवान नस्ल की आवाज़ सुनकर और तलबा के मुस्तकबिल के लिए वजीर आजम मोदी की तरफ से किए गए तारीखी फैसले के बाद वो सभी अरकान पार्लियामेंट से अपील करते हैं कि वो आज बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। एक रिपोर्ट।
2: इस बिल में पेपर लीक के किसी भी केस से निपटने के लिए सख्त सजाओं पर मबनी शिकायतें शामिल की गई हैं। इस बिल में 7 अहम तरामीम की गई हैं, जिनका मकसद कानून लागू करने में खामियों को दूर करना, खुसूसी अदालती निज़ाम कायम करना और फौजदारी मुकदमात में तेज़ी लाना है। इस बिल में तहकीकात और कानूनी कार्रवाई के लिए एक सख्त फ्रेमवर्क तश्कील दिया गया है, जिसका मकसद 2024 के फ्रेमवर्क में खातिरखा बेहतरी लाना है। रियासती सरकारों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की इंतज़ामिया को, सेशन अदालतों को खुसूसी टास्क फोर्स अदालतों के तौर पर नामजद करने के अख्तियार दिए जाएंगे, जो मजकूरा कानून के तहत जराइम के खिलाफ खास तौर पर कानूनी कार्रवाई अंजाम देंगी। बिल की शिकों के मुताबिक खुसूसी टास्क फोर्स की अदालतें रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमात की सुनवाई करेंगी, जिनके लिए लाजमी होगा कि वो फर्द जुर्म दाखिल किए जाने की तारीख से 3 माह के अंदर अंदर मुकदमे का फैसला सुनाएं। न्यूज़ डेस्क से कौमुदी पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की इस्लाहात के लिए टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर नंदन नीलकणी की क़यादत में एक आला इख्तियाराती टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि यह टास्क फोर्स इम्तिहानात की इस्लाहात पर गौर करेगी और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द अज जल्द मुमकिन इकदाम किए जाएंगे, ताकि आइंदा इम्तिहानात के एतबार को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुल्क का इम्तिहानात का निज़ाम काबिल एतबार, शफाफ और टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। ये टास्क फोर्स साबिक आईबी डायरेक्टर तपन डिका, इसरो के साबिक चेयरमैन एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोटी पर मुश्तमिल होगी। इनके अलावा तालीम की साबिक सेक्रेटरी अनिता कारवाल और लॉजिस्टिक्स के माहिर अमृत लाल मीना भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे।

0: वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट में हुकूमत इम्तिहानात से मुतालिक सख्त कानूनी शिकों वाला एक नया बिल पेश करेगी। जनाब मोदी ने मुकाबला जाति इम्तिहानात की दयानतदारी और लाखों तलबा के मुस्तकबिल के तहफ्फुज़ के हुकूमत के अज़्म को भी उजागर किया।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के सरहदी गांवों के साथ अपने राब्तों को मजबूत बनाएं। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वसीले से विकसित दरख्शां गांव पर प्रोग्राम के शुरका से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने तरक्की याफ्ता गांवों को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया। वजीर आजम ने मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म के जरिए मुल्क की तामीर में नौजवानों के बढ़ते हुए रोल की सताइश की। उन्होंने कहा कि जब नौजवान समाज की निचली सतह पर हकायक से वाबस्ता होते हैं तो सबकी शमूलियत वाली तरक्की की जानिब भारत के सफर को मुस्तहकम बनाते हैं।
1: विकसित वाइब्रेंट विलेज की ये यात्रा सबको जोड़ने और सबसे जुड़ने का ही एक सशक्त माध्यम है और अब आप सभी की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ गई है। आपकी ये यात्रा यूनिटी थ्रू पार्टिसिपेशन की यात्रा है। भारत का युवा जितना ज्यादा भारत के सीमावर्ती गांवों को जानेगा उतना ही वो भारत को सरलता से जानेगा, वो भारत के कोने कोने के साथ सरलता से जुड़ेगा और ये प्रयास नई मजबूती का कारण बनेंगे।
0: वजीर आजम ने विकसित दरख्शां गांव प्रोग्राम के बारे में कहा कि ये कदम नौजवानों को तहरीक देने के लिए उठाया गया है ताकि वो मुल्क के सरहदी गांवों का दौरा करें, उन्हें समझें और इस सिलसिले में सरगर्म हों। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में नौजवानों ने ज़बरदस्त जोश व खरोश जाहिर किया और तकरीबन 3 लाख नौजवानों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिनमें 400 से ज़्यादा नौजवानों को मुंतखब किया गया है।
1: विकसित गांव विकसित भारत की आधारशिला है। विकसित भारत के निर्माण की यात्रा लगातार चल रही है और इसमें आप सभी युवा साथियों की बड़ी भूमिका है। इसलिए जब देश का युवा जमीन से जुड़ता है तो वो विकसित भारत के विजन को और व्यापक बनाता है। ये युवा मन में देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के संकल्प को और मजबूती देता है।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज साबिक सदर जमहूरिया और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब बिरला ने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक दूरंदेश और रोशन ख्याल शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने भारत को एक तरक्की याफ्ता, खुद कफील और मजबूत भारत बनाने का ख्वाब देखा था। उन्होंने कहा कि मुल्क की टेक्नोलॉजी से मिसाइल तैयार करने तक और भारत के खलाई प्रोग्रामों को नई बुलंदियों तक ले जाने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की खिदमात को भारतीय साइंस की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया है। कौम आज साबिक सदर जमहूरिया और नामवर साइंसदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। उन्होंने भारत के खलाई और मिसाइल के तरक्याती प्रोग्रामों में एक कलीदी रोल अदा किया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के तौर पर भी जाना जाता है। उनका 2015 में आज ही के दिन इंतकाल हुआ था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने डॉक्टर कलाम को खिराज अकीदत पेश करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दाखिला ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के खलाई और मिसाइल प्रोग्राम का मेमार बताया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के यौम तासीस पर सभी फौजी एहलकारों, अफसरों और उनके कुनबों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब बिरला ने कहा कि CRPF मुल्क को बाइख्तियार बनाने और उसकी सलामती में मुसलसल सरगर्म अमल है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन हमलों का सिलसिला रोके रखा, जिससे तकरीबन 2 हफ्ते से जारी फौजी कार्रवाई के बाद एक अबूरी जंगबंदी के बारे में ताज़ा मुज़ाकरात की उम्मीदें पैदा हुई हैं। अक़वामे मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर माइक वॉल्ट्स ने कहा कि सदर ट्रंप

0: शरारती कोशिशों का मौका दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओमान, ईरान और दीगर मुज़ाकरातकार हालिया हफ्तों में हर सतह पर बातचीत में सरगर्म रहे हैं। ईरानी फौज के एक तर्जुमान ने तस्दीक की है कि ईरान से खित्ते में जवाबी हमले रोक दिए हैं और जब से अमेरिका ने अपनी कार्रवाई बंद की है पिछली दो रातों से कोई हमला नहीं किया गया है। महकमा मौसमियात ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दूरदराज इलाकों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मशरकी उत्तर प्रदेश, गंगोत्री, मगरबी बंगाल, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र और उत्तराखंड के दूरदराज इलाकों में भी आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की उम्मीद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के दूरदराज इलाकों में आज शदीद बारिश हो सकती है। साहिली आंध्र प्रदेश, साहिली कर्नाटक, मशरकी मध्य प्रदेश, गुजरात खित्ते, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरला, माहे, पंजाब, विदर्भ और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के मौसम का इम्कान है। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने भारत की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू को मुल्क के लिए सोने का पहला तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी है। मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग जुमरे में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा जीता है। 31 साल वेटलिफ्टर ने स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। वेटलिफ्टिंग में भारत ने चांदी के भी मजीद दो तमगे हासिल किए हैं। बॉक्सिंग में जादूमणि सिंह मर्दों के 55 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं जबकि प्रीति पवार खवातीन के 54 किलोग्राम मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। मर्दों के क्रिकेट में कल हरारे में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलाक्वामी मैच में भारत ने मेज़बान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत की तरफ से जीत के लिए 193 रन का निशाना रखा गया था लेकिन जिम्बाब्वे की टीम मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 157 रन बना सकी। इससे पहले भारत ने 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए थे। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फ़ोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे पानी से पैदा होने वाली बीमारियों, उनकी रोकथाम, हिफाजती इकदाम और अवामी बेदारी के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ये मुजाकरा सेहत आम्मा के माहिर और पानी से पैदा होने वाली बीमारियों पर कंट्रोल के कौमी मरकज़ के साथ डायरेक्टर डॉक्टर अक्षय धारीवाल और एम्स नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 011-2342-1050 और 011-2331-4444। इसके अलावा आप अपने सवालात 9289-0940-44 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या हैशटैग #AskAIR के साथ एक्स पर भी भेज सकते हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
1: शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने इम्तिहान में इस्लाहात पर टास्क फोर्स कायम करने की खबर को अवलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, इम्तिहानी इस्लाहात के लिए आला सतही कमेटी के क्याम का ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, नंदन नीलकनी कमेटी की सरबराही करेंगे, हुकूमत तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुसलसल कोशां। रोजनामा प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर वज़ीर आज़म के बयान की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, खलाई शोबे में निजी शराकत दारों का मुस्बत नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। रोजनामा इनकलाब ने अपने आलमी सफ़े पर एक अहम खबर को सुर्खी बनाया है, ट्रंप का अमरीकी फ़ौज को ईरान पर जारी हमले रोकने का हुक्म, दो हफ्तों से जारी जंग थमा, ईरान ने भी हमले रोके। अखबारात की कुछ अहम सुर्खियां इस तरह हैं, प्रहलाद जोशी ने वजारत तालीम का चार्ज संभाला, मल्लाह बहिर असवद इलाके में काम करने से पहले खसूसी एहतियात बरतें, वजारत खारजा का बयान, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा में बारिश का रेड अलर्ट।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर, हुकूमत आज लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम के कानून में तरमीम का 2026 का बिल पेश करेगी। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने सभी अरकान पार्लियामेंट से जोर देकर कहा है कि वो इम्तिहान के इस्लाहात के बिल पर बहस मुबाहिसे में हिस्सा लें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन नीलकानी की सरबराही में आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील देने का ऐलान किया है। वजीर आजम ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो भारत के सरहदी गांवों के साथ अपने रابطوں को मुस्तहकम करें। उन्होंने तरक्की याफ्ता गांवों को विकसित भारत की बुनियाद करार दिया। भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आज बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारत की मायानाज वेट लिफ्टिंग एथलीट मीराबाई चानू ने खवातीन के 48 किलोग्राम जुमरे में दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों में लगातार तीसरी बार सोने का तमगा जीता है। इसी के साथ ये खबर।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वर गंगा। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप आनंद लेंगे उदय कुमार मलिक द्वारा धमार गायन का राग ललित। पखावज पर साथी रहेंगे सुभाशीष घोष।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर गंगा। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आपने सुना उदय कुमार मलिक द्वारा धमार गायन, राग था ललित, पखावज पर थे सुभाशीष घोष। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आर गेस्ट।

0: पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके मैं हाजर हाँ तुहाडी सेवा विच हरजीत कौर। अज असी तुहानू सुखप्रीत कौर दी एक वार्ता सुनवावांगे, बाल विआह मुकत भारत ते शब्द सरवण करांगे। पर पहला गल करदे हाँ हाँ पक्षी सोच विषय ते। कहंदे ने जे बंदे दी सोच चंगी होवे ना तां सारे काम बन जांदे ने। सोच यानी हाँ पक्षी सोच। हाँ पक्षी सोच दा मतलब है हाँ पक्षी नजरिए दे नाल जिंदगी दियां मुश्किलां दा सामना करना। हाँ पक्षी सोच बनाउण लई सानू हर चीज़ च चंगियाई नू लभना होएगा, अपनी जिंदगी च चंगे विचारां नू अपनाउणा होएगा, चंगा सोचना होएगा। जेकर तुसी जिंदगी च हाँ पक्षी हो तां तुसी खुश रहोगे, ते जे तुसी खुश हो ते तुसी सफला भी होगे। दुनिया च ओ मनुख हाँ पक्षी नहीं बन सकता जिस दे मन च क्रोध है, डर है, ईरखा है। जेड़ा मनुख इन्हां बुराइयां तो दूर है उस दा मन ही हाँ पक्षी मन है। ओही जिंदगी नूं चंगे तरीके बतीत कर सकता है। जे तुसी कोई काम शुरू करते हो ते उस काम नूं लैके ना पक्षी विचार रखते हो तां काम बनेगा ही नहीं। भावें तुहाडी मेहनत सच्ची होवे तां वी ओह काम ना पक्षी सोच दी वजह नाल पूरा नहीं हुंदा। इस लई जरूरी है कि हाँ पक्षी सोच अपना लो ते ना पक्षी सोच नूं त्याग दिओ। हाँ पक्षी सोच तुहाडे अंदर एक ऊर्जा भरती है। हाँ पक्षी सोच दे बगैर मनुख च किसी समर्था दा विकास नहीं हो पांदा, आत्म विश्वास पैदा नहीं हुंदा, मन सुचेत नहीं हुंदा। इत्थे एक गल ए वी है कि असीं शिकायत करना छड्डीए, कमियां कढ़ना छड्डीए। कदे खाली ना बैठो, खाली रहण नाल ना पक्षी विचार मन च आउंदे ने, हीण भावना आउंदी है। इस लई हमेशा कुछ ना कुछ करदे रहो, कम्मां च रुझे रहो। हाँ उन्हां लोकां तों दूर रहो जिहड़े ना पक्षी सोच रखते ने। योग करो जां कसरत करो, इस नाल ध्यान लगदा है अते चंगे विचार मन च आउंदे ने। मन च ना पक्षी विचार आउंदे होण तां इकल्ले ना बैठो, अपने परिवार नाल बैठो, चंगे मित्रां दा संग करो। पर मित्र भी हाँ पक्षी सोच वाला होवे। इस गल ते ध्यान दिओ कि तुहाडी जिंदगी च की चंगा है, माड़ा सोचो ही ना। ना पक्षी सोच कई समस्यावां नूं जन्म दिंदी है। जिवें सुणीदा है कि फलाना मनुख डिप्रेशन दा शिकार हो गया, किसे दे दिमाग ते स्ट्रेस बहुत है, कई लोकी एनजाइटी दी दवा लैंदे वेखे गए ने। ते जे इस तरह दीयां समस्यावां आ जाण तां इन्हां तों निकलना औखा हुंदा है। इस लई ना पक्षी विचार मन च आउण ही ना दिओ। हाँ पक्षी सोच तनाव नूं दूर करदी है ते तुहाडी सेहत नरोई रखदी है। ते फिर तुसी भी अज तों हाँ पक्षी सोच रखना शुरू कर दिओ। ते हुण गल्लां बहुत हो गईयां, हुण तुहानूं सुणवा रहे हां इक वार्ता। विशा है बाल विआह मुकत भारत। वार्ताकार ने सुखप्रीत कौर।
1: बाल विआह मुकत भारत दा अर्थ है अजिहा भारत जिथे किसी भी बच्चे दा छोटी उम्र विच विआह ना होवे। बाल विआह बच्चियां दी सिक्ख्या, सेहत अते भविख ते माड़ा असर पांदा है। हर बच्चे नूं पढ़न, अपने सुपने पूरे करन अते सुरक्षित बचपन जीउण दा अधिकार है। किसी भी देश की तरक्की उसके बच्चों उत्ते निर्भर करती है। जे बच्चों नूं सही सिक्ख्या, सेहत, सुरक्षा अते अपने सुपनियां नूं पूरा करन दे मौके मिलन तां उह देश नूं नवीआं उचाइयां तक लै जांदे हन। पर जदों बच्चों दा विआह छोटी उम्र विच कर दिता जांदा है तां उन्हां दा बचपन, सिक्ख्या अते सुपने अधूरे रह जांदे हन। इस लई सानूं बाल विआह नूं पूरी तरह खत्म करना होवेगा। बाल विआह उह विआह हुंदा है जिस विच लड़की दी उम्र 18 साल तों घट अते लड़के दी उम्र 21 साल तों घट होवे। भारत दे कानून अनुसार अजिहा विआह गैर कानूनी है। बाल विआह मुकत भारत भारत सरकार अते बाल विकास मंत्रालय दी एक अहम मुहिम है। इस दा उद्देश 2030 तक देश विच्चों बाल विआह दी प्रथा नूं पूरी तरह खत्म करना है। यह मुहिम 27 नवंबर 2024 नूं देश भर विच लागू कीती गई सी, जिस नूं पंजाब समेत सारे सूबियां विच अग्गे वधाया जा रहा है। सरकार ने बाल विआह नूं रोकण लई कई कानून अते योजनावां बनाईयां हन, पर केवल कानून बनाउना ही काफ़ी नहीं,

जदों तक हर परिवार, हर पिंड, हर स्कूल अते हर नागरिक अपने जिम्मेवारी नहीं निभाएगा, तद तक इस समस्या का पूरा हल संभव नहीं। किसी भी राष्ट्र की असल ताकत उसकी फौज, उसकी दौलत जां उस दियां उच्चियां इमारतां विच नहीं हुंदी, इस देश की असल ताकत उसके बच्चियां विच हुंदी है। अज का बच्चा ही कल का विज्ञानी, डॉक्टर, अध्यापक, सैनिक, किसान, प्रशासक अते देश का नेता बनता है। जे असी अपने बच्चियां का बचपन ही खो लवांगे तो असी भविख नूं किवें सुरक्षित कर सकते हाँ। बचपन जिंदगी का वो समा हुंदा है जदों इंसान सुपने देखता है, सीखता है, अपनी शख्सियत बनाउंदा है। पर जदों किसी बच्चे दे मोढ़ियां ते व्याह वर्गी वड्डी जिम्मेदारी पा दित्ती जांदी है तां उसदे सुपने अधूरे रह जांदे हन, जिस नाल बच्चियां दा मानसिक विकास रुक जांदा है। बाल विआह दे नतीजे बहुत गंभीर हुंदे हन, इस कारण बच्चियां दी पढ़ाई छुट जांदी है, वो अपने सुपने पूरे नहीं कर सकदे अते आर्थिक तौर ते दूजियां उत्ते निर्भर हो जांदे हन। छोटी उम्र विच विआह अते माता पिता बनन नाल लड़कियां दी सेहत उत्ते भी माड़ा असर पैंदा है। कई बार ए मां अते बच्चे दोवां लई खतरनाक साबित हुंदा है। सिक्ख्या ही बाल विआह नूं रोकण दा सब तों वड्डा हथियार है। जदों हर बच्चा स्कूल जावेगा, बाल विआह अपने आप घट हो जावेगा। सिक्ख्या मनुख नूं सोचण दी ताकत दिंदी है अते सही फैसले लैण दी समर्था भी दिंदी है। साडे संविधान ने हर बच्चे नूं सिक्ख्या, समानता, सुरक्षा अते सन्मान नाल जीवन जीवण दा अधिकार दित्ता है। इस लई बाल विआह सिर्फ एक समाजिक बुराई नहीं, सगों ए बच्चियां दे मूल अधिकारां उत्ते भी हमला है। इतिहास विच एक समा अजिहा सी जदों बाल विआह नूं समाजिक परंपरा समझिया जांदा सी। लोकां नूं लगदा सी कि छोटी उम्र विच विआह कर देना परिवार दी इज्जत अते सुरक्षा लई चंगा है। पर समें दे नाल सिक्ख्या, विज्ञान अते समाजिक जागरूकता ने सानू दसिया कि यह सोच गलत सी। अज सानू अपनियां चंगियां परंपरावां नूं संभालदे होए माड़ियां रस्मां नूं छड्डण दी लोड़ है। अज दे समाज नूं यह समझना चाहीदा है कि धीआं बोझ नहीं सगों परिवार अते देश दी शान हन। जदों एक धी पढ़दी है तां उह सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलदी, सगों पूरे परिवार अते समाज नूं नवीं दिशा दिंदी है। इस लई सानू धीआं नूं बोझ नहीं सगों भविख दी ताकत समझना चाहीदा है। अज धी नूं विआह दी नहीं सिक्ख्या दी लोड़ है, उस नूं बंधना दी नहीं मौकियां दी लोड़ है। हुण सवाल यह है कि जदों बाल विआह गलत है, कानूनन अपराध है अते बच्चियां दे भविख नूं नुकसान पहुँचाउंदा है, तां फिर भी अज भी यह क्यों हुंदा है? इस दे कई कारण हन। सब तो पहला कारण है गरीबी। कई परिवार सोचते हैं कि धी का जल्दी विआह कर देण नाल उन्हां दा आर्थिक बोझ घट हो जाएगा, पर यह सोच गलत है। जे धी नूं पढ़ाया जाएगा, हुनरमंद बनाया जाएगा, अपने पैरां ते खड़ा किया जाएगा, तो वह परिवार लई बोझ नहीं सगों माण बनती है। दूजा कारण है अनपढ़ता अते जागरूकता की कमी। जिथे सिक्ख्या की घाट होंदी है उत्थे अंधविश्वास अते पुरानियां गलत धारणावां वध जांदियां हन। इसलिए सिक्ख्या ही इस बुराई का सब तो मजबूत हल है। तीजा कारण है समाजिक दबा। कई लोग कहिंदे हन लोग की कहणगे, सानू सोचना चाहीदा है। लोगों की सोच नालों बच्चों का भविख ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाल विआह होने कारण एक बच्चे ते इस ते कई माड़े प्रभाव पैंदे हन। जदों एक बच्चे का विआह छोटी उम्र विच हो जाता है तो सब तो पहला उसकी सिक्ख्या रुक जाती है। जेड़ा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, विज्ञानी जा अधिकारी बन सकता सी, वो अपने सुपनियां तो दूर हो जाता है। बाल विआह का वड्डा प्रभाव सेहत उत्ते पैंदा है। छोटी उम्र विच विआह अते माता पिता बनन नाल खास करके लड़कियां दी शरीरक अते मानसिक सेहत उत्ते गंभीर असर पैंदा है। इस नाल मां ते बच्चे सेहत संबंधी खतरे वध जांदे हन। इस दा प्रभाव मानसिक विकास उत्ते हुंदा है। जिस उम्र विच बच्चे नूं आत्मविश्वास, सिक्ख्या अते जीवन दे तजर्बे दी लोड़ हुंदी है, उस उम्र विच उस नूं वड्डियां जिम्मेवारियां निभाउणियां पैंदियां हन। इस नाल उस नूं अक्सर तनाव, चिंता ते निराशा दा सामना करना पैंदा है। इस दा प्रभाव सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहिंदा। जदों बच्चे पढ़ नहीं सकदे अते अपने हुनर नूं विकसित नहीं कर सकदे तां देश भी अपने

0: कीमती मनुखी संपत्ति गुआ बैठता है। इसलिए बाल विवाह देश की तरक्की विच भी रुकावट बनता है। जे असी एक मुंडे नूं पढ़ाउंदे हाँ तो एक व्यक्ति पढ़ता है, पर जे असी कुड़ी नूं पढ़ाउंदे हाँ तो एक पूरा परिवार सिक्ख्या हासिल करता है। अज समाज के हर एक नागरिक नूं बाल विवाह रोकण लई जागरूक होना चाहिदा है। जे किते बाल विवाह होण दी जानकारी मिले तां उस बारे जिम्मेवार अधिकारियां नूं सूचित किया जाना चाहिदा है, तां कि उस बच्चे दा बचपन जीवन दा अधिकार उस कोल बरकरार रह सके। सरकारां ने भी बाल विवाह करन दे कानूनी पाबंदी लाई हुई है। अज सानू यह निश्चय करना होवेगा कि असी अजिहा भारत बनावांगे जिथे हर बच्चा बच्ची अपने सुपने पूरे कर सके, हर धी ते पुत्तर नूं पढ़न लिखन ते खेडन दा बराबर दा हक मिल सके, उन्हां दी बचपन दी मासूमियत कायम रह सके। पर यह सब तां ही मुमकिन है जदों असी सरकार वल्लों इह कुरीति दे खिलाफ बने नियमां नूं अपने जीवन विच अपनावांगे ते सरकार दा साथ देंगे, तां ही बाल विवाह मुक्त भारत बन पाएगा। समाज विचों इस कुरीति नूं दूर करना समाज विचले हर मनुख दी जिम्मेदारी है। यह ही एक बाल विवाह मुक्त भारत दी नींह है।
1: बाल विवाह मुक्त भारत। हुणे तुसीं सुखप्रीत कौर दी इह वार्ता सुन रहे सी। ते हुण सरवण करदे हां शब्द बाणी ए, सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। आवाज़ां पाई साधु सिंह रागी ते साथियां दियां ने।

शब्द गायन कर रहे सन भाई साधु सिंह रागी ते उना दे साथी। हुण सरवण करदे आं पंजवीं पातशाही दी बाणी भाई रविंदर सिंह रागी ते साथियां दीआं आवासां विच।

भाई निर्मल सिंह रागी ते साथियां दे गायन कीते इस शब्द दे नाल ही पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक खत्म हुंदा है। छेती ही फिर मिलांगे। हुण हरजीत कौर नूं इजाजत दिओ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती।

0: सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में गुप्तचर ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोड़ी, सनरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग की सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
1: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
0: राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस के अवसर पर सभी जवानों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि असाधारण साहस, अटूट समर्पण तथा उच्चतम मानकों के साथ सीआरपीएफ ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीआरपीएफ अटूट साहस, असाधारण कर्तव्यनिष्ठा और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। श्री शाह ने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से सीआरपीएफ ने भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर लड़ाई जीतकर गौरव के अनगिनत मील के पत्थर स्थापित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran.

कार्यक्रम आपकी पसंद में आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरती। ये कार्यक्रम जहाँ हम आपकी पसंद, आपका प्यार और आपके संदेश लेकर आते हैं और इस महफिल को और भी खास बनाते हैं आपके संदेश। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं संदेशों से और देखते हैं कि किन किन लोगों की जो मेल है हम तक पहुँची है। तो देखिए, मैंने संदेश का पिटारा खोला है तो काफ़ी जो संदेशों की झड़ी है यहाँ पर लग चुकी है, बहुत से संदेश

हम तक पहुँचे हैं और पहला संदेश हम पढ़ते हैं मास्टर अशोक कुमार का। ये लिख रहे हैं कि आपके कार्यक्रम का हमें बेसब्री से इंतज़ार था और ये मैसेज इन्होंने हमें किया है मध्य प्रदेश से। इनके साथ साथ हमें फरमाइश भेजी है अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान भाई, राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित और ऋतु मुकेश हमें ये मैसेज कर। अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों आपको बता दें कि ये मैसेज हमें किया है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवाना, और ये किशोर कुमार की आवाज़ में कोई गीत सुनना चाहते हैं। अगले संदेश की बात करें तो ये हमें भेजा है धर्मेंद्र छिपा जी ने और ये कह रहे हैं कि आपको हार्दिक नमस्कार। भाई आपको भी नमस्कार, और भोपालगढ़ राजस्थान से हमें ये मैसेज कर रहे हैं। इनके साथ साथ हमें फरमाइश भेजी है कपिल और पूनम जी ने। तो सो अगले संदेश की बात करें तो ये मैसेज हमें भेजा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। इनके साथ हमें फरमाइश की है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज जी ने। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको सुनवाते हैं ये एक प्यारा सा नगमा।

चलिए श्रोताओं, बढ़ते हैं अगले संदेश की ओर। तो आपको बता दें कि ये संदेश जो हमें भेजा है, ये सरफुद्दीन अंसारी जी हमें मैसेज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप किसी भी गीत में हमें शामिल कर लें। बक्सर बिहार से इन्होंने हमें मैसेज किया है। इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है फातिमा खातून अंसारी, सुरित रमेश साहू ने, और डुमराव बिहार से हमें फरमाइश भेजी है डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से हमें मैसेज किया है श्रद्धा नंद आर्य और अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य ने, और सारिमपुर बक्सर से हमें मैसेज किया है राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी ने। अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं और आपको बता दें दोस्तों, ये मैसेज हमें भेजा है सतीश अनेजा जी ने, और चंडीगढ़ से इन्होंने हमें मैसेज किया है। इनके साथ हमें फरमाइश की है बिमला अनेजा ने। एक और मैसेज जो हम तक पहुंचा है, ये बिट्टू भाटिया जी हमें मैसेज कर रहे हैं हरियाणा झज्जर से, और इनके साथ हमें फरमाइश भेजने वाले हैं रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। तो ये भी कह रहे हैं कि किसी भी गीत में आप हमें शामिल कर लें। और देखिए अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं। तो अगली जो फरमाइश हम तक पहुंची है, ये हमें हरजिंदर सिंह भाटिया जी हमें मैसेज कर रहे हैं, और इन्होंने हमें जमशेदपुर से मैसेज किया है। इनके साथ साथ हमें फरमाइश भेजी है एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया जी ने। अगले संदेश की ओर पहुँचे तो ये कह रहे हैं नमस्कार। तो भाई आपको भी नमस्कार। एनी फिल्म सॉन्ग, ये कह रहे हैं कि किसी भी फिल्म का गीत जो है आप हमें सुना दें। और मोहाली पंजाब से इन्होंने हमें मैसेज किया है। इनके साथ साथ हमें फरमाइश भेजी है बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा जी ने। तो देखिए अगले संदेश की ओर बढ़ें। तो अगला संदेश जो हमें भेज रही हैं गोविंद वैष्णव जी, और ये कह रहे हैं कि आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लें। और दोस्तों ये जो मैसेज इन्होंने हमें भेजा है, ग्राम लसूरिया, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राज्य राजगढ़, मध्य प्रदेश। इनके साथ साथ हमें फरमाइश भेजी है गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमल, कोमल परी और कृतिका रमेश चंद्र डांगी ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर और आपको सुनवाते हैं कुमार सानू की आवाज़ में ये एक और खूबसूरत संगीत।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और आपके साथ हैं आरती और आरती।
4: आरती
3: जी, आरती शर्मा और आरती गौड़। अब आप पहचानिए कि क्या आप किससे बात कर रहे हैं और क्या हालचाल हैं आपके, क्योंकि बहुत सारे संदेश हम तक पहुंचे हैं। आरती, क्यों?
4: बिल्कुल भाई, बहुत झड़ी मैं देख रही हूँ, मैसेज की लग गई है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो बहुत सारी
3: कार्यक्रम शुरू भी नहीं हो पाता,
4: बिल्कुल पहले से,
3: और बारिश होने लगती है मेल की, और इनका कितना बेसब्री से इंतजार रहता है। और इतने प्यारे प्यारे गीत ये लोग जो फरमाइश करते हैं ना, वो भी अपने आप में 90s में पहुंचा देते हैं एकदम से। तो चलिए, अब इसी बात पे एक श्रोता का संदेश हो जाए। ये है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। कहते हैं बहुत खूबसूरत गीत चल रहे हैं, आनंद भी उठा रहे भाई, आपने तो इन लोगों को खुश कर दिया इतने प्यारे प्यारे गीत चलाकर। और साथ ही ये लिखते हैं, हम भी आपके नियमित श्रोता हैं, शिद्दत से कार्यक्रम सुनते हैं, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। तो भाई, दुआओं में याद रखेंगे हम आपको भी, अपने सभी श्रोताओं को भी, और साथ ही आपने जो ये संदेश

0: किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बताएं आपको ये मैसेज हमें आया है। ये हमें लिख रहे हैं आदरणीय प्रसारक जी, नमस्कार भाई, आपको भी नमस्कार। और ये पांडर कवर्धा से हमें मैसेज कर रहे हैं और मैसेज हमें भेजा है अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे और बलहार शाह, सूरज लोंडे और प्राची। इसके साथ ही जो अगला संदेश हम तक आया है वो है अनारकली बाजार जगराव पंजाब से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, इन्होंने भी एक बहुत ही खूबसूरत से नगमे की फरमाइश की है। चलिए कोशिश करेंगे आपका नगमा आप तक ज़रूर पहुंचे।
2: और अगले जो मैसेज हमें पहुंचा है ये हीरावन शिंदे जी हमें मैसेज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप हमें किसी भी गीत में शामिल कर लें।
0: तो ये जो इन्होंने गीत बोला है ना ये सच में बहुत ही प्यारा है, मेरा भी फेवरेट है। तो चलिए इस गीत को जल्दी से आप निकालिए, तब तक मैं देखती हूँ और कौन कौन से श्रोता अपनी क्या क्या फरमाइश लेकर आए हैं। फिल्म का नाम है दिल का रिश्ता, भूल मत जाना।
2: बिल्कुल,
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, पूजा वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही अगले जो श्रोता है वो हैं उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, ये जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ यही बार बार जुड़े हुए हैं क्योंकि इन्होंने इतने संदेश भेजे हैं आरती कि बस आप देखिए झड़ी लगी, एक ही संदेश ने पूरा हमारा मेल बॉक्स भर रखा है। हम कई बार आपसे कहते हैं कि देखिए कोशिश कीजिए कि आप अपने संदेश को एक या दो, उससे ज़्यादा ना भेजें क्योंकि हमारा मेल बॉक्स भरता है और फिर डांट पड़ती है हमारी कि हमने अपने श्रोताओं का मेल नहीं लिया।
2: बिल्कुल,
0: तो आप हमारी बात पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। और आरती आपसे कुछ कहना चाह रही हैं?
2: मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि भाई आप जो मेल है वो एक बार ही करें क्योंकि इतनी सारी मेल जो हमें इनबॉक्स में दिखती है, जो दूसरों के मैसेज है वो हम तक पहुँचना मुश्किल हो जाते हैं और देखिए समय भी थोड़ा सीमित होता है और सभी का होता है कि उनके जो फरमाइश है उसे शामिल कर लिया जाए।
0: हाँ, तो चलिए फिलहाल तो हम ये दिल का रिश्ता वाली फरमाइश शामिल कर रहे हैं, तब तक और भी बहुत से खूबसूरत नगमे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। आप भी वेट कीजिए, आपके मेल का और आपके गीत का नंबर भी ज़रूर आएगा।

0: दोस्तों, दिल का रिश्ता तो बहुत ही प्यारा होता है और दिल के रिश्ते अचानक से जुड़ जाते हैं। आपकी बात किसी से मिल जाती है, आपकी आदतें किसी से मिल जाती हैं और सबसे बड़ी चीज़, जब आप एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो दिल का कनेक्शन अपने आप जुड़ता चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। जैसा मेरा जुड़ चुका है मेरी दोस्त आरती के साथ और अपने साथियों के साथ जो मेल पर हमारे साथ जुड़े हैं। क्यों आरती?
1: बिल्कुल आरती, आपने सही कहा कि दिल का रिश्ता हमारे हमारे जो श्रोता हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, क्योंकि वो हमें फरमाइश भेज रहे हैं और उनकी फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। और देखिए, वो ये भी कह रहे हैं कि जो गीत जो चल रहे हैं वाकई बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, हमारे गीतों की जब सराहना होती है, हमारे कार्यक्रम की सराहना होती है, तो ये एक दिल का रिश्ता ही तो होता है।
0: भाई, हमने हम सब ने एक दूसरे को नहीं देखा हुआ है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे बरसों की दोस्ती है। क्यों?
1: बिल्कुल।
0: फिलहाल इस बरसों की दोस्ती को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम में बढ़ते हैं अपने संदेश की तरफ। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू हमारे साथ जुड़े हैं। आगे जो जुड़े हैं,
1: अगला जो ये मैसेज हमें किया है, ये विनोद जी हमें कर रहे हैं और देखिए पंजाब से हमें मैसेज कर रहे हैं और इनके साथ साथ हमें फरमाइश भेजी है सीमा जी ने और विद्या देवी ने और सायरा मायल जी ने, और ये कह रहे हैं कि कोई भी गीत आप हमें सुनवा दीजिए।
0: तो चलिए, आप सबको गीत तो हम सुनवा ही रहे हैं, आगे बढ़ लेते हैं। आदर्श नगर मालौद पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और शाइना शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोग्राम इन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसके साथ ही अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं,
1: ये हमें मैसेज कर रहे हैं कोहका भिलाई से और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सिंह, जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष, नंदिनी, और इनके साथ साथ हमें फरमाइश भेजी है सुखरी कला से अंजलि, अशोक और आरुषि ने।
0: जी हाँ, बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं और ये हमारे साथ जुड़े हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से। साथ ही जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो हैं सत्य प्रकाश सनोठिया, रोहिणी से। और इसके साथ ही अगले श्रोता,
1: ये देखिए
0: इनका गीत तो
1: बज चुका है।
0: जी हाँ, दिल का रिश्ता तो ऑलरेडी जुड़ चुका है और आपने दोबारा उसी गीत की फरमाइश कर दी है। तो इसी तरीके से हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग बार बार अपने संदेश इस तरह भेजेंगे तो जो हमारे श्रोता हैं जिनके संदेश नहीं ले पाते वो फिर हमसे गुस्सा हो जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो कहीं ना कहीं आप लोग हैं बीच में हम लोगों की डांट पड़वाने के लिए, तो कोशिश कीजिए, मत किया कीजिए ऐसा। फिलहाल चले, एक खूबसूरत सा गीत हो जाए।
1: बिल्कुल, सुनते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम, आपकी फरमाइश, आपकी पसंद, हम आपकी शामिल कर रहे हैं और आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त आरती। तो चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। आपको बता दें कि ये फरमाइश हमें भेजी है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, और ये मैसेज हमें भेजा है तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान खुराना। अगले मैसेज की ओर बढ़ते हैं और ये मैसेज हमें भेजा है सिद्धार्थ जी ने, और

इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है अर्चना, हीरामन, प्रणय और प्रतिभा जी ने। और देखिए अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं, तो आपको बता दें ये बुधराज खोरवाल जी हमें मैसेज कर रहे हैं, ये उत्तम नगर दिल्ली से हमें मैसेज कर रहे हैं। इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश ने। अगले मैसेज की ओर बढ़ते हैं, तो ये हमें रोज़ी जी ने मैसेज किया है और ये मुकेश जी की आवाज़ में गीत सुनना चाहती हैं और कह रही हैं कि आप हमें किसी गीत में भी शामिल कर सकती हैं। और जनकपुरी सहारनपुर से इन्होंने हमें मैसेज किया है, इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है रोज़ी, पॉल और विलिस और जोन जी ने। और देखिए अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं, तो अगली जो फरमाइश हमें भेजी है ये मध्य प्रदेश से प्रवीण चौहान जी हमें मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्लीज़ आप हमारी मेल को शामिल कर लीजिए। और देखिए अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं, तो आपको बता दें कि ये मैसेज हमें भेजा है स्वरण सिंह ने और ये लोहागढ़ ठाकुर अवाला से हमें मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी गीत हमें सुनवा दीजिए और हमारा नाम ज़रूर शामिल कर लीजिए। इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है दलजीत सिंह, राजदीप सिंह और गुरनूर सिंह ने, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह ने। अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए ये मैसेज जो दोस्तों हमें भेजा है सुभाष योगी जी हमें मैसेज कर रहे हैं और इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू और मिगलानी, बबीता मिगलानी जी ने। अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं, तो ये संदेश हमें भेजा है नवी हसन जी ने और ये कह रहे हैं आपको हमारा नमस्कार, भाई आपको भी नमस्कार, किसी भी गीत में मेरा नाम शामिल कर दें। और ये मरहरा दरवाज़ा एटा से हमें मैसेज कर रहे हैं, इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशप अब्बासी और रसीद वारसी जी ने। दोस्तों अगले मैसेज की ओर बढ़ते हैं, आपको बता दें ये मैसेज हमें किया है हरजिंदर सिंह ने, इनके साथ हमें फरमाइश की है एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पू भाटिया जी ने। और देखिए कई मेल जब मैं पीछे की तरफ जा रही हूँ तो बहुत से ऐसे मेल है वही आ रहे हैं जो पहले भी अपनी फरमाइश भेज चुके हैं। तो देखिए आप अपनी फरमाइश जो है एक बार ही भेजिएगा ताकि मैं औरों के मैसेज भी जो है जल्द से जल्द पढ़ सकूँ। तो अगली जो फरमाइश हमें भेजी है ये गुलदवास मनिकपुरी जी हमें मैसेज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं आप किसी भी गीत हमें शामिल कर लें। और इनके साथ साथ हमें फरमाइश भेजी है राजा दास मानिकपुरी ने, रानी मानिकपुरी ने और ये छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज कर रहे हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं अगले गीत की ओर, और जो अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये आशा भोसले की आवाज़ में है।

तो दोस्तों, विनोद राठौर और आशा भोसले की आवाज में ये किताब तो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं अपने मेल जो हमारे पास आए हुए हैं बहुत देर से। ये क्या है, रुवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी हमारे साथ जुड़े हैं।

साथ जुड़े हैं अब्बासी परिवार के सदस्य, जिसका संदेश आरती पहले ही ले चुकी हैं। और आगे जो हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं वो हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, हमेशा खुश रहें, पूरे परिवार के साथ चाय की चुस्की लेते हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, हमें भी शामिल करें। और देखिए चाय का नाम ले लिया, और आपको पता है मुझे चाय कितनी पसंद है, और इन्होंने चाय का नाम ले लिया। भाई अब तो मुझे भी आना पड़ेगा आपके यहाँ चाय पीने। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, ये हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी, बबिता मिगलानी, ये बार बार वही संदेश आए हैं क्योंकि मैं इन सब के नाम सुन चुकी हूँ। फिलहाल ये अगला जो संदेश हमारे पास आया है, ये सभ्य समाज में भाषा ही इंसान की पहचान होती है, अब शब्दों को अपनाने से अपनी ही शान खोती है, नीतियों पर विरोध करो। अच्छा, ये इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, लोकतंत्र का अधिकार है ये, पर गाली देने से खुद संस्कारों की हानि होती है। सत्य प्रकाश सनोठिया रोहिणी से ये हमारे साथ अपना ये संदेश साझा कर रहे हैं। साथ ही अगले जो श्रोता जुड़े हैं वो हैं प्रवीर चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, कहते हैं कि सिद्धार्थ गोडाने, अर्चनाताई गोडाने, हीरामन शेंडे जी और साथ में प्रणव प्रसिद्धि प्रतिभा गोडाने। वैसे संदेश बहुत सारे हमारे पास हो रखे हैं, आ गए हैं, लेकिन अब हमारे जाने का वक्त आ रहा है। जाते जाते लेकिन हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं ये खूबसूरत सा गीत जो आने वाले सावन के लिए है, क्योंकि सावन आने वाला है और आप सबको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपका ये सावन भीगा भीगा सा आपके तन मन को भी भिगो दे और आपके जीवन से हर मुश्किल को दूर भगा दे।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामले में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड के प्रावधान वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री

0: रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने युवाओं की आवाज़ सुनने और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि ये कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
1: हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: इस कार्यबल में खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन डेका, इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और प्रबंधन विशेषज्ञ अमृतलाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
1: मेरा हमेशा से ही ये दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत के नौजवान 21वीं सदी की दुनिया को शेप करने वाले हैं। भारत के युवा की यही असली नियति है। आज का युवा विकसित भारत की ऊर्जा भी है और विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। इसलिए युवा शक्ति जब देश की चुनौतियों और समाधानों से सीधी जुड़ेगी तो भविष्य निश्चित ही उज्जवल होगा।
0: दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला आयोग के सदस्य बनाई गई हैं। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कुलदीप सिंह और मोहम्मद हारून आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल विकास कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। 23 और 24 जुलाई को भी वायुसेना ने 148 यात्रियों को सुरक्षित निकाला था। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has appealed all members of parliament to participate

0: के लिए कोई सबसे खतरनाक बीमारी है तो वो है नशे के जाल में फंसना। जी हाँ श्रोताओं, इस विषय पर मुझे एक अमीर आदमी की कहानी याद आती है जो अपने बेटे की किसी बुरी आदत से बहुत ज्यादा परेशान था। और जब भी वो अपने बेटे से बुरी आदतों को छोड़ने की बात करता तो उसे बस एक ही जवाब मिलता, अरे पापा अभी तो मैं इतना छोटा हूँ, धीरे धीरे ये आदत छोड़ दूंगा। और वो अमीर आदमी का बेटा कभी भी उस बुरी आदत को छोड़ने का प्रयास नहीं करता। तो ऐसा हुआ, उन्हीं दिनों एक महात्मा जी गांव में पधारे हुए थे। जब उस अमीर आदमी को उनकी खयाती के बारे में पता चला तो वो तुरंत उनके पास पहुंचा और अपनी समस्या बताने लगा। महात्मा जी ने उसकी बात सुनी और कहा, ठीक है आप अपने बेटे को कल सुबह बगीचे में लेकर आइए, वहीं मैं आपको उपाय बताऊंगा। अगली सुबह पिता और पुत्र दोनों बगीचे में पहुंचे। महात्मा जी ने बेटे से बोला, आइए हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। चलते चलते ही महात्मा जी अचानक रुके और बेटे से कहा, बेटे क्या तुम इस छोटे से पौधे को उखाड़ सकते हो? बेटे ने कहा, जी हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ऐसे कहते हुए बेटे ने आसानी से पौधे को उखाड़ दिया। फिर वे आगे बढ़ गए और थोड़ी देर बाद महात्मा जी ने थोड़े बड़े पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम इसे भी उखाड़ सकते हो? बेटे को तो मानो इन सब में कितना मजा आ रहा हो, वह तुरंत पौधा उखाड़ने में लग गया। इस बार उसे थोड़ी मेहनत लगी पर काफी प्रयत्न के बाद उसने इसे भी उखाड़ दिया। वे फिर आगे बढ़ गए और कुछ देर बाद पुनः महात्मा जी ने गुलहड़ के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बेटे से इसे उखाड़ने के लिए कहा। बेटे ने पेड़ का तना पकड़ा और इसे जोर जोर से खींचने लगा, पर पेड़ तो हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ तो बेटा बोला, अरे ये तो बहुत मजबूत पेड़ है, इस पेड़ को उखाड़ना असंभव है गुरुजी। महात्मा जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा ठीक ऐसे ही बुरी आदतों के साथ भी होता है, जब वे नहीं होती हैं तो उन्हें उखाड़ना आसान होता है, पर वे जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं उन्हें छोड़ना मुश्किल होता जाता है। बेटा उनकी बात समझ गया और उसने मन ही मन आज से ही बुरी आदतों को छोड़ने का निश्चय किया। जी हाँ श्रोताओं, कुछ ऐसा ही हाल है हमारे युवाओं का। कुछ लोग शराब पीने के पक्ष में ये तर्क देते हैं कि अरे दो पैक पीने के लिए तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं। लेकिन दोस्तों कितने लोग हैं जो काफी समय बाद भी दो पैक पीने पर ही सीमित रहते हैं। हकीकत तो ये है कि कब दो पैक चार पैक में, चार पैक क्वार्टर में और क्वार्टर बोतल में परिवर्तित हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। वैसे लोग शराब का सेवन कई प्रकार से करते हैं। कुछ लोग नियंत्रित मात्रा में उचित तरीके से पीते हैं और इनके शराब पीने से किसी को कोई परेशानी भी नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए शराब जिंदगी की बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। शराब पर उनका नियंत्रण नहीं होता बल्कि शराब का उनकी जिंदगी पर पूरा नियंत्रण होता है। इनकी जिंदगी में शराब ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु बन जाती है। शराब की वजह से उनकी जिंदगी में अनेक पारिवारिक, शारीरिक तथा मानसिक परेशानियां खड़ी हो जाती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद व्यक्ति शराब नहीं छोड़ पाता है, यही शराब का सबसे बड़ा दुर्गुण है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कौन कमबख्त पीता है मजा लेने के लिए, हम तो पीते हैं क्योंकि पीनी पड़ती है। शराब पीने की आदत के कारण शर्मिंदगी महसूस करना, शराब के विषय में दूसरे लोगों के द्वारा टोके जाने पर गुस्सा होना या सुबह की शुरुआत शराब के साथ करना, और कई बार ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति रात के हैंगओवर को दूर करने के लिए बिना कुल्ला मंजन किए ही शराब पीना शुरू कर देता है। और श्रोताओं ये अत्यंत ही घातक स्थिति है। श्रोताओं नशे की लत ने बसे बसाए कई परिवारों को उजाड़ दिया। माना भी जाता है कि एक बार जो नशे की गिरफ्त में फंस गया उसका बाहर निकलना काफी मुश्किल होता है। मेडिकल साइंस भी कहती है कि लगभग 100 से 80 लोग नशा छोड़ने के बाद दोबारा इसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्ति हो तो उसके सामने कोई भी नशा नहीं टिकता। श्रोताओं, ऐसे ही कुछ लोगों की सक्सेस स्टोरी बताती है जो नशे के शिकंजे में फंस गए थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया नशे को ठोकर मार कर आगे बढ़े और खुशहाल जिंदगी की नई शुरुआत की। जी हाँ श्रोताओं, चंडीगढ़ के जितेंद्र सिंह साल 2002 में 12वीं के छात्र थे। इस दौरान दोस्तों की संगति में आकर पहली बार सिगरेट का कश लगाया और फिर धीरे धीरे नशे के दलदल में फंसते चले गए। हेरोइन चरस तक का नशा आम लगने लगा। शुरुआत के दिनों में दोस्तों ने अपने पैसों से नशा खरीद कर दिया। कुछ दिनों में जब वो नशे के शिकंजे में बुरी तरह से फंस गए तो अपनी ही लत को पूरी करने के लिए घर में चोरियां करने लगे। हर जगह उन्हें दुत्कार व घर में पिटाई तक होने लगी, लेकिन परिजनों ने यह सोचकर शादी करवा दी कि शायद उनका बेटा सही राह में चल पड़े। श्रोताओं, लेकिन यह कोशिश भी बेकार गई। जितेंद्र का एक बेटा हुआ। वो कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी के 18 साल बर्बाद करने के बाद एक दिन उनके बेटे ने कहा कि पापा प्लीज नशा करना छोड़ दो। मासूम बेटे की आवाज ने जितेंद्र को अंदर तक झकझोर दिया और उसके बाद वो अपनी ही इच्छा से बरवाला के एक नशा केंद्र में पहुंचे और इलाज कराया। जब सब ठीक हो गया तो नौकरी की तलाश शुरू की और अब वे चंडीगढ़ स्थित एक सरकारी विभाग में आईटी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं। शुदा ऐसा ही कुछ हाल सेक्टर 41 में रहने वाले विजय ने बताया कि साल 2013 को उनकी मुलाकात चंडीगढ़ के डिस्को में एक शख्स से हुई। धीरे धीरे दोस्ती हो गई और उसकी संगति में आकर वो नशे के आदी हो गए। नशे के चक्रव्यूह में फंसकर वे हीरोइन, चरस, गांजा, अफीम का नशा करने लगे। अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए उन्हें रोज कम से कम 4 से 5 हजार रुपए की आवश्यकता पड़ती थी। शुरुआत में पैसे आसानी से मिल जाते थे, लेकिन जब घर वालों को पता चला कि पैसों को वो नशे में उड़ा रहे हैं तो परिजनों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। अब भाई घर में रोजाना लड़ाई होने लगी और एक दिन ऐसा हुआ कि विजय के पिता ने उनको धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकल कर भी वह अपना शौक पूरा कर रहे थे, मगर जब एक दिन बाहर से भी कुछ नहीं मिला तो अपनी घर की याद आई। जी हाँ, किसी ने नशा केंद्र के बारे में बताया तो खुद ही सेक्टर 18 के नशा केंद्र में भर्ती हो गए। करीब 3 महीने के इलाज के बाद नशा छूट गया। तो श्रोताओं, माता पिता तो माता पिता होते हैं। विजय के पिता ने अपना बिजनेस दोबारा संभालने के लिए विजय को दे दिया। विजय की नई पारी अब खुशियों से भरी है। ऐसे ही नया गांव के रहने वाले 32 वर्षीय शुभम बताते हैं कि वह साल 2009 से चोरी छिपे, जी हाँ चोरी छिपे नशीले कैप्सूल का सेवन करते थे। इस कैप्सूल ने उन्हें अपना इतना आदि बना दिया था कि घर में चोरी करना उनके लिए जैसे आम बात हो गई थी। वह शहर के एक इलाके में नशीली गोली खरीद कर दिन में 2 से 3 बार सेवन करते थे। नशे की वजह से वो दिन भर घर में सोते रहते थे। ये देख एक दिन परिवार वालों को शक हो गया। उन्होंने जांच की तो पता चला कि वो नशे की गोलियां खाते हैं। तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर वाले जबरदस्ती उन्हें पीजीआई नशा मुक्ति केंद्र ले गए और उनका इलाज कराया। श्रोताओं, करीब 3 महीने के इलाज के बाद सेहत में काफी सुधार आ गया। शुभम के रिश्तेदारों ने बताया कि अब वो किसी बिल्डर के साथ मिलकर अच्छी खासी नौकरी कर वो अपना परिवार चला रहे हैं। तो श्रोताओं, अगर जितेंद्र, विजय, शुभम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं। जी हाँ श्रोताओं, अगर मन में इच्छा शक्ति हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। मित्रों, आज वक्त है और वक्त रहते ही विचार करें कि आपके लिए, आपका परिवार, बच्चे, करियर और स्वास्थ्य, आपके नशा करने से इन चीजों पर कितना असर हो रहा है। थोड़ा रुक कर बैठ कर गंभीरता से विचार करें। शराब छोड़ने का पक्का निश्चय करें। उन परिस्थितियों एवं ऐसे दोस्तों की संगति से बचे रहें जो शराब सेवन को बढ़ावा देते हैं। शराब की खाली बोतलें, केन आदि घर से बाहर फेंके। जब ड्रिंक करने की संभावना लगे तो समय पहले ही खाना खा लें या फिर पानी एवं तरल पदार्थों का भरपूर मात्रा से सेवन करें। हेल्दी खाना एवं जीवन शैली को अपनाएं। अपने रूटीन को बदलें। यदि काम खत्म करने के बाद शाम को शराब पीने की आदत है तो काम खत्म करने के बाद माता पिता भाइयों एवं ऐसे लोगों से मिलने जाए जहां शराब पीकर नहीं जा सकते, या हो सके तो अपने इष्ट के दर्शन करने या धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। श्रोताओं हार ना माने, यदि इतने उपाय करने के बाद भी नशा छोड़ने में आप सफल ना हो तो विशेषज्ञ एवं नशा मुक्ति केंद्र से राय लेने में देर ना करें। श्रोताओं शराब धूम्रपान तंबाकू ये सब सेहत के दुश्मन हैं। किसी भी स्थिति में नशे की लत से बचें। यदि आप नशे से बचे हुए हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, किंतु यदि कोई नशा करते हैं तो जितनी जल्दी हो सके नशे से दूरी बना लें, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो एक साथ कई परिवारों को बर्बाद कर देती है तथा शारीरिक मानसिक आर्थिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा के नाश का कारण बनती है। इसलिए नशे से बचना ही बेहतर उपाय है। और श्रोताओं ईश्वर ने हमारे लिए सारी चीजें उचित बनाई हैं, परंतु सारी वस्तुएं मनुष्य के लाभ की नहीं है और हम किसी बात के अधीन नहीं है। और ये शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर इसमें वास करते हैं, तो आइए इस मन के मंदिर को जो कि हमारा शरीर है इज्जत करें और इसे बर्बाद होने से बचाएं। तो श्रोताओं बहुत से श्रोता हैं जो कार्यक्रम को सुनते हैं और अपने विचार सुझाव यहाँ तक कि क्या परिवर्तन उनकी जिंदगी में आया है उसे हमसे साझा करते हैं, और हम सच में धन्यवादित हैं क्योंकि आपके विचार आपके सुझाव ही हमें अच्छा कार्यक्रम बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। हमारे श्रोताओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं: सूरज कुमार पालीगंज पटना से, सावित्री कुमारी समस्तीपुर बिहार से, अवधेश सीतामढ़ी बिहार से, कमल सीतापुर से, दुर्गा प्रसाद गोंडा यूपी से, छोटू कुमार मुजफ्फरपुर से, अब्दुल्ला महाराजगंज बिहार से, शत्रुघ्न लाल बाराबंकी यूपी से, राधेश्याम हरदोई यूपी से, ज्योति हरदोई मथुरा पासवान झारखंड से, राम नरेश शर्मा सीतामढ़ी बिहार से, आर्यन सिंह रामपुर यूपी से, सुरेंद्र सिंह बाराबंकी यूपी से, नवल किशोर जी सीतापुर यूपी से और नरेश चंद्र यादव अरावल बिहार से। जी हाँ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं अब हमें बताएं कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, और अगर आप नशे से संबंधित अपने एक्सपीरियंसेस या अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं को हमसे बांटना चाहते हैं ताकि रेडियो के माध्यम से दूसरों की जिंदगी बदल सके, या फिर आप भी कहानियां या कविताएं लिखने का शौक रखते हैं तो हमें जरूर बताएं। अगले कार्यक्रम में आपके नाम के साथ हम उसे साझा करेंगे। तो श्रोताओं हमें अपने विचार और सुझाव भेजने के लिए हमें इस नंबर पर कॉल करें, या आप मिस कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है
1: 8527449955। जी हाँ श्रोता 8527449955।
0: अब मुझे दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक खुश रहें और हाँ नशे से दूर रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सबरस।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। आइए श्रोता, आप सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुरमंजरी कार्यक्रम में सलीम अहमद का सितार वादन पर राग गुजरी तोड़ी।

0: श्रोताओ, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुरमंजरी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सलीम अहमद का सितार वादन पर राग गुजरी तोड़ी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी, रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है।

0: आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल

0: खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों मीराबाई चानू, चानम्बम ऋषिकांत सिंह, राजा मुथुपांडी और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को बधाई दी।
1: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुथु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य मुद्दे नहीं उठाए जा सकते।
1: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत इस विषय पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड के प्रावधान वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकर्णी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यबल में पूर्व सूचना और शिक्षा निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, IIT चेन्नई के निदेशक वी कामकोटी भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलेंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament have been adjourned till 12 noon following opposition protest over alleged police action during students' protest over the NET issue. When the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m, Lok Sabha Speaker Om Birla congratulated India's star weightlifters Mirabai Chanu, चरमबम ऋषिकांत।

0: हर आंगन।
1: अक्सर घर के आंगन में बैठ जीवन का मंथन करती हूँ, सुनहरी यादों के ताने बाने से खुशियों की चादर बुनती हूँ। ये आंगन मेरे अपनों से पूरा होता है, जिनके होने से मैं खुद को पूरा महसूस करती हूँ। जी हाँ
2: जी प्रतिभा, क्योंकि घर आंगन की शोभा तो अपनों से ही होती है। और भाई, जब घर आंगन में

0: नहीं मिलते हैं तो ये और भी खूबसूरत हो जाता है
1: जी
0: ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए रश्मि जी, तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं और स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोताओं का। और आज आपके साथ हूँ मैं प्रतिभा। और
0: रश्मि कुकरेती, प्रतिभा आपको आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी सुनने वालों को और आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के सभी सुनने वालों को हम दोनों का
1: प्यार
0: प्यार भरा
1: भरा
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। और देखिए रश्मि जी, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो एफएम गोल्ड चैनल पर जुड़ते हैं, जो कि है 100.1 MHz पर। और इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर।
0: जी, और आज का दिन विशेष दिन है। हम सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे
1: जी
0: हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आज उनकी पुण्यतिथि है। और डॉक्टर कलाम शिक्षा, विज्ञान और राष्ट्र निर्माण में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, और घर आंगन परिवार की तरफ से हम भी उन्हें शत शत नमन
1: नमन
0: करते हैं।
1: करते हैं बिल्कुल। और रश्मि जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक प्रश्न पूछकर अपने श्रोताओं से, और उस प्रश्न का जो हमारे श्रोता हैं वो एक प्यारा सा जवाब भी देते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे होंगे उस प्रश्न का।
0: जी, तो आप जल्दी बताइए कौन सा प्रश्न लाई है आज।
1: जी रश्मि जी, आज का जो हमारा प्रश्न है हमारे श्रोताओं के लिए वो है कि ऐसी कौन सी आदत या ऐसी कौन सी खूबी है उनमें जो उनको यानी कि आपको बेहतर बनाती है।
0: जी बिल्कुल, और उसका जवाब वो हमें लिखकर भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com,
1: जी हाँ
0: fmgoldga@gmail.com।

0: तलाश फिल्म में अभी आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।
1: और बहुत अभी जो समाचार सुन रहे थे ना प्रतिभा, तो मतलब इतना अच्छा लगा भाई। राष्ट्रमंडल खेल की बात हुई 2026 जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किए जा रहे हैं, और एक बड़ी खुशखबरी हमने अभी सुनी कि इन खेलों में भारत की जो स्टार भारोत्तोलक है मीराबाई चानू, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भाई ये सुन के तो मेरा मन जो है ना खुशी से झूम उठा।
0: बिल्कुल, बात ही झूमने वाली है रश्मि जी। देखिए मतलब मैं ये पढ़ रही थी कि लगभग 3000 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और 74 राष्ट्रमंडल देश जो यहाँ पर भागीदारी दे रहे हैं अपनी। लेकिन जब इतने सारे लोगों में, जब हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं अपनी पहचान बनाते हैं, तो वो खुशी का माहौल तो होता ही होता है
1: जी।
0: और देखिए ना केवल मीराबाई चानू बल्कि भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने भी बेहतरीन प्रदर्शन कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश ले लिया है
1: जी। तो हमारे जो इस समय जो है भारत के 4 पदक आ चुके हैं, और जो महिलाएं हैं भाई जब जाती हैं अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो देश के लिए गौरव बढ़ाने की बात होती है, तो हमें अच्छा लगता ही है।
0: बिल्कुल, और देखिए एक और हैं प्रतिष्ठा सामंता, उन्होंने भी शनिवार को जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में महिला वर्ल्ड स्पर्धा के में जो है क्वालिफाई करके 5वें स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बना ली है। तो रश्मि जी, इन सभी खिलाड़ियों को हमारी तरफ से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, ये ऐसा ही अपना प्रदर्शन देते रहें इन खेलों में
1: जी, और भारत का नाम रोशन करते रहें
0: जी।

0: तेरे मेरे सपने। अभी आपने इस फिल्म से गीत सुना, आवाज़ थी आशा भोंसले की। और श्रोताओं, जैसा कि हमने शुरू में ही आपसे एक प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न था कि ऐसी कौन सी आदत या ऐसी कौन सी खूबी है जो आपको बेहतर बनाती है। जी हाँ, ये हमारा आज का प्रश्न है और जिसका आपको हमें जवाब देना है fmgoldga@gmail.com पर। और
1: तो इसी के साथ हमारे पास जवाब आने शुरू हो गए
0: जी
1: प्रतिभा।
0: जी
1: और उमेश कुमार खयाला से कहते हैं कि मेरी खूबी ये है कि अगर कोई मुझसे मदद मांगता है तो
0: जी
1: बिल्कुल मैं मदद करने के लिए एकदम से तैयार हो जाता हूँ। भाई बहुत अच्छी आदत है, अगर आप मदद मांगते हैं, किसी कोई आपसे मदद मांगे और आप मदद दे दें, तो
0: जी
1: इससे अच्छी बात क्या हो सकती
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने रश्मि जी। देखिए, मदद करना तो बहुत ही अच्छी बात है और खुद को सुकून भी देती है ये वाली आदत जब हम मदद करते हैं। और देखिए, एक मेल और है डी राजेश्वर राव जी का। वो कहते हैं कि वो अपने जो रोज़मर्रा की जो रूटीन है उसकी उनकी उसमें वो अपनी डाइट संतुलित आहार लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और एक भरपूर और एक अच्छी नींद लेते हैं, जिसकी वजह से वो शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं।
1: और सुदर्शन मुखी अनीता और सिमरन शांति नगर सोनीपत से जुड़ गए हैं हमारे साथ और कह रहे हैं कि मैं बिजी रहता हूँ और बिल्कुल साफ सफाई से रहना पसंद करता हूँ, तो ये मेरी मेरी ये आदत है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो स्वच्छता जो है ना, वो
0: जी
1: तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी
0: जी
1: का भी आग्रह है, और बिजी रहना भी बहुत अच्छी बात है। हमेशा कर्मशील बने रहें, कर्मठ बने रहें,
0: बिल्कुल
1: तभी हमारा देश जो है विकास की ओर कदम बढ़ा पाएगा। तो
0: बिल्कुल।
1: ये अच्छी आदतें हैं, ये भी बनाए रखें और हम भी आपसे कुछ कुछ सीखते रहेंगे।
0: और ये आदत तो बनाए रखेंगे ही, और हम उम्मीद ये करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और आप हमें अच्छे से अच्छे जवाब अपने भेजते रहेंगे। क्यों रश्मि जी,
1: जी
0: तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं ना। और अब बात करते हैं उस महिला की जिसकी सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें दी एक खास पहचान,
1: जी
0: पल्लवी पाटिल। जी हाँ, पल्लवी पाटिल ने मुंबई फायर ब्रिगेड की पहली महिला फायर इंजन ड्राइवर बनकर इतिहास रच दिया।
1: जी और भाई देखो कितना मुश्किल काम है महिला फायर इंजन ड्राइवर होना।
0: जी
1: लेकिन क्या था कि पल्लवी के भाई पहले से ही फायर ब्रिगेड में काम करते थे और उनके पिता भी चाहते थे कि दोनों भाई बहन इस सेवा का हिस्सा बने।
0: जी
1: और जब महिलाओं की भर्ती शुरू हुई तो पल्लवी भी फायर ब्रिगेड में शामिल हो गई और उसके बाद वो फायर फाइटर के तौर

0: पर थोड़ा उन्होंने काम किया, उसके बाद फायर इंजन चलाने की विशेष ट्रेनिंग ली और विभाग की परीक्षा पास करके मुंबई फायर ब्रिगेड की वो पहली सक्रिय महिला फायर इंजन ड्राइवर बनी।
1: देखिए वो ड्राइवर तो बनी है ना, लेकिन वो जो है पल्लवी सिर्फ अब फायर इंजन नहीं चलाती बल्कि मौके पर पहुँच कर पानी के प्रेशर को भी नियंत्रित करती है ताकि दमकल कर्मी आसानी से आग को बुझा सकें।
0: हाँ, और भाई प्रतिभा देखो, जब फायर इंजन की ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो फिर लगता है ना कि भाई घटना पर जा रहे हैं, आग की घटना है, मन में थोड़ा डर भी होता है, जिम्मेदारी का एहसास भी होता है, तो ये तो काम तो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन भाई महिलाएं अगर करना चाहें तो क्या नहीं कर सकती।
1: बिल्कुल ठीक कहा, देखिए जोश और जज्बों में महिलाएं तो देखिए किसी से कम है ही नहीं, और आज महिलाओं ने हर क्षेत्र में साबित भी तो कर दिया है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानती हैं। क्यों
0: जी, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सोच उन्हें आसमान की बुलंदी तक पहुंचा सकती है, और अगर आप भी ऐसे सपनों को जी रही हैं तो भाई वक्त है उन्हें भी नया आयाम दें।
1: बिल्कुल।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी रखवाला।
1: और प्रतिभा, यहाँ हमारे पास सवालों, जो सवाल तुमने पूछा था उसका जवाब आ चुका है। रवि नारायण जी भिलाई से कह रहे हैं, भाई इस सवाल का जवाब है सकारात्मक सोच। जीवन में चाहे कितने भी दुख आए, हम अपनी सकारात्मकता हमेशा बनाए रखें तो हम बेहतर बन सकते हैं। बहुत अच्छा जवाब। और डॉक्टर ए के टंडन जो हैं वो माया इनक्लेव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरे वाह, आप 82 साल के हैं प्रोफेसर साहब। और वो कह रहे हैं कि मैं अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ और मेरी हैबिट है, मेरी आदत है कि मैं कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ और बाकायदा उसकी डेमोंस्ट्रेशन करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं प्रोफेसर सर आपको, और आप इसी प्रकार सक्रिय बने रहें और आपके जो छात्र हैं वो आपके अनुभव का, आपकी से जो शिक्षा प्राप्त करके बड़े बड़े पदों पर आसीन हो, हमारी यही कामना। आप स्वस्थ जीवन जिए और FM गोल से यूं ही जुड़े रहे। और साथ में एक और मेल हम मेरे पास आई है, आप हैं सुरभि मयूर विहार से, वो कहती हैं, दीदी मेरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मैं मुश्किल हालात में भी घबराती नहीं हूँ, चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो मैं शांत रहकर अपना काम करने की कोशिश करती हूँ, शायद यही हिम्मत और आत्मविश्वास मुझे दूसरों से अलग बनाता है।
0: बिल्कुल। और रश्मि जी देखिए, एक और मेल है राजेश शर्मा जी का, वो कहते हैं कि मेरी आदत है कि मैं ज़्यादातर सच बोलता हूँ। देखिए कितनी अच्छी आदत है ना। और वो कहते हैं कि उनका बिजनेस है और वो जो अपने क्लाइंट्स को जो भी कमिटमेंट देते हैं समय की, उसे वो समय पर डिलीवर करते हैं, उसे समय पर पूरा भी करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि इसी आदत की वजह से उन्हें समाज में एक बहुत अच्छा स्थान मिला हुआ
1: जी,
0: है।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय होती है, हमेशा सच बोलना चाहिए और हम भी हमेशा कोशिश करते हैं कि सच बोलें, सच के साथ रहें। और एक और मेल आ गई है हमारे पास, उग्रसेन यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कह रहे हैं कि मेरी हमेशा से ये सोच रही है कि किसी को कोई गुमराह होने वाली सलाह मत दो, अगर उनकी मदद करने की पॉसिबिलिटी हो तो ज़रूर करें और कोशिश करें। बिल्कुल सही आपने कहा यादव जी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रतिभा, कुछ और जानकारियों के साथ।
0: बिल्कुल, देखिए रश्मि जी, जब हम अपने देश को, हम चौतरफा जब अपनी नज़र दौड़ाते हैं हर राज्य, हर क्षेत्र में, हर ज़िले में, हमें अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कलाएं, अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं जो हमारे देश की एक अनमोल धरोहर है, है ना। और ऐसी ही आज हम बात करेंगे कला, ऐसी ही एक कला की जो कि हमारे ब्रज क्षेत्र की आत्मा कहलाती है, जो कि है सांझी कला।
1: ये कला भारत के ब्रज क्षेत्र, मुख्य रूप से मथुरा और वृंदावन की एक पारंपरिक और अत्यंत प्राचीन कला है प्रतिभा। और इसमें रंग बिरंगे कागजों पर अत्यंत बारीक और जटिल जो डिजाइन है वो उकेरे जाते हैं, स्टेंसिल्स बनाए जाते हैं।
0: और देखिए स्टेंसिल तो बनाए जाते हैं, लेकिन इनका जो उपयोग है ना वो दीवारों और पानी पर मनमोहक रंगोली बनाने या आकृतियां उकेरने के लिए किया जाता है। और उस सांझी कला के बारे में अगर हम और बातें करें तो सबसे खास बात ये है कि ये जो सांझी शब्द है वो हिंदी के संध्या यानी शाम से निकला हुआ है, है ना। और ये कला जो है शाम के समय में बनाई जाती है, और कहा जाता है कि जो ये वाला समय होता है ना शाम वाला, वो भगवान कृष्ण के ब्रज लौटने का समय होता है, और इसे राधा कृष्ण के प्रेम और उनकी रासलीला का प्रतीक माना जाता
1: भाई
0: है।
1: शाम भी है और श्याम भी है।
0: बिल्कुल।
1: और पुराणों में उल्लेख है कि संध्या के समय जब भगवान श्री कृष्ण गोचरण करके आते थे तो ब्रज गोपियां उनके स्वागत में फूलों की चित्रकला सजाकर उनका स्वागत करती थी, तभी से ब्रज में ये सांझी कला की शुरुआत हुई।
0: देखिए जैसा कि आपने शुरू में बताया कि स्टेंसिल्स बनाए जाते हैं कैंची से ये काट कर, और सबसे जो खास बात यह है कि जो इसके डिजाइन होते हैं ना वो बहुत खूबसूरत होते हैं। इसमें मोर, फूल और कृष्ण लीला के जो डिजाइन है वो काटे जाते हैं, और फिर इन स्टेंसिल्स को जमीन पर या पानी की सतह पर रखकर उसमें रंग या सूखे फूल डाले जाते हैं।
1: जी, और जब कागज हटाते हैं ना प्रतिभा तो एक शानदार चित्र उभर जाता है। और ये मंदिरों में जो सांझी बहुत श्रद्धा के साथ बनाई जाती है, भाई हमें भी ऐसे ही एहसास हो रहा है, ये जो विषय है आज का, मन में श्रद्धा पैदा हो रही है। और ये कला अध्यात्म और हस्तशिल्प का एक अनूठा संगम है जो आज भी भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजे हुए है।

0: राम तेरी गंगा मैली। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और रश्मि जी, कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन, और हमारे साथ हमारे श्रोता भी जुड़े हुए हैं। एक बार हम अपना प्रश्न श्रोताओं को एक बार फिर से बता देते हैं
1: जी, बिल्कुल,
0: कि ऐसी कौन सी आदत या ऐसी कौन सी खूबी है जो आपको बेहतर बनाती है, बेहतरीन बनाती है। और आपको हमें मेल करना है fmgoldga@gmail.com पर।
1: जी, एक मेल मेरे पास आ गई है, आप हैं कुमुद वैशाली से। वो कह रही हैं कि मैं जल्दी हार नहीं मानती, मुश्किल चाहे कितनी भी हो, मैं जब तक रास्ता ना मिल जाए मैं कोशिश करती रहती हूँ। वाह, क्या बात है। देखिए, हमारे श्रोता ही हमें सिखाते हैं जिंदगी जीने का तरीका।
0: जी, बिल्कुल। और देखिए, हम एक दूसरे से सीखते ही तो हैं
1: जी,
0: है ना। और जो ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा बनकर ही आ गया।
1: एक और मेल हमारे पास आई है, लता जी हैं, वो कह रही हैं सकारात्मक सोच रखती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और आप और भी जानकारियाँ कहीं लेकर आई हैं प्रतिभा?
0: बिल्कुल। और देखिए रश्मि जी, सरकार ने जो है ना जनहित को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हुई हैं, और जिनका लाभ अनेकों अनेक लाभार्थी उठा भी रहे हैं। और सरकार ने हमारे पशु पालकों का भी ध्यान रखा है, है ना। और उनके ध्यान को रखते हुए, उनके हितों का ध्यान रखते हुए सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिसका लाभ छोटे पशुपालक, महिलाएं सभी को ही उठा रहे हैं। और उनमें एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना।
1: क्या बात है, आपने पहले सांझी कला में कृष्ण की बात की और उसके बाद आप गोकुल मिशन में आ गई। आज आप थोड़ा सा वृंदावनी हो रहा है मन। और भाई, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा शुरू की गई ये प्रमुख योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जो देसी गाय है ना, उनका, भैंसों का, नसों का, उनका संरक्षण करना, संवर्धन करना और दुग्ध उत्पादकता को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाना है।
0: बिल्कुल। और इसी के तहत जो है ना, उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं का उत्पादन, कृत्रिम गर्भाधान और IVF जैसी आधुनिक तकनीक के माध्यम से देसी मवेशियों की नस्लों में सुधार करना है। साथ ही साथ स्वदेशी नस्लों की दूध देने की क्षमता और उत्पादन में वृद्धि करना भी है।
1: तो भाई, जो महिलाएं स्वरोजगार अगर की तरफ मुड़ना चाहती हैं, अगर ऐसा कुछ काम करना चाहती हैं, तो भाई उनको जो है पूंजीगत लागत पर 50% तक सब्सिडी मिल जाती है। और मवेशियों के जो वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए विशेष गोकुल ग्राम एकीकृत केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।
0: हाँ, बिल्कुल। और देखिए रश्मि जी, ये जो है ना, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसान उच्च नस्ल के मवेशियों की ऑनलाइन खरीद और बिक्री कर सकते हैं। और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए गोपाल रत्न और कामधेनु जैसे पुरस्कार भी दिए जाते हैं।
1: तो अगर इस सब्सिडी का लाभ उठाना चाहती हैं कोई महिला या जो भी स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो जो नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र है राज्य के, उसके पशु पालन विभाग या कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं।

0: हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में। अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी नदिया के पार। और रश्मि जी, एक मैसेज और आया है इदरीस सैफी जी का, वो भी हमारे एक रेगुलर लिसनर हैं और मेल करते हैं। उन्होंने लिखा है कि उनकी जो आदत है वो ये है कि कोशिश करते रहना।
1: हाँ, और शीतल शाह बेंगलोर से जुड़ गई है हमारे साथ। वो कह रही है, जिंदगी के ऊंचे नीचे रास्ते पर मैं गिरी, संभली, चोट खाई, दिल टूटा पर हार नहीं मानी। और आध्यात्म का ज्ञान और गीत संगीत का साथ उनका रहा, तो जीवन में उनको वो संभल गई। मैं बता दूं आपको, शीतल जो हैं बहुत अच्छी कहानीकार हैं, और इनकी कहानियां समय समय पर विभिन्न एफएम चैनल से प्रसारित होती रहती हैं। विविध भारती में भी इनकी कहानी प्रसारित हो चुकी है, और मैं पानी पर लिखी कहानी में भी इनकी कहानियाँ ले चुकी हूँ, और शीतल जुड़ी हुई हैं। अच्छा लग रहा है, इसी तरह से जुड़े रहिए शीतल जी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखकर श्रोताओं का मनोरंजन करती रहिए। और के साथ एक दो श्रोता मेरे साथ और जुड़ गए हैं। आप हैं राघव दिलशाद गार्डन से, वे कह रहे हैं, मेरे अंदर सबसे अच्छी खूबी शायद ये है कि मैं

0: रिश्तों और जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। अपने परिवार और अपने लोगों का साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है और कोशिश करता हूँ मुश्किल समय में मेरे अपने लोगों को ये महसूस हो कि वो अकेले नहीं है।
1: देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी आदत है, क्योंकि रिश्तों को सहेज कर रखना बहुत जरूरी है और उसमें जो संतुलन है ना, वो इन्हीं सब आदतों के चलते ही आता है। क्यों?
0: और एक और मेरे पास थोड़ा सा मजाकिया सा जवाब आ चुका है। आप है सोनीपत से वीरवान जी, वो कह रही है मेरी खूबी बताऊं भाई, मैं बहुत धैर्यवान हूँ, और खासकर तब जब मेरी पत्नी कहती है बस 5 मिनट में मैं तैयार हो रही हूँ। वैसे सच कहूँ तो मैं बहुत खुश मिजाज हूँ, लोगों की मदद करना बहुत पसंद करता हूँ और मुश्किल समय में अपने लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। पर ये हंसमुख होने की आदत आपकी बहुत अच्छी लगी वीरवान जी, बनाए रखिए इसे।
1: बिल्कुल। और रश्मि जी, तो आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं
0: जी,
1: अपने कार्यक्रम में।
0: बिल्कुल।
1: और आज हम देखिए बात करेंगे कि ऐसी आर्मी की जो सरहदों की रक्षा नहीं करती, वो रक्षा करती है एक पक्षी की।
0: वाह
1: जी हाँ, हरगिला एक पर्यावरण प्रहरी है, जिसका जिक्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी किया है।
0: जी, हरगिला जो है वो असम में पाया जाने वाला दुर्लभ पक्षी है, जो पर्यावरण को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक जमाने में इसको माना जाता था कि भाई देखना अच्छा नहीं मानते
1: जी।
0: थे, तो ये होता था गांव वाले जिस पेड़ पर इस पक्षी का घोंसला होता था ना प्रतिभा, वहां के लोग उस पेड़ को ही काट देते थे। लेकिन देखिए कैसी विडंबना थी, क्योंकि जो व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सफाई में योगदान दे रहा है, लोग थोड़ा सा डर जाते थे उसे,
1: बिल्कुल।
0: है ना।
1: हाँ, और देखिए जो अंधविश्वास और डर होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक सोच को जन्म देता है और भाई नुकसान भी होता है। और देखिए ऐसे में डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन, जो कि एक जीव विज्ञानी है, उम्मीद की किरण बनकर आई। जब उन्होंने हरगिला को इस तरह मरते देखा, तो उन्होंने लोगों के मन में बसे अंधविश्वास और डर को दूर करने की जिम्मेदारी उठाई और साथ ही साथ गाँव की महिलाओं को इकट्ठा किया और विज्ञान के जरिए उन्हें समझाया कि जो ये हरगिला है वो अंधविश्वास से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, ये तो बल्कि पर्यावरण प्रहरी है। और धीरे
0: जी
1: धीरे देखिए बदलाव आया।
0: आया, और सही तरीके से जो उन्होंने जानकारी दी, उन्होंने इस जो परंपरा जो थी उसको तोड़ दिया और बदला और हरगिला का संरक्षण किया।

0: बंदिनी। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी आशा भोसले की।
1: और प्रतिभा, तुम खूबियों के बारे में पूछ रही थी, तो
0: जी
1: शीशपाल अकेला जी गाजियाबाद से कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और ना ही मैं कसम कभी खाता हूँ। भाई अच्छी बात है, हमने भी यही सीखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। और एक और बड़ा मज़ेदार सा मेल मुझे मिला है पालम से, हिमांशु जी लिख रहे हैं, वो कहते हैं मेरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मैं हर परिस्थिति में खाने का जुगाड़ कर लेता हूँ।
0: अच्छा
1: जी,
0: हाँ
1: परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, परेशानी कितनी भी बड़ी हो, मैं पहले चाय पीता हूँ और फिर सोचता हूँ कि समाधान क्या निकलेगा। और दोस्तों के बीच मेरी यही खासियत है कि मैं माहौल को बिल्कुल हल्का कर देता हूँ। मेरा मानना ये है कि जिंदगी में समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन अगर मुस्कुराने की आदत बनी रहे तो आधी समस्याएं वैसे ही छोटी लगने लगती हैं।
0: बिल्कुल। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि बड़े हल्के तरीके से, मतलब बड़े माहौल को हल्का करके वो समस्याओं का हल निकाल लेते हैं और परिस्थिति को जो है उसको ओवरकम कर लेते
1: जी
0: हैं, है ना।
1: बिल्कुल। और विवेक हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी खूबी यह है कि मैं गलती होने के बाद भी आत्मविश्वास नहीं खोता। आखिर गलती मेरी हो तो उसे भी समझाने के लिए मेरे पास कम से कम 10 अच्छे बहाने जरूर होते हैं, मतलब बहानेबाज हैं भाई विवेक जी। लेकिन मजाक से अलग, मजाक से अलग, और वो कहती है मैं अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूँ और मैं लगातार ये कोशिश करता हूँ कि गलतियों को दोहराऊँ ना।
0: और देखिए रश्मि जी, जो समय है वो निष्पक्ष है ना। देखिए अब समय
1: जी
0: निरंतर चलता है और उसने हमें इशारा कर दिया है कि हमारे चलने का हो गया है वक्त, है ना।
1: हाँ बिल्कुल,
0: और तो इसी वादे के साथ श्रोताओं से फिर मुलाकात होगी इसी जगह पर इसी समय पर। तो मुझे यानी प्रतिभा को और
1: रश्मि कुकरेती को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: घर आंगन आपके अस्तित्व, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों को बधाई दी। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी

0: पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
1: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा। भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कहा है कि परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदेह जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 638 अंक बढ़कर 76,698, जबकि निफ्टी 185 अंकों की बढ़त के साथ 23,952 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, 1964 में रिलीज हुई फिल्म संगम बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसने कुल 8 करोड़ की कमाई की, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगले आजम के बाद उस दशक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म रही। श्रोताओं, संगम पहली भारतीय फिल्म थी जिसकी शूटिंग विदेशों में जैसे लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड सहित कई स्थानों पर हुई थी। ये उस समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी और उस समय तक किसी भी भारतीय फिल्मों के लिए सबसे लंबी अवधि की फिल्म थी, जिसके कारण इसे सिनेमाघरों में 2 विराम यानी इंटरवल के साथ दिखाया गया।

श्रोताओं, संगम फिल्म की संगीत की अगर बात करें तो इसे संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था और गाने के बोल शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने लिखे थे। ये 1960 के दशक की सबसे अधिक बिकने वाली हिंदी फिल्म एल्बम रही। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में राज कपूर को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में वैजंती माला को फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। आपको बता दें, ये राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी और फिल्म इनकी शानदार और प्रसिद्ध रचना मानी जाती है।

श्रोताओं, बात फिल्म संगम की कहानी की करें तो ये तीन दोस्तों की कहानी है, सुंदर, गोपाल और राधा। बड़े होने पर सुंदर राधा से प्रेम करने लगता है, पर राधा गोपाल को पसंद करती है। जब सुंदर अपने दोस्त गोपाल को अपने प्यार के बारे में बताता है तो गोपाल राधा के प्रति अपनी भावना को मन ही मन दबा देता है। कुछ दिनों बाद सुंदर भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाता है और जाने से पहले गोपाल से वादा लेता है कि कोई उसके और राधा के बीच ना आ सके। कुछ दिनों बाद सुंदर के विमान नष्ट होने की खबर आती है, जिससे सभी मान लेते हैं कि सुंदर की मौत हो चुकी है। इसके बाद गोपाल राधा को अपने दिल की बात बताने के लिए एक लव लेटर लिखता है, जिसे राधा अपने पास छुपा लेती है। दोनों शादी करने के लिए सोचते ही हैं, तब तक सुंदर पूरी तरह

सुरक्षित और अच्छी हालत में वापस आ जाता है। सुंदर और राधा की फिर शादी हो जाती है। सब अच्छा चल रहा होता है कि एक दिन एक अननोन लव लेटर सुंदर के हाथ लग जाता है, जिससे वो राधा पर शक करने लगता है। सुंदर व्याकुल हो जाता है, जिसे देखकर गोपाल को कोई और रास्ता नहीं सूझता और वो सुंदर को से बंदूक लेकर खुद को गोली मार लेता है। और अंत में राधा और सुंदर वापस एक हो जाते हैं।

गए फैसलों के परिणामों जैसे विश्वों को दर्शाती है। ये किरदारों द्वारा अपनी जटिल परिस्थितियों से जूझते हुए सामना किए जाने वाले संघर्षों और भावनात्मक उथल पुथल को चित्रित करती है। अपनी कहानी और किरदारों के कारण फिल्म को साहसिक और अपने समय से बहुत आगे माना गया है।

इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट रिया को दीजिए अनुमति।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनवियां खबरां। जनतक प्रीख्यावां च अनुचित साधना की रोकथाम बारे सोध बिल 2026 अज लोकसभा विच पेश कर दिता गया है। संसद के दोवां सदनां की कार्रवाई नीट मुद्दे ते विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन दौरान कथित पुलिस वधीकियां के विरोध विच विरोधी धिर दे हंगामे कारण 2 तक मुलतवी कर दिती गई है। सुप्रीम कोर्ट विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन दौरान पुलिस वलों ताकत की ज्यादा वरतों संबंधी कई पटीशनां ते कल सुनवाई लई सहमत हो गई है। राष्ट्र अज साबक राष्ट्रपति ते उग्गे विज्ञानी डॉ APJ अब्दुल कलाम नूं उनां दी बरसी ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 अज नवी दिल्ली विच शुरू हो गई है। हुण खबरां विस्थार नाल। लोकसभा च जनतक प्रीख्यावां अनुचित साधना की रोकथाम सोध बिल 2026 पेश कर दिता गया है। पहली बार मुलतवी होने तो बाद सदन की कार्रवाई मुड़ शुरू होने ते अमले जनतक शिकायतां ते पेंशन राज मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सदन विच बिल पेश कीता। इस बिल च जनतक प्रीख्यावां च अनुचित साधना की रोकथाम बारे 2024 के कानून विच सोधां की व्यवस्था है। बिल पेश कीते जाण दौरान विरोधी धिर के मैंबरां ने नीट मुद्दे ते विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन दौरान कथित पुलिस कार्रवाई ते चर्चा की मांग करदे हंगामा कीता। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बिल प्रीख्या वल सुधार विच इक महत्वपूर्ण कदम अते इस ते व्यापक चर्चा होनी चाहीदी है। उन्होंने मैंबरां नूं सहयोग अते अर्थपूर्ण चर्चा की अपील करदिआं मर्यादा बनाई रखने की अपील कीती।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं, ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
1: पर हंगामा जारी रहा ते सभा दोपहर बाद 2 तक मुलतवी कर दी गई। इस तो पहला सवेरे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से स्पीकर ओम बिरला ने भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, चिनम्बम ऋषिकांत सिंह, राजा मुथु पांडिये ते पैरा पावर लिफ्टर जंडू कुमार नू 23वीं राष्ट्रमंडल खेडां विच तमगा जितण ते वधाई दित्ती। प्रश्नकाल शुरू हुंदे ही विरोधी धिर दे मैंबरां ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन दौरान कथित पुलिस वधीकियां का मुद्दा उठाया। राज्यसभा विच भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहली बार कार्रवाई मुलतवी होने तो बाद जदों 12 कार्रवाई मुड़ शुरू हुई तो विरोधी धिर ने फिर हंगामा किया। इस तों बाद सभापति CP राधा कृष्ण ने सदन नूं दुपहर बाद 2 तक मुलतवी कर दिता। इस तों पहलां राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने ते विरोधी धिर दे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 तहत विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन दौरान पुलिस कार्रवाई ते चर्चा की मांग की। संसदीय मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू ने सारे संसद मैंबरों नूं प्रीख्या सोध बिल ते चर्चा विच हिस्सा लैण की अपील की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री रिजिजू ने कहा है कि वह सारे संसद मैंबरों नूं अज की चर्चा विच हिस्सा लैण, नौजवान पीढ़ी की आवाज सुनन अते विद्यार्थियों दे भविख लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों लए गए इतिहासक फैसले नूं ध्यान विच रखण की अपील करदे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रीख्या सुधारां ते एक उच्च पद्धरी टास्क फोर्स का गठन का ऐलान किया है, जिसकी अगवाई प्रसिद्ध तकनोलॉजी माहिर नंदन निलेकणी करनगे। एक वीडियो संदेश विच उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स प्रीख्या सुधारां ते ध्यान केंद्रित करेगी ते इसकी रिपोर्ट के आधार ते आने वाली प्रीख्यावां की भरोसेयोगता नूं यकीनी बनाने लई जल्दी तो जल्दी कदम चुके जाणगे। उन्होंने कहा कि देश की प्रीख्या प्रणाली भरोसेयोग, पारदर्शी ते तकनोलॉजी की वध तों वध वरतों होनी चाहीदी है। टास्क फोर्स विच साबक इंटेलीजेंस ब्यूरो डायरेक्टर तपन डेका, इसरो दे साबक चेयरमैन S सोमनाथ ते IIT चेन्नई दे डायरेक्टर वी काम कोटी भी शामिल होंगे। साबक सिख्या सकत्र अनीता करवाल ते प्रबंधन माहिर अमृत लाल मीणा भी टास्क फोर्स विच शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रीख्या पेपर लीक मामले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर कथित तौर पर पुलिस वालों ताकत की बहुत ज्यादा वरतों संबंधी कई पटीशन से कल सुनवाई लई सहमत हो गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ते जस्टिस जयमल बागची ते वी मोहना की बेंच ने विरोध प्रदर्शन दौरान जख्मी हुए पुलिस मुलाजमान के परिवारों वालों दायर पटीशन से भी सुनवाई करने का फैसला किया है। इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि शांतमई ते कानूनी विरोध प्रदर्शन एक संवैधानिक अधिकार है। केन्द्र सरकार की नुमाइंदगी कर रहे सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह अदालती कार्रवाई में सहयोग करेंगे। आकाशवाणी सुन रहे हो साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब ते साडा चैनल है @AIR जलंधर। अज साबक राष्ट्रपति भारत रत्न ते प्रसिद्ध विज्ञानी डॉ APJ अब्दुल कलाम की बरसी है। मिजाइल मैन वजो जाने जाते डॉ कलाम ने देश की रक्षा ते पुलाड़ खोज नवीं उचाई ते लिजाण विच मुख भूमिका निभाई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अज साबक राष्ट्रपति ते भारत रत्न डॉ APJ अब्दुल कलाम नूं उन्हां दी बरसी ते श्रद्धांजलि भेंट कीती। एक सोशल मीडिया पोस्ट च श्री बिरला ने कहा कि डॉ APJ अब्दुल कलाम एक विकसित आत्मनिर्भर ते मजबूत भारत का सुपना देखने वाली दूर अंदेश शख्सियत सन। उन्होंने कहा कि डॉ कलाम का स्वदेशी मिजाइल ते पुलाड़ प्रोग्रामों नवी उचाई ते लिजाण विच योगदान भारतीय विज्ञान के इतिहास विच सुनहरी अक्षरां विच लिखा जाएगा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी अज साबक राष्ट्रपति डॉ APJ अब्दुल कलाम नूं उन्हां दी बरसी ते श्रद्धांजलि भेंट कीती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच गृहमंत्री ने डॉ कलाम नूं भारत के पुलाड़ ते मिजाइल प्रोग्रामां च निर्माता करार दिता। गृहमंत्री अमित शाह ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के जवानों और उनके परिवारों को इस स्थापना दिवस से बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि अपनी स्थापना तो लेकर CRPF ने भारत की अंदरूनी सुरक्षा यकीनी बनाने लई हर लड़ाई जीत के अणगिणत मील पत्थर हासिल किए ने। उन्होंने कहा कि भावें नक्सलवाद को खत्म करना हो या देश की शांति और तरक्की की रक्षा करना CRPF ने हमेशा राष्ट्र की उम्मीदों से खरे उतरदियां अपनी जिम्मेवारियां निभाईयां ने। असाम विच हड़ां संबंधी हालत विच सुधार होया है। ज्यादातर इलाकों विच हड़ां दा पानी घट रहा है। इस समय 37,000 तो वध लोग सब तो वध प्रभावित जिलों शिवसागर गोलाघाट जोरहाट ते चराईदेव विच स्थापित 109 राहत कैंपां विच रह रहे ने। हुण तक असाम विच हड़ां कारण 68 लोगों की मौत हो चुकी है।

22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 अज नवी दिल्ली विच शुरू हुई। 7 दिनों के इस टूरनामेंट विच कई श्रेणियों विच मुकाबले होंगे। फाइनल अगले महीने की 2 तरीक नूं खेडिया जाएगा। उद्घाटनी समारोह विच दिल्ली दे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप विच भाग लैण वाले देशां विचकार संबंधां नूं मजबूती मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि खेडां विच लोकां नूं एकजुट करन अते आपसी समझ नूं वधाउण दी विलक्खण शक्ति है। कैनेडा के ओंटारियो विच स्क्वैश विश्व जूनियर टीम चैंपियनशिप च भारतीय पुरुष टीम ब्राजील ते नीदरलैंड नूं 3-0 नाल हरा के प्री क्वार्टर फाइनल विच पहुंच गई है। भारतीय महिला टीम ने चीनी ताइपे नूं 3-0 नाल हराया। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने अज पाकिस्तानी अधिकारियों नूं अपील की है कि वह पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के रावलकोट तो मुजफ्फराबाद तक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों आयोजित मार्च में हिस्सा ले रहे शांतमई प्रदर्शनकारियों विरुद्ध ताकत की वरतों न करन। संगठन ने कहा कि 5 जून तो पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में चल रहे अंदोलन दौरान 40 तो वध लोगों की जान जा चुकी है। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र यूरोपीय यूनियन अमरीका बरतानिया रूस और व्यापक अंतरराष्ट्रीय भाईचारे को अपील की है कि वह नागरिकों की सुरक्षा और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गंभीर हालत के शांतिपूर्ण हल को यकीनी बनाने के यत्नों का समर्थन करें। अंत में चोणवीं खबरें एक बार फिर सुन लो। जनतक प्रीख्यावां च अनुचित साधनां दी रोकथाम बारे सोध बिल 2026 दी लोकसभा विच पेश कर दित्ता गया है। संसद दे दोवां सदनां दी कारवाई नीट मुद्दे ते विद्यार्थियों दे विरोध प्रदर्शन दौरान कथित पुलिस वधीकियां दे विरोध विच विरोध दी धिर ते हंगामे कारण 2 बजे तक मुलतवी कर दित्ती गई है। सुप्रीम कोर्ट विद्यार्थियों दे विरोध प्रदर्शन दौरान पुलिस वल्लों ताकत दी ज्यादा वरतों संबंधी कई पटीशनां ते कल सुनवाई लई सहमत हो गई है। राष्ट्र अज साबक राष्ट्रपति के उगे विज्ञानी डॉ APJ अब्दुल कलाम उन्हां दी बरसी ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 अज नवी दिल्ली विच शुरू हो गई है। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रदेशक खबरां दा बुलेटिन शामी 6:20 ते होगा। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। हुकूमत ने लोकसभा में अपोजिशन की हंगामाराई के दौरान सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस की जानिब से जरूरत से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल से मुतालिक दरखास्तों की कल समाअत करने पर इत्तेफाक किया। अमरीका और ईरान की जानिब से फौजी कार्रवाइयां रोकने के बाद आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। और 22वीं दौलत मुशरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। अब खबरें तफसील से। सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीम बिल 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल का मकसद सरकारी इम्तिहानात हल के लिए मुनासिब इकदाम किए जा सके। उन्होंने तमाम अरकान से ताउन करने और इस अहम बिल पर बहस में सरगर्मी से हिस्सा लेने की भी दरख्वास्त की। ताहम अपोजिशन अरकान तलबा के एहतजाज पर मुबैना पुलिस कार्रवाई के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामा आराई जारी रहने पर स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल 11 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने भारत की मुमताज वेटलिफ्टर्स मीराबाई चानू, ऋषिकांत सिंह, राजा मुथु पांडी और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को स्कॉटलैंड में 23वें दौलत मुशरका खेलों में तमगे जीतने पर मुबारकबाद दी।
1: 23वीं राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुथु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा पावर लिफ्टर श्री झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की असलाहत के लिए टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर नंदा नीलेगनी की क़यादत में एक आला इख्तियाराती टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है। एक वीडियो पैगाम

0: उन्होंने कहा कि ये टास्क फोर्स इम्तिहानात की इस्लाहात पर गौर करेगी और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द अज जल्द मुमकिन इकदाम किए जाएंगे ताकि आइंदा इम्तिहानात को काबिल एतमाद बनाया जा सके।
1: हम पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: ये टास्क फोर्स साबिक आईबी डायरेक्टर तपन डीका, इसरो के साबिक चेयरमैन एस सोमनाथ, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामाकोटी पर मुश्तमिल होगी। इनके अलावा तालीम की साबिक सेक्रेटरी अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक्स के माहिर अमृतलाल मीना भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। जेडीयू लीडर और राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट संजय झा ने आज कहा कि इम्तिहानात में इस्लाहात के सिलसिले में तश्कील दी गई आला इख्तियाराती टास्क फोर्स से इंसानी मुदाखलत कम होगी और टेक्नोलॉजी पर मबनी तरीक़ेकार फराहम होगा। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जनाब झा ने कहा कि ये कमेटी मुस्तकबिल में बगैर किसी खामी के इम्तिहानात को यकीनी बनाने की खातिर एक पुख्ता तरीक़ेकार फराहम करेगी।
2: जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगा।
0: बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा के एमपी तरुण चुग ने कहा कि इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों के इस्तेमाल को खत्म करने की खातिर मुजवजा बिल से वजीर आजम ने मोदी के मुल्क के नौजवानों और तलबा के मुस्तकबिल को महफूज करने के पुख्ता अजम की अक्कासी होती है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज अपोजिशन पार्टियों पर ऐवान की कार्रवाई में रुकावट पैदा करने और सरकारी इम्तिहानात से मुतालिक बिल पर बहस से बचने का इल्जाम लगाते हुए उनकी शदीद नुक्ताचीनी की। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह बिल उन अफराद के खिलाफ सख्त और मुकर्रर वक्त में सजा का तरीक़ेकार फराहम करेगा जो पेपर लीक में मुलव्वस पाए जाएंगे।
3: कांग्रेस पार्टी और कुछ दल है, उनको कहना चाहता हूँ, विषय को भटकने मत दीजिए। इस वक्त स्टूडेंट का इंटरेस्ट, देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए इस वक्त।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन दरख्वास्तों पर समाज से इत्तेफाक किया है जिनमें इम्तिहानात के पेपर लीक मामले पर एहतजाज कर रहे तलबा के खिलाफ पुलिस फोर्स के ताकत के मुबैना ज्यादा इस्तेमाल की बात कही गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और वी मोहन्ना पर मुश्तमिल एक बेंच ने एक अलहदा अर्जदाश्त पर गौर करने से भी इत्तेफाक किया जो उन पुलिस अहलकारों के कुंबे के अफराद ने दाखिल की है जिन पर एहतजाज के दौरान हमला हुआ था। इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह मुशाहदा किया कि पुरअमन और कानूनी दायरे में रहते हुए एहतजाज के हक को आईनी तहफ्फुज़ हासिल है। मरकज के लिए पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वो अदालत के साथ ताउन करेंगे। इस दौरान मुबैना पेपर लीक और दोबारा नीट इम्तिहान के ऐलान के सिलसिले में 3 मई को नीट यूजी को मनसूख किए जाने के पेश नज़र आरजेडी के रुकने पार्लियामेंट सुधाकर सिंह की जानिब से दाखिल करदा एक दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने कहा कि वो नीट इम्तिहान ऑनलाइन कराने से मुतालिक हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई नंदन नीलेकणी की क़यादत में आला इख्तियाराती टास्क फोर्स तजवीज़ पर गौर करेगी। ख़त्म हफ्ता में अमरीका और ईरान की जानिब से एक दूसरे पर फौजी हमले रोके जाने के पेश नज़र आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में आज 5% से ज़्यादा की कमी आई। ब्रेंट खाम तेल का आलमी अशारिया 5.3% गिरकर 91 अमरीकी डॉलर और 68 सेंट फी बैरल हो गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल में 5.4% से ज़्यादा की कमी आई और ये 84 अमरीकी डॉलर और 44 सेंट फी बैरल हो गया। ईरान की जानिब से इशारा दिए जाने के बाद कि जब तक अमरीका भी फौजी कार्रवाइयां रोके रखता है तब तक वो मजीद हमले नहीं करेगा, जिससे इस बात की उम्मीद पैदा हो गई है कि इस महाज आरआई का एक सिफारती हल निकल सकता है। शूटिंग में आज चीन के चीन में ISSF आलमी कप के खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में भारत

की ईशा सिंह ने सोने का तमगा जीता है। 22वीं दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप हर किसी के लिए तहरीक का बाइस है, जिससे इसमें शामिल होने वाले मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। इस 7 रोज़ा टूर्नामेंट में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, नाइजीरिया, कीनिया और जमैका जैसे ममालिक के शिरकत करने का इम्कान है, जो मुख्तलिफ ज़ुमरों में मुकाबला करेंगे। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने लोकसभा में अपोजिशन की हंगामा आरई के दौरान सरकारी इम्तहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने एहतजाज करने वाले तलबा के खिलाफ पुलिस की जानिब से ज़रूरत से ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल से मुतालिक दरख्वास्तों की कल समाअत करने पर इत्तेफाक किया। अमरीका और ईरान की जानिब से फौजी कार्रवाइयां रोकने के बाद आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। और 22वीं दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: in critical technologies through networking of multiple institutions. Dr. Kalam was one of the most distinguished scientists of the country, with the unique honor of receiving honorary doctorates from 30 universities and institutions. He has been awarded the coveted civilian awards Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and the highest civilian award Bharat Ratna. Dr. Kalam became the 11th President of India on 25th July 2002. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: In shooting, India's Isha Singh grabbed the gold medal in the women's 25-meter pistol event of the ISSF World Cup Rifle Pistol Shotgun in Hangzhou, China today. She upstaged Olympic medalist Manu Bhakar, who took the bronze, to complete a double podium finish for India. The 22nd Commonwealth Table Tennis Championship 2026 commenced in New Delhi today. Addressing the inaugural ceremony of the event, Delhi Chief Minister Rekha Gupta said Commonwealth Table Tennis Championships are an inspiration for everyone that will serve to strengthen relations among participating countries. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government introduces Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition ruckus. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju says preventing discussion on such important issues will send wrong message to the country. Global crude oil prices plunge around 6% after United States and Iran pause military strikes. Weather Department forecasts heavy to extremely heavy rainfall in parts of Odisha, Chhattisgarh and Gangetic West Bengal as deep depression forms over Bay of Bengal. Indian shooter Isha Singh clinches gold in women's 25-meter pistol event at ISSF World Cup. Manu Bhakar settles for bronze. And with that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
3: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
2: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार।

0: आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
2: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
1: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
1: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
3: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
4: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों। प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
1: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
5: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का हो गया, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा, उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716, जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,000

0: 956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगतसिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापाड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
2: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
4: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में

0: की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
1: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ. अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, शुरू करते हैं हम सभी का मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार। जी हाँ, आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले लेते हैं ये छोटा सा अंतराल।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस अभिनेत्री की जिसने बिना किसी फिल्मी परिवार से जुड़े हुए अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर इस इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारी खास अभिनेत्री कृति सेनन की। जी हाँ, आने वाले लगभग दौर में कृति ने अपना नाम बहुत ही ऊंचाइयों पर ला दिया है। तो सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, कृति सेनन का जन्म 27 जुलाई 1990 को नई दिल्ली में हुआ था। साथियों, उनके पिता राहुल सेनन चार्टेड अकाउंटेंट हैं और उनकी माता गीता सेनन दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रही हैं। साथियों, कृति ने जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग के दौरान ही उन्हें मॉडलिंग के ऑफ़र आने लगे और यहीं से उनके अभिनय करियर की शुरुआत हुई।

दोस्तों, कृति ने अपने भविष्य में बहुत ही जो फिल्में चयन कर रही हैं बहुत ही सोच समझ कर करती हैं। और कृति अपने अभिनय करियर की शुरुआत जो की थी वो 2014 में तेलुगु फिल्म से की थी, लेकिन उसी वर्ष उन्होंने टाइगर श्रॉफ के साथ बॉलीवुड फिल्म हीरोपंती में काम किया, जो कि उनकी एक शानदार शुरुआत थी। पहली ही फिल्म में उनकी मासूमियत और अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया और उन्हें उस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था।

दोस्तों, कृति सैनन ने फिल्म की थी बरेली की बर्फी। जी हाँ, इस फिल्म में कृति ने बिट्टी मिश्रा का किरदार निभाया था और हीरो थे इनके साथ आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव। और इन तीनों की केमिस्ट्री बहुत खूब पसंद की गई थी इस फिल्म में। यह फिल्म उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई थी।

दोस्तों, कहा जाता है कि एक मॉडलिंग असाइनमेंट के दौरान निर्देशक की नज़र कृति पर पड़ी। उनके स्क्रीन टेस्ट ने निर्माता और निर्देशकों को इतना प्रभावित किया और उन्हें फिल्म मिल गई हीरोपंती, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और उनके साथ थे टाइगर श्रॉफ। ये फिल्म इन दोनों ने जो शुरुआत की थी बॉलीवुड में, शानदार शुरुआत।

साथियों, शुरुआत में कृति कैमरे के सामने काफ़ी नर्वस हो जाती थी। उन्होंने कई इंटरव्यू में भी बताया कि अभिनय सीखने के लिए उन्होंने लगातार वर्कशॉप्स और स्क्रीन टेस्ट किए, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा। कृति अपनी सेहत को लेके बहुत ही सीरियस रहती हैं और वो फिटनेस को लेकर भी बहुत ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देती हैं। शूटिंग कितनी भी व्यस्त हो, लेकिन वह नियमित वर्कआउट और संतुलित भोजन का ध्यान रखती हैं। दोस्तों, यही कारण है कि उनकी स्क्रीन पे जो फिगर दिखती है, जो उनका बॉडी शेप है, हमेशा आकर्षक बना रहता है। कृति को बहुत कम लोग जानते हैं साथियों, कि उन्हें कविताएं और छोटे छोटे विचार लिखने का भी बहुत शौक है। जब भी उन्हें खाली समय मिलता है, वह पढ़ना और लिखना पसंद करती हैं। साथ ही साथ उनकी छोटी बहन नूपुर सेनन भी मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई हैं। दोनों बहनें अक्सर सोशल मीडिया पर साथ दिखाई देती हैं और एक दूसरे की सबसे बड़ी समर्थन मानी जाती हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार और तकनीशियन बताते हैं कि कृति अपने शांत और विनम्र व्यवहार के लिए बहुत मशहूर हैं। सेट पर समय की पाबंदी और सभी के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार उनकी पहचान माना जाता है।

साथियों, अब समय कह रहा है आपसे अनुमति लेने के लिए, लेकिन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, अपना ध्यान रख

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम मैथनी मेलोडीज का। जी हाँ साथियों, आज इस कार्यक्रम को लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, अगले आधे घंटे तक हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब संगीत केवल सुना नहीं जाता था बल्कि महसूस किया जाता था, जब मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मुकेश की आवाज़ें हर दिल की धड़कन बन जाती थी। तो आइए शुरू करते हैं यादों का यह खूबसूरत सफ़र इस गीत के साथ।

दोस्तों, फिल्म गाइड का गीत अभी आप सुन रहे थे। साथियों, फिल्म गाइड को हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से गिना जाता है। वहीद रहमान पर फिल्माया यह गीत आज भी आज़ादी और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। और दोस्तों, सुनते हैं अपना अगला गीत जो मुझे बेहद ही पसंद है और आशा करती हूँ कि आप सभी को भी बहुत पसंद आएगा। फिर करेंगे उसके बारे में बात। तो लीजिए, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

पुरस्कार भी मिला था। और हम सभी जानते हैं कि शादी ब्याह और खुशियों के मौके पर आज भी यह गीत उतना ही लोकप्रिय है जितना कि ये अपने समय में था। अब सुनते हैं अपना अगला गीत फिल्म आराधना से, और आवाज़ है किशोर कुमार की।

दोस्तों, राजेश खन्ना की सुपरस्टार छवि बनाने में इस गीत की बड़ी भूमिका रही। दार्जिलिंग की वादियों पर फिल्माया गया यह दृश्य आज भी यादगार है हम सबके दिलों में।

0: दोस्तों, राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया यह है गीत प्रेम, दर्द और जीवन की सच्चाइयों को बेहद खूबसूरती से बयान करता है। और साथियों, जो गाना अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसमें गुलजार के शब्द और आरडी बर्मन का संगीत इस गीत को और भी बेहतर बना देता है। यह गीत रिश्तों की गहराई और गहराई को बहुत संवेदनशीलता से प्रस्तुत करता है। तो लीजिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: बरसों बाद यूं खिलने निकली हूं, ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहाँ हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: पार्वती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं।
1: साथियों, अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, यह गीत प्रेम गीतों की सूची में हमेशा सबसे ऊपर रखा जाता है। मुकेश की आवाज़ और साहिर लुधियानवी के शब्द इस गीत को और भी अमर बना देते हैं।

दोस्तों, समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज के मैटिनी मेलोडीज में हमने 60 और 70 के दशक के उन गीतों का आनंद लिया जिन्होंने संगीत को नई पहचान दी और आज भी हर पीढ़ी के दिलों में बसे हुए हैं। इसी तरह हम फिर मिलेंगे नई यादों और नए सदाबहार नगमों के साथ। तब तक मुझे यानी अपनी दोस्त शिल्पा गोस्वामी को अनुमति दीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जाते जाते याद रखिए कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम उर्दू मजलिस का।

वो सब अदब पर असरअंदाज होता है और चुनांचे हमारे अदब पर भी असरअंदाज हो रहा है। मैं एक ऐसे नज़रिए का कायल हूँ जिसके लिए मेरे पास कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है, लेकिन तारीखी तजुर्बा बताता है कि वो नज़रिया किसी हद तक सही है। और मैं तारीख में मौसमों का कायल हूँ। जैसे एक बहार का मौसम होता है और एक ख़ज़ां का मौसम होता है, इसी तरह से तारीख जो है उसमें भी मौसम आते हैं। एक मौसम होता है बहार का, तो हर तरफ बहार ही बहार है, और एक मौसम होता है ख़ज़ां का और जवाल का, तो हर तरफ जवाल नज़र आता है। मिसाल के तौर पर हम 16वीं सदी पर अगर चले जाएं, तो हिंदुस्तान के तख्त पर अकबर, इंग्लिस्तान के तख्त पर एलिजाबेथ, शेक्सपियर जैसा शायर, यहाँ उर्फी और नज़ीरी और फैज़ी और अबुल फजल और तुलसीदास, ये एक हमें मंजर नज़र आता है। और अभी हमारी ज़िंदगी में जिससे मैं गुज़रा हूँ, आपका तो शायद हाशमी साहब बचपन भी उस वक्त न शुरू हुआ हो, सन 1930 के बाद की बात बता रहा हूँ, कि चारों तरफ ऐसा मालूम होता था कि हज़ारों आफ्ताब तुलू हो रहे हैं। कैसे कैसे अजीम शान नाम थे कि जिनके यानी नामों से एक तखय्युल को परवाज़ मिलते थे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, अबुल कलाम आज़ाद, या दुनिया के दूसरे विश्व नज़रियात से अलग शख्सियत की जो बुलंदी थी और अजमत थी, उसमें लेनिन का नाम, हालांकि इंतकाल हो चुका था, स्टालिन का नाम, चर्चिल का नाम, माओज़ेदुंग का नाम, इसके बाद 36-37 में स्पेन की जंग में, सिविल वॉर में जो अंग्रेज़ी शायरों के नाम आए, जिसमें ऑर्डन और स्पेंडर और ये सब थे, मैकनीस वगैरह थे, ये तमाम, T.S. एलियट जैसा शायर, यहाँ हिंदुस्तान में इकबाल और टैगोर, तो उसी में हम लोग भी छोटे मोटे शायर उभरे, लेकिन वो जो रोशनी थी उसकी कुछ किरणें हम पर भी आके पड़ी और हमारे चेहरे भी चमकने लगे, दमकने लगे। लेकिन अगर आप गौर करें तो वो उसी बहार के मौसम में अफसाने में चार बड़े नाम, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, ये चार सुतून हैं। किसी का नाम पहले ले लीजिए, किसी का बाद में ले लीजिए, ये सुतून हैं जिन्होंने हमारे अफसाने को नया डायमेंशन दिया। हमारी शायरी इतना बड़ा इकबाल जैसा शायर नहीं पैदा कर सकी, लेकिन शायरी ने जो तनव्वो दिया, जो नया एहसास जमाल दिया, जो वसत दी, वो इससे पहले हमारी शायरी में मौजूद नहीं थी। तनकीद ने इस ज़माने में अपने लिए एक तरह का, समझिए कि एक जश्न का सामान किया, क्योंकि बहुत हमारी तनकीद पिछड़ी हुई थी। इस ज़माने में तनकीद उभरी और आगे बढ़ी। आज का ज़माना जो है वो जवाल का ज़माना है। ये दुनिया इस वक्त जो है वो देवजादों की नहीं है, बौनों की दुनिया है, और वो हर तरफ आपको वही नज़र आएंगे। और उसमें आप ये देखेंगे कि अदब में भी उसी तरह की शख्सियतें आपको नज़र आएंगी जो कि दुनिया के दूसरे गोशों में नज़र आ रही हैं। लेकिन इसके साथ उर्दू ज़बान पर जो एक विपता पड़ी है, मैं उसका इल्ज़ाम किसी को नहीं देता, न किसी शख्स को, न किसी तंजीम को, बल्कि सियासी हालात की वजह से उर्दू पर जो विपता पड़ी, उसकी वजह से उर्दू ज़बान ने हिंदुस्तान में अपना माशरा खो दिया। उर्दू ज़बान के पास कोई माशरा नहीं है। जिस वक्त गालिब शेर कह रहे थे तो एक उर्दू माशरा था, जिस वक्त मीर शेर कह रहे थे उर्दू माशरा, इकबाल शेर कह रहे थे उर्दू माशरा था, हम लोगों ने जब शायरी शुरू की और अफसाने लिखे तो उर्दू का एक माशरा था। अदब लतीफ में अगर एक मजमून या एक नज़म छप जाती थी तो एक हफ्ते में सारे हिंदुस्तान में उसकी धूम मच जाती थी। आज 10 जगह छपे और फिर भी लोगों को पता नहीं चलता है, तो वजह क्या है कि वो माशरा बाकी नहीं रह गया। और एक दुलख्त सोसाइटी, मैं तो लखनऊ में ये भी कहने को तैयार हूँ कि हिंदी माशरा भी नहीं है, उर्दू माशरा तो नहीं है, ख़त्म हो गया, हिंदी माशरा भी नहीं बना है। मैं यानी लखनऊ जैसे शहर या दिल्ली जैसा शहर, आज इसका क्या तहजीबी सतह के ऊपर हम इसे किसका माशरा कहेंगे। मैं मुशायरे में नज़म पढ़ता हूँ या हमारे और दूसरे शुरा पढ़ते हैं, सामीन में 90% ऐसे लोग होते हैं जो उर्दू से नावाकिफ है और जिन्होंने सिर्फ उतना ही सुना है जितना पिछले मुशायरे में सुना था, उसके बाद से उन्हें कुछ नहीं मालूम है। पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ है, बावजूद इसके कि वहाँ की सरकारी ज़बान उर्दू है, लेकिन ये कि वो ज़मीन में उसकी जड़ें नहीं हैं, और उसकी वजह से वहाँ जो माशरा बन रहा है उसमें एक ख़ास कस्म की सतहियत है, और उसकी वजह से ये तनकीद नहीं है बल्कि एक इजहार ख्याल है, उसकी वजह से

0: हम यकीन से कह सकते हैं कि 100 बरस में भी दूसरा फैज पैदा नहीं होगा। यहाँ हिंदुस्तान में आप 100 बरस में भी किसी इकबाल का या किसी जोश वाली आबादी का तसव्वुर नहीं कर सकते, जो सूरत हाल है। और इसकी वजह से
1: जी
0: एक इन्हितात है, और उस इन्हितात से हम गुजर रहे हैं। बदकिस्मती से वो जमाना तो हमेशा तब्दील होता रहता है, लेकिन ये तब्दीली बदकिस्मती से हमारी नजरों के सामने हो रही है, और वो तारीख का पहिया हमारे दिलों के ऊपर से गुजर रहा है।
1: तज़िया आपका बहुत भरपूर, ख़ासतौर पे तारीख़ का जो तसव्वुर मौसमों से वाबस्तगी के साथ आपके जहन में है। मैं एक मौसम की तारीख़ के एक मौसम की याद दिलाऊँ आपको। 1857 हिंदुस्तान में एक इंतशार की बुनियाद था, और इत्तेफाक से दुनिया की मुख्तलिफ तहजीबों में उस वक्त एक कशमकश के अनासिर पैदा हुए थे, इसलिए कि कुछ अरसे के बाद पहली जंग अजीम की राहें हमवार होने वाली थी। उस इंतशारी दौर में हमें गालिब जैसा शायर मैसर आया, फ्रांस को फ्लॉबियर मैसर आया, जर्मनी को गेटे मैसर आया, और इसी तरह इंग्लैंड में मैथ्यू आर्नल्ड सामने आया अपने नज़रियात के साथ। ये तसव्वुर तारीख़ का कि एक पूरा अहद पूरी यूनिवर्स में किसी ख़ास एहसास या कैफियत या मौसम को मुजस्सम कर सकता हो, ये तस्लीम तो किया जा सकता है, लेकिन इसकी वजह कुछ महसूस किया कि आपने इंतशार और इन्हितात के बावजूद उस अहद में यानी 19वीं सदी के वस्त में बड़ी शख्सियात हमारे सामने आई।
0: वो दौर जो था वो तश्कीली दौर था, एक नए निज़ाम और नई तहजीब का। मैं उसको अगर तशबीह दूं तो सुबह होने से पहले तुलुए आफ्ताब की सुर्खी जो हमें उफुक पर नजर आती है। गालिब बड़ा शायर था, क्या इसलिए कि वो दो अहद, मैं गेटे वगैरह की बात फिलहाल नहीं करूँगा, सिर्फ गालिब की बात करूँगा ताकि मुख्तसर तरीके से बात हो सके, कि वो दो अहद थे जिनको दोनों को गालिब ने अपने अंदर जज्ब कर लिया था, उसके हम असर नहीं कर सके, ज़ौक नहीं कर सके, मोमिन नहीं कर सके, सब बहुत अच्छे शायर थे। और वो क्या था कि गालिब ने ये महसूस कर लिया था अच्छी तरह से कि वो पुराना अहद जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, जो मुग़ल, जिसकी नुमाइंदगी मुग़ल शहनशाहियत की अजमत किसी ज़माने में करती थी। इस ज़माने में जब वो बहादुर शाह के लिए ये कहते थे कि तेरी रफ्तार कलम जुम्बिश बाले जिब्रील, तो उन्हें मालूम था कि बहादुर शाह की क्या हैसियत है, तो वो इस तरह के, लेकिन वो उन्हें उस अहद के जाने का गम था। अच्छा, दुख जो है, गम एक तरह से एक नया सरमाया फराहम करता है, रूहानी यानी एनरिच करता है। अगर हम गम को सही मानों में अपने रगो पै में उतार लें तो वो एक बहुत बड़ा सरमाया होता है, बहुत बड़ी ताकत होती है। दूसरी तरफ गालिब ने यह महसूस कर लिया कि जो नया अहद आ रहा है वो पुराने अहद से मुख्तलिफ होगा। इसका इजहार गालिब की शायरी में मिलता है। मैं आपको दो तीन मिसालें मामूली सी दे दूं। मसलन ये कि गालिब अपना रिश्ता ईरान और तुरान के बादशाहों से जोड़ते थे, अपने आप को अफरासियाबी कहते थे गालिब, और उसके साथ उन्हें ये यकीन था कि बादशाहत का जमाना खत्म हो चुका। चुनांचे अपनी एक फारसी गजल में, मैं दो शेर भी पढ़ दूँ, उसके तर्जुमा कर दूंगा, कि मुजदय सुबह दरिन तीरा शबानम दादंद शमा को, मुजदय सुबह दरिन तीरा शबानम दादन शमा कुश्तन दो जो खुर्शीद निशानम दादन। अच्छा देखिए, हमारी पुरानी शायरी में रात निशात का सिंबल थी, ऐशो निशात की, यहाँ इस शेर में रात निशात का सिंबल नहीं है, सुबह निशात का सिंबल बन गई है। पहली बार गालिब ने यह हमको दिया तसव्वुर कि मुजदय सुबह दरिन तीरा शबानम, इस अंधेरी रात में मुझे सुबह का मुजदा दिया गया है और चराग बुझा दिया गया है और आफ्ताब का परचम बुलंद कर दिया गया है। उसके बाद और बहुत से शेर हैं, और असल चीज़ जो है वो वहाँ आती है जब वो गालिब ये कहता है कि गोहर अज रायत शाहान आजम बरचीदन, गोहर अज रायत शाहान आजम बरचीदन बायवस खामे गंजीदा फिशानम दादन, यानी बादशाहों के परचमों से मोती तोड़ दिए गए हैं और उसके बदले में मेरे हाथ में वो कलम दे दिया गया जो मोती उगलता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, इसको गालिब ने महसूस कर लिया था कि अब कलम का ज़माना आ रहा है। उसके साथ ही साथ गालिब ने एक जगह ये कहा है कि हमारे बुजुर्गों के टूटे हुए तीर मेरे हाथ में कलम बन गए हैं। फिर कलम की तारीफ में गालिब ने जो अशार कहे हैं फारसी उर्दू में, बेपनाह बड़े खूबसूरत अशार हैं। तो इसी के साथ गालिब ने एक और चीज़ उर्दू शायरी में शामिल की जो मीर के यहाँ नहीं थी, तशकीक। और तशकीक आज के अहद का मिजाज है। पुराना क्लासिकल समाज हर चीज़ बंधी टकी, ये कबूल किया, ये कबूल किया, ये कबूल किया, किसी चीज़ पर शक और शुबे की गुंजाइश नहीं थी। गालिब ने तशकीक

0: तशकीक को जिस सतह पर उसने पहुंचाया कि दीवान हमेशा हम्द के शेर से शुरू होते थे, गालिब का शेर फरियाद से शुरू होता है, नक्श फरियादी है, किसकी शोखी है तहरीर का, कागजी है पैरा। अच्छा, इसके बाद जो जमाना आया यानी 1857 की तबाही के बाद, उस जमाने की बात की पेशगोई की है हाल ही ने
1: जी,
0: और वो हमें आज अपने सामने नजर आ रही है कि 100-150 बरस में हाल ही की पेशगोई पूरी होती नजर आ रही है। यानी खाकम बदहन करके कहूँगा, खुदा करे ऐसा ना हो, लेकिन नजर आ रहा है कि गालिबो शेफ्ताओ नैयरो हाजुरदाओ जो, अब न दिखलाएगा शक्लें ये जमाना हरगिज, दागो मजरू को सुन लो कि फिर इस गुलशन में न सुनेगा कोई बुलबुल का तराना हरगिज। तो एक पेशीन गोई थी उस जवाल की जो हमारी शायरी और अदब पर इस वक्त आ रहा है। अब हम आप बीच में ही कहेंगे कि साहब इस दरमियान में तो इकबाल आ गया, इस दरमियान में प्रेमचंद आ गए
1: जी,
0: है? तो ये जो हैं ये साहब बुझते हुए चराग के शोले हैं जो ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। एक और चीज़ हुई है
1: जी
0: हमारी शायरी में, इकबाल के नाम से याद आया, ईरानी शायरी की इब्तिदा मसनवी से हुई है, फिरदौसी, और क्या शानदार। उसके अलावा फिर खुसरो की मसनवियाँ या ईरान के दूसरे शायरों की कसायद, इन लोगों के। इसके बाद जब ईरानी से समाज में इन्हितात आया तो तसव्वुफ के साथ गज़ल की शायरी आई है
1: जी।
0: जिसका यानी आला तरीन नमूना हाफिज़ हैं। हमारे यहाँ उर्दू शायरी गज़ल से शुरू हुई, उसमें मसनवियाँ कहीं गई कसायद, लेकिन दूसरे दर्जे के, तीसरे दर्जे के हैं। ईरान में आप किसी ईरानी के सामने ये नहीं कह सकते कि हाफिज़ फिरदौसी से बड़ा शायर है, वो तो फिरदौसी को खुदा मानता है ईरानी। तो ये जो हुआ है, तो हमारे यहाँ इकबाल उस खात्मे पर आए हैं, गज़ल जब अपने उरूज को पहुँच चुकी गालिब की शक्ल में
1: जी।
0: उसके बाद जितने भी गज़ल के शायर आए वो गालिब से कम सर थे, वहाँ इकबाल एक नज़म का बहुत बड़ा शायर बन के आया और नज़म को भी उसने हिमालिया की बुलंदियाँ अदा कर दी।
1: जाफरी साहब, एक बात, चूँकि आपकी बड़ी तख्लीकात नसर में हों या नज़म में, उनका तालिब इल्म हूँ मैं पूछना चाहता था आपसे कि रिवायत से आपका बड़ा गहरा रिश्ता, कबीर हों या फारसी के शुआरा हों या इकबाल हों या गालिब हों, उन सब के सिलसिले में एक ताबीर का, तफहीम का बहुत बड़ा फरीजा आपने अंजाम दिया है। मैं जानना चाहता था खुद आपके सिलसिले में, आपकी शायरी के सिलसिले में हम लोगों ने अक्सर बहुत से सवालात उठाए, कभी कभी एतराज़ात किए, कभी कोई ऐसी बात कही जो हमें नहीं कहनी चाहिए थी, एहसास हुआ आप हमारे बुजुर्ग हैं। खुद ये जो बुलंद आहंगी है आपकी शायरी में इब्तदा से, एक शिद्दत जिसमें तशबीह और इस्तारे का बड़ा गहरा दखल होता है, हमने बचपन में नज़में आपकी पढ़ी हैं और खून खोलता हुआ महसूस किया है, अब भी वो नज़में दोहराते हैं तो महसूस होता है कि खून की रवानी जो है तेज़ हो, लेकिन जब हमने पढ़ा इल्म तो मालूम हुआ कि बुलंद आहंगी ख्वा इकबाल की हो या सरदार जाफरी की, वो शायरी की मजमू या मुकम्मल शनाख्त नहीं हो सकती। कभी खुद एहतसाबी का इस तरह का नज़रिया आपका रहा
0: है
1: जी?
0: लेकिन ये कि ये बुलंद, पहले तो ये बताओ ये बुलंद आहंगी मेरे यहाँ कैसे आई और क्यों आई? पहली चीज़ तो ये कि मैं, मेरा पहला असर मैंने जो कबूल किया वो अनीस का था, ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो शायरी जो किसी समाज के तब्दील करने के तसव्वुर के बग़ैर पैदा होती है उसमें दाखिलियत ज़्यादा होती है, और हमने अपने ऊपर ये फरीज़ा भी आयद कर लिया था सही या गलत कि हम अपनी शायरी से समाज को तब्दील कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि आज़ाद नज़म में मेरे यहाँ बुलंद आहंगी ज़्यादा है पाबंद नज़मों के मुकाबले में, और आज़ाद नज़म जो है वो चूँकि उसके अंदर काफ़िए का की झनकार नहीं होती है, इसलिए उसमें बहर की रवानी
1: जी
0: और आहंग की बुलंदी बहुत ज़रूरी है। वो आपको वॉल्ट विटमैन के यहाँ मिलेगी, पाब्लो नरूदा के यहाँ मिलेगी। एक ये आम ख्याल है कि मैंने पाब्लो नरूदा से असर कबूल किया, ये बहुत दिलचस्प बात है। मैंने दरअसल असल जिनसे कबूल किया उसमें वॉल्ट विटमैन है, और मेरे और नरूदा के दरमियान वॉल्ट विटमैन मुश्तरक था। तो ये नरूदा तो मेरी ज़िंदगी में बहुत बाद में आए हैं, मेरी उनसे मुलाकात सन 1950 में हुई नरूदा से, वाकफियत उनसे मेरी सन 1948 में या 49 में।
1: साहब से मुलाकात हुई थी नरूदा?
0: हाँ, नरूदा की तस्वीर भी है जोश के साथ। वो वाकया भी बड़ा दिलचस्प है कि नरूदा मेडन्स होटल में ठहरे हुए थे, मैं ही था उनका मेज़बान यहाँ पर
1: जी।
0: तो उन्होंने मुझसे कहा एक दिन के दिल्ली, पुरानी दिल्ली की गलियों में बहुत घूमते थे, नई दिल्ली से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, और वहाँ कबाब खाना और ये सब चीज़ें रहती उनके। तो एक दिन मुझसे कहा कि भाई यहाँ आपका उर्दू का सबसे बड़ा शायर कौन है? तो मैंने कहा जोश।

0: मिलाई है तो हमने जोश को दावत दी उनके यहाँ आए तो नरुदा उनसे बहुत ही मशरक़ी अखलाक के साथ मिले। हस्पानियों में स्पेन वालों में मशरक़ी अखलाक मौजूद है, गले मिले और बैठे। फिर जोर साहब से पूछा कि कहिए आपकी शायरी का क्या हाल है ये, और फिर कह लगे हमें अपनी कोई नई नज़म सुनाइए। तो जोश ने मुझसे हंस के कहा कि गोया ये मेरी पुरानी नज़मों से वाकिफ है। फिर जोश ने अपनी नज़म सुनाई, नरुदा ने अपनी नज़म सुनाई, क्योंकि नरुदा का यह ख्याल था कि शायरी तर्जुमे के बग़ैर भी आप उससे लुत्फ़ानंदोज़ हो सकते हैं क्योंकि उसका एक आहंग होता है। चूँचि बम्बई में रोज़ शाम को हम लोग बैठते थे, मजरू भी आ जाते थे, कैफ़ी भी आ जाते थे रमेश थापर के घर पर, तो पाब्लो नरुदा अपनी नज़में सुनाते थे, हम लोग अपनी नज़में सुनाते थे।
1: तो तस्वीर वाली
0: बात, हाँ तो वो बुलंद आहंगी उस वजह से इन सब के यहाँ आपको मिलेगी, नरुदा के यहाँ भी मिलेगी, वहाँ भी मिलेगी। और मैंने चूँकि गज़लें नहीं कहीं इसलिए मेरा एक आहंग बन गया। अब मैं जो नज़म भी कहता हूँ वो गज़ल भी जो कहता हूँ तो उस गज़ल में फिक्री अनासिर ज़्यादा है।
1: जी एक बात और, कैपिटल आई, मैं जेल खाने में इश्क पेचां की नर्म बेलों को ढूंढता हूँ, जो फैल जाती हैं अपने फूलों के नन्हे नन्हे चिराग लेकर, कहाँ है वो दिलनवाज बाहें हैं अवध की खाके ऐसी। ये मैं जो आपके यहाँ बार बार आता हूँ इसका सिग्निफिकेंस क्या है?
0: इसलिए कि मैं फैज़ के मुकाबले में ज़्यादा मुनकसर मिजाज हूँ।
1: अच्छा,
0: मैं फैज़ के लिए कह सकता हूँ ना, मेरे दोस्त, ये कोई इल्ज़ाम नहीं है। फैज़ ने बार बार ये कहा कि मैं तो मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, हम इस्तेमाल करता हूँ। तो हम तो बादशाह इस्तेमाल करते थे, आम आदमी तो हम इस्तेमाल नहीं करता था, और पंजाब का आदमी तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। तो ये मैं जो है ये अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि किसी जगह पर ये मैं मेरी ज़ात के लिए होता हूँ, किसी जगह के ऊपर एक बहुत ही आम। तो ये मैं और हम माना है, दोनों हम माना है।
1: मैंने इसलिए पूछा,
0: और पूरब की ज़बान में तो हम का लफ्ज़ चलता है।
1: जी हाँ, इसलिए पूछा कि बुलंद आहंगी की जो एक लिसानी नफ्सियात, उससे शेरी किरदार का बड़ा रिश्ता होता है। मुमकिन है वो आहंग जो है आपका वो इसका मुतामिल हो कि आप मैं कहें?
0: नहीं, मैं मानता हूँ इस बात को, बिल्कुल मानता हूँ।
1: जाफरी साहब, इधर एक ख्वाब और जो मजमूआ आपका आया था, उसके बाद भी शायरी आपकी बहुत आगे बढ़ी मेरा ख्याल है, उसमें महसूस ऐसा किया गया कि आपने अपने लहजे को या अंदाज़ फ़िक्र को बहुत तब्दील किया है और आज की जो जनरेशन है उससे बहुत करीब आ पाए। जो नज़में आपके यहाँ बहुत तवील होती थी पहले वो मुख्तसर हुई,
0: तीन तीन मिसरों की भी नज़में
1: जी हाँ, लेकोनिक और सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन ज़्यादा आपके यहाँ आया। तो ये तब्दीली क्या ज़माने के साथ चलने के लिए थी या ये कि खुद अंदर से आपकी?
0: ये बहुत शहूरी नहीं होती
1: जी।
0: और आप एक चीज़ और देखेंगे कि मेरे यहाँ, मेरा अपना ख्याल है कि 5-6 मुख्तलिफ आहंग मिलेंगे मेरी शायरी में, और मेरा ख्याल है कि हमारे शुरा में, मेरे हमसर शुरा में जितनी ज़्यादा बहरें मैंने इस्तेमाल की हैं किसी दूसरे शायर ने नहीं की हैं। सब दो दो तीन तीन बहरों में महदूद रहे हैं, मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ। ये तब्दीली जो आई है इसके बाद, इसके अंदर आपको दो तीन तरह की नज़में मिलेंगी। ये इसके पीछे मेरा सोवियत यूनियन का तजुर्बा है, और इसका जो पहला दिए वो है दीबाचा, मुख्तसर तरीन
1: जी हाँ,
0: के ख्वाब और शिकस्त ख्वाब इस दौर का मुकद्दर है, लेकिन नए ख्वाब देखना इंसान का ऐसा हक है जिससे दुनिया की कोई ताकत उसको महरूम नहीं कर सकती
1: जी।
0: और उसके बाद मैंने इकबाल का कत्ल लिखा है कि हज़ारा साल बाफितरत नशिस्तम बहू पैवस्तम व असखुद गुसस्तम व लेकिन दास्तानम इन दो हरफ तराशीदम परस्तीदम शिकस्तम, कि हमारी दास्तान तो यह है कि हमने तराशा बुत, परस्तिश की और तोड़ के फेंक दिया। तो इसके अंदर एक ख्वाब और में यही अमल है, और ये तीन सिंबल्स के साथ चलता है, ख्वाब शिकस्त ख्वाब नया ख्वाब, हिजर विसाल हिजर, या विसाल हिजर फिर विसाल, तिशनगी आसूद।

0: ही फिर तिश लगी। ये पैटर्न बराबर चलते रहते हैं और तकरीबन हर नज़्म में ये किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। कत्ले आफ्ताब में गुरूब आफ्ताब के सिंबल से तुलुए आफ्ताब के सिंबल तक जाता है, या जो मेरी मेरी नज़रों में सबसे अच्छी नज़्म है, मेरा सफ़र, फिर एक दिन ऐसा आएगा आँखों के दिए बुझ जाएंगे, उसमें मौत और ज़िंदगी का जो सफ़र है उसमें भी यही पैटर्न चल रहा है ये सारा। तो मैंने ये नज़में कही हैं सन 1954 और सन 1964 के दरमियान। 54 में मैं सोवियत यूनियन गया
1: जी,
0: और वहाँ पाब्लो नरूदा, नाज़िम हिकमत, लुई अरागन, अपने क्या नाम है शलोखोफ, एहरनबर्ग, इन लोगों सबसे मुलाकात हुई। और ये जो अमल इस वक्त आपके सामने आ रहा है इसकी इब्तदाई यानी लहरें उस वक्त महसूस की जा रही थी। तो दो चीज़ें उस वक्त बड़ी वाजे तौर से सामने आई मेरे, और यानी हमने बातें बातें भी की, और वो ये थी कि सोशलिस्ट रियलिज्म का तस्वुर वहाँ पर बहुत से लोग कबूल करने को तैयार नहीं थे। चुनांचे उनमें लुई अरागन भी था जो कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा मेंबर भी,
1: फ्रांस के मेंबर
0: था, और उसमें सोवियत यूनियन में भी लोग मौजूद थे। दूसरी चीज़ क्या थी कि सोवियत सोसाइटी में जो मनफी किरदार हैं उनकी तस्वीर कशी नहीं की जाती थी, उसको एहरनबर्ग ने अपनी एक किताब में किया और उसकी वजह से वो मातूब करार दिया गया एहरनबर्ग। फिर हमें वहाँ बहुत सारे और मसाइल का इल्म हुआ, शायरों के साथ जो ज्यादतियाँ हुई या वो सब हुआ, तो उसकी वजह से और फिर खुरुश्चेव की 20th कांग्रेस की रिपोर्ट आई। इत्तेफाक से उस वक्त भी मैं मॉस्को में था, और इत्तेफाक से उस वक्त भी मॉस्को में था जब स्टालिन की लाश हवा से हटाई गई है। तो अच्छा, ये सब दिलचस्प है। शाम को देखा तो बसोलियम पर स्टालिन और लेनिन दोनों लिखा था, सुबह उधर गए रेड स्क्वायर पर तो सिर्फ लेनिन लिखा था, तो अंदर देखा तो गायब, बाकी तो कुछ मालूम नहीं हुआ। तो ये जो है इसके रिफ्लेक्शंस इसमें मौजूद हैं, और इनको इन तसव्वुरात को मैं बुलंद आहंग जबान में, जो मैं उसमें रिटोरिक्स में कहता था, जो मसलन एशिया जाग उठा की जबान है, कि जबान खोली तो वेद इंजील और कुरान बन के बोले, ये रिटोरिक जो है ना, खिताबत, जो खिताबत को तो मैं शेरी जुज समझता हूँ, जमालियात का, शेरी जमालियात का जुज है खिताबत, तो इसमें ये अशार मुमकिन नहीं थे। और ये नहीं कि मैं कोई शऊरी तौर से कह रहा था, तो जो मेरी पहली ही नज़्म है ख्वाब और शिकस्त ख्वाब
1: जी,
0: आप उसके इस्तियारे देखेंगे या शेरी पैकर, तो उनके अंदर सारी बुलंद आहंगी मौजूद है, लेकिन जो पैटर्न है पाबंद नज़्म का वो उसको ज़रा सा संभाल लेता है, क्योंकि वो शुरू यहीं से होती है कि ख्वाब अब हुस्न तसव्वुर के उफुक से हैं परे, दिल के एक जज्बे मासूम ने देखे थे जो ख्वाब, और ताबीरों के तपते हुए सहराओं में तिश्नगी आबला पा शोला बकफ मौज सराब। अब ये मुश्किल इमेजेस हैं, बहुत ही मुश्किल इमेजेस हैं, लेकिन पहुँचते पहुँचते बात वहाँ तक पहुँच जाती है कि अब तो दामन को पकड़ते हैं लहू के गिरदाब, देखती रहती है एक एक का मुँह खामोशी, देखती फिरती है एक एक का मुँह खामोशी, जाने क्या बात है, शर्मिंदा है अंदाज खिताब, दरबदर ठोकरें खाते हुए फिरते हैं सवाल, और मुजरिम की तरह उनसे गुरेजा है जवाब। सरकशी फिर मैं तुझे आज सदा देता हूँ, मैं तेरा शायर आवारा हूँ बेबाक खराब, एक फिर जज्बे बेताब की आलम पे कमन, एक ख्वाब और भी आए हिम्मत दुश्वार पसंद।
1: क्या कहने,
0: तो वो जो मेरी
1: जी
0: रिजाइयत है वो बाकी है, इन सब में बाकी है।
1: इसमें बातें यहाँ ख़त्म हम कर रहे हैं, मजबूरी है वक्त की, वरना यहाँ से शुरू होती थी बातचीत। तो और इत्तेफाक से कि ख्वाहिश ये थी कि तबरुकन कुछ शेर भी आपके इस इंटरव्यू में आ जाएँ, तो इत्तेफाक से नज़म के कुछ मिसरे आ गए हैं। बहरहाल आपकी आमद का और इस मुलाकात का बेहद शुक्रिया।
2: सामईन, अभी आप अली सरदार जाफरी से ये दिलचस्प गुफ्तगु समाप्त कर रहे थे। उनसे महवे गुफ्तगु थे महमूद हाशमी। इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था काजल सूरी ने और मुआविन थे इंतज़ार सैफी। तो सामईन, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
2: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
1: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने सदस्यों से सहयोग और सार्थक चर्चा की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर से शुरू हुआ तो उपसभापति श्री हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और सदन के वेल में घुस गए। श्री हरिवंश ने विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच उन्होंने सदन को शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। दोपहर 12 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा किया और इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है। श्री रिजिजू ने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा बाधित होने से विद्यार्थियों और देश को गलत संदेश जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री केशव चंद्र ने आज खान मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। श्री चंद्र ने खान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की और मंत्रालय की प्रमुख पहलों और चल रही गतिविधियों की समीक्षा भी की। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सरायदियो जैसे अधिक प्रभावित इलाकों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 4:10 हुए हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में। खोई हुई युवती का पूरा नाम कुमारी नेहा है। निवासी ग्राम सालवाहनपुर, थाना अहमदगढ़, जिला बुलंदशहर। इन्हें अंतिम बार 23 जून 2026 को ग्राम सालवाहनपुर में देखा गया। नेहा की आयु 20 वर्ष है। कद 5 फीट है। शरीर की बनावट सामान्य है एवं रंग गेहुआ है। यह अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं, फिर वापस नहीं लौटी। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना अहमदगढ़ जनपद बुलंदशहर से संपर्क कर सकते हैं। लापता पुरुष का पूरा नाम फहीमुद्दीन है। ये नजमुद्दीन के पुत्र हैं। निवासी ग्राम चुड़ावक, थाना गुलावटी, बुलंदशहर। इन्हें अंतिम बार दिनांक 16 जून 2026 को देखा गया। इनकी आयु 26 वर्ष है। कद 5 फीट 5 इंच है। शरीर की बनावट मध्यम है एवं चेहरे का रंग सांवला है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मोबाइल संख्या 9084242433 पर या फिर प्रभारी निरीक्षक थाना गुलावटी बुलंदशहर से संपर्क कर सकते हैं। लापता युवती का पूरा नाम तनु है। ये जोनी की पुत्री है। निवासी अछड़ोड़ा, थाना परतापुर, मेरठ। इनकी आयु 15 वर्ष है। कद 4 फीट 5 इंच है। काले लंबे बाल हैं। चेहरा गोल है। शरीर की बनावट सामान्य है एवं रंग गोरा है। इन्होंने अंतिम बार सूट सलवार एवं पैरों में चप्पल पहना था। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन मेरठ से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा पुरुष का पूरा नाम आदेश सिंह है। निवासी दिलावर पैलेस, मेरठ। इनकी आयु 30 वर्ष है। कद 5 फीट 6 इंच है। चेहरा गोल है। काले बाल हैं। रंग गोरा है एवं शरीर की बनावट सामान्य है। इन्होंने अंतिम बार टी शर्ट और पैंट पहना था। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना टीपी नगर जनपद मेरठ से संपर्क कर सकते हैं। लापता युवती का पूरा नाम सरस्वती है। इनकी आयु 19 वर्ष है। कद 5 फीट 3 इंच है। काले बाल हैं। इखरा शरीर है एवं रंग गेहुआ है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मुंडाली जनपद मेरठ से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा पुरुष का पूरा नाम अनिल कुमार है। ये श्री मोहनलाल के पुत्र हैं। इन्हें अंतिम बार 20 जून 2026 को शाम 5 बजे ईस्ट रोहताश नगर साईं मंदिर शाहदरा दिल्ली के पास देखा गया। इनकी आयु 59 वर्ष है। कद 5 फीट 6 इंच है। शरीर की बनावट मध्यम है एवं चेहरे का रंग गोरा है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SHO शाहदरा दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं।

गुमशुदा युवती का पूरा नाम राधना है, ये मुस्तकीम की पुत्री हैं। आयु 20 वर्ष है, कद 5 फीट 1 इंच है। काले लंबे बाल हैं, रंग गोरा है एवं शरीर की बनावट इखरा है। इन्होंने अंतिम बार पीले रंग का सलवार, पीले रंग का पैजामा एवं पैरों में हवाई चप्पल पहना था। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना दिल्ली गेट मेरठ से संपर्क कर सकते हैं। और अंत में खोई हुई युवती का नाम मोनिका है, ये राम प्रवेश की पुत्री हैं। इनकी आयु 20 वर्ष है, कद 5 फीट है, चेहरा औसत है, काले बाल हैं, रंग गोरा है एवं शरीर की बनावट औसत है। इनके दाहिनी आँख के नीचे काले तिल का निशान है। इन्होंने अंतिम बार सलवार सूट पहना था। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना जनपद मेरठ से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली के युवा कार्यक्रम युववाणी में मैं हूं सोनाली
1: और मैं हूं उत्तम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
0: उत्तम, मंडे की सबसे अच्छी बात क्या लगती है तुम्हें?
1: यही कि वीकेंड के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं।
0: लगता है तुम्हारा पूरा कैलेंडर ही वीकेंड के हिसाब से चलता है। तो बताओ, वीकेंड कैसा रहा?
1: मेरा वीकेंड बड़ा बढ़िया रहा। इस बार मैंने सारे सपने पूरे कर लिए।
0: और वो कैसे?
1: मैंने इस वीकेंड मूवीज देखी। ग्राम चिकित्सालय, झारखंड के एक छोटे से गांव पर एक लाइट हार्टेड सा शो। कुछ चीजें तो ऐसी थी जिससे मुझे मेरा गांव याद आ गया।
0: अच्छा, हमें भी बताओ कैसे।
1: एक तो हमारे गांव में पार्टी वार्टी नहीं होती, वहां भोज होता है।
0: उत्तम, पूरे भारत में भोज होता है?
1: यूपी, बिहार, झारखंड में किसी भोज के लिए एक नहीं दो दो निमंत्रण दिए जाते हैं। पहला होता है व्यवहारिक निमंत्रण, यानी घर जाकर निमंत्रण पत्र दे आना। दूसरा होता है विजयी कराना। ये एक मौखिक न्योता होता है जिसमें खाना तैयार हो जाने पर हर घर जाकर कहा जाता है कि भोजन तैयार है, आइए।
0: वाह, अति उत्तम। मतलब सिर्फ निमंत्रण नहीं, अपनापन भी। और क्या देखा आपने?
1: मैंने देखा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। उसमें एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट का जिक्र हुआ, कैनन इवेंट।
0: वो क्या है उत्तम?
1: ऐसा इवेंट जिसके होने से पीटर का कैरेक्टर और डेवलप होता है। मतलब उस मकड़ी का पीटर को काटना कैनन इवेंट है। हर यूनिवर्स में स्पाइडरमैन का किसी अपने को खो देना कैनन इवेंट है। अंकल बेन का पीटर को वो आइकॉनिक लाइन कहना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी एक कैनन इवेंट है।
0: जरा सोचा जाए, अगर ये इवेंट हुए ही ना होते तो पीटर आज भी शायद उन पावर से बस मेरी जेन का दिल जीतने की कोशिश कर रहा होता।
1: अब जरा अपनी तरफ देखिए, ये जो आप इस आत्मग्लानि में जी रहे हैं कि वो मुझे छोड़ के चली गई, मैं फेल हो गया, मेरे साथ ये सब क्यों होता है, ये सब कुछ और नहीं, आपके जीवन के कैनन इवेंट्स ही तो हुए ना। ये होंगे नहीं तो आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा कैसे? आप खुद पे काम करके बेहतर बनोगे कैसे? मैं समझता हूँ इस बात से आपका दर्द तुरंत कम नहीं हुआ होगा, पर अगर इसे समझ लोगे तो मेरी मानो जीना जरूर आसान हो जाएगा। इसलिए आज के इस व्यस्त दुनिया में अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, जिंदगी छोटी सी तो है।
0: वेल सेड। और वैसे भी जरूरी थोड़ी है कि सुपर हीरो सिर्फ दूसरों की जान बचाएं, दूसरों को खुशी दें, खुद को खुश रखने वाला भी सुपर हीरो ही तो होता है।
1: बिल्कुल। तो मैं और सोनाली आज युववाणी का विजय कराने आए हैं। अगले 45 मिनट हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम लाए हैं कुछ दिलचस्प बातें, आपके पसंदीदा गाने। आज हम बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मोटिवेटिंग जर्नी की, सुनेंगे इंसुलिन की खोज कैसे हुई, तो रेडियो

0: उत्तम, बचपन में एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता था, बड़े होकर क्या बनोगे? आप क्या सोचते थे बचपन में बनने के लिए?
1: मैं बचपन से ही रेडियो जॉकी बनना चाहता था। मैं 10वीं में था जब मेरी टीचर ने कहा था कि उत्तम, यू हैव अ फेस फॉर रेडियो, और जब तक बन नहीं जाते तब तक मुंह ढक के स्कूल आया करो।
0: वैसे अगर आज कोई यही सवाल पूछे तो तुम्हारा जवाब क्या होगा?
1: मुझे लगता है अच्छा इंसान, वेट, खुश अच्छा इंसान बन के आना।
0: पर शायद इतना मुश्किल नहीं है अच्छा इंसान बनना उत्तम, अगर इरादे साफ हों, मेहनत सच्ची हो और सपने सिर्फ अपने लिए नहीं।

0: के देश के लिए हो तो एक साधारण इंसान भी करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन सकता है। आज की बात में हम बात करेंगे ऐसी ही एक मिसाल हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, और आज 27 जुलाई उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहे हैं,
1: जिन्हें दुनिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। लेकिन ये पहचान उन्हें एक दिन में नहीं मिली। उन्होंने अपने वैज्ञानिक सफर की शुरुआत 1960 के दशक में DRDO से की। इसके बाद वे इसरो से जुड़े, जहां भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे।
0: दोस्तों, और फिर आया वो दौर जिसने भारत की वैज्ञानिक पहचान को एक नई उड़ान दी। अग्नि और पृथ्वी जैसी स्वदेशी मिसाइलों के विकास में उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण रहा कि पूरा देश उन्हें प्यार से मिसाइल मैन कहने लगा। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षणों में उनकी वैज्ञानिक और रणनीतिक भूमिका भारत के इतिहास का एक अहम अध्याय बनी।
1: आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसमें डॉक्टर कलाम के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनका सपना सिर्फ मिसाइल बनाना नहीं था, बल्कि भारत को एक डेवलप्ड नेशन के रूप में देखना भी था।
0: और शायद यही वजह है कि आज भी करोड़ों युवाओं के लिए डॉक्टर कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि सपनों को सच करने की प्रेरणा है। वैसे उत्तम, मिसाइलों का सफर भी आसमान की ओर होता है और सपनों का भी।
1: बिल्कुल सोनाली, तो अब सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जो सपनों को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने की बात करता है। फिल्म आई एम कलाम से चांद तारे।

0: बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट मन से माइक्रोफोन की तरफ। हम सुनेंगे डॉक्टर राजेश शर्मा जी को, जिनसे बातचीत की है हमारी साथी सुवाक्षी ने, और जानेंगे कि एक्सरसाइज करते हुए किन तकनीक और जिम एटिकेट्स का ध्यान रखना चाहिए।
1: साथियों, हम देखते हैं आजकल हम में से बहुत से लोग फिट रहने के लिए जिम जाते हैं। जिम जाना एक अच्छी हैबिट हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही आजकल जिम रिलेटेड इंजरीज भी बढ़ती जा रही हैं। इसी विषय पर विस्तार से समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राजेश शर्मा जी को, जो कि एक प्रतिष्ठित फिजियोथेरेपिस्ट है। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद साक्षी जी।
1: तो सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या जिम जाना वाकई जरूरी है या फिर हेल्दी खाना खा के हम फिट रह सकते हैं?
2: दोनों चीजें जरूरी है। आपको जिम जाने के साथ साथ आपको हेल्दी खाना भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऐसे हैं जो जिम नहीं जा सकते, तो वो अपना घर पे ही लाइट वर्कआउट करके भी अपना फिटनेस लेवल मेंटेन कर सकते हैं।
1: जिम इंजरीज के मेन कॉज क्या होते हैं?
2: जिम इंजरीज के सबसे मेन जो कॉज हैं, उनमें पहला कारण है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग मतलब आप बहुत ज़्यादा वजन बहुत जल्दी आप उठा रहे हो, जिसको हम ईगो लिफ्टिंग भी बोलते हैं। दूसरा कारण है आपका पोस्चर और आपका प्रोग्रेशन आपका सही नहीं है, आप सही तकनीक के साथ आप अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे। और तीसरा कारण है ओवर ट्रेनिंग, आप किसी मसल को बहुत ज़्यादा ट्रेन कर रहे हो विदाउट उसको रेस्ट दिए बिना।
1: और हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये कोई नॉर्मल पेन नहीं है, इंजरी है? आमतौर पर हम इसको इग्नोर कर देते कि हाँ ठीक है, चोट लगा है, ठीक हो जाएगा।
2: हाँ, यूजुअली लोग यही सोचते हैं कि ये आम पेन है, अपने आप चला जाएगा, लेकिन बॉडी आपको सिग्नल्स देती है कि आपको कहाँ रुकना है। जैसे आपको अगर लगातार पेन हो रहा है, या आपको शार्प शूटिंग पेन हो, या आपको ऐसा लगे कि टाइटनेस बहुत ज़्यादा हो रही है मसल में, या जोड़ में दर्द बहुत ज़्यादा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ऐसे साइन है जहाँ पे बॉडी आपको बताती है कि ये एक इंजरी है, ये नॉर्मल पेन नहीं है।
1: ऑल्सो क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया है जिससे हम पता लगा सके कि वेदर ही और शी वो जिम जाने के लिए फिट है या नहीं?
2: क्राइटेरिया है जिसको हम पार क्यू बोलते हैं, यानी फिजिकल असेसमेंट रेडीनेस क्वेश्चन है। इसमें हम जो पर्सन है उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उससे हमें ये पता लग जाता है कि वो जिम के लिए कितना फिट है या नहीं है। इसमें हम ये देखते हैं कि उसको कोई प्रीवियस इंजरी है, कोई फ्रैक्चर हुआ है या नहीं है, या कोई और मेडिकल हिस्ट्री उसको है या नहीं है, जैसे कोई हार्ट प्रॉब्लम हो या बीपी है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका वर्कआउट प्लान करते हैं, या जो भी उनका ट्रेनर होगा वो उसके अकॉर्डिंग उनका वर्कआउट प्लान करता है।
1: डॉक्टर राजेश, आप मुझे एक और बात बताइए कि इसमें डाइट का क्या रोल होता है? जैसे बहुत लोग जिम जाते हैं तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो डाइट को एकदम फॉलो करते हैं कि हाँ हमें आज ये लेना है, आज वो लेना है। कुछ लोग होते हैं उनका माइंडसेट होता है कि कुछ भी खा लो, जिम जा रहे हैं, फिट रहेंगे।
2: देखिए, डाइट का रोल बहुत ज़्यादा है इसमें। हम 70-30% का रूल बोलते हैं, 70% आपका सारा डाइट रोल, 30% आपने एक्चुअल जो आपने वर्कआउट किया वो है। जिम में वर्कआउट कर रहे हैं आप, जंक फूड खा रहे हैं आप, ऑयली फूड खा रहे हैं आप, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, तो आपका जो वर्कआउट आपने किया है वो सारा बेकार है। तो डाइट का रोल 70% है आउट ऑफ 100%। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है।
1: नहीं, मैं इसलिए ऐसा आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि जंक फूड इंजॉय कर सके या फिर इस तरह की चीज़ें खा सके, इसीलिए तो हम जिम जाते हैं ताकि वो बैलेंस रहे। क्या ऐसा सच में होता है कि आप कुछ भी खाओ और जिम जाओ तो चीज़ें बैलेंस रहती हैं?
2: नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो जिम जाते हैं या नहीं जाते हैं, दोनों के ही लिए जंक फूड सही नहीं है।
1: ऑल्सो प्रोटीन सप्लीमेंट और प्री वर्कआउट ड्रिंक्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर, क्या ये लेना सच में हेल्दी है या फिर हेल्थ के लिए इससे हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं इससे?
2: देखिए, आप प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट और जो प्रोटीन सप्लीमेंट आप जो बोल रहे हैं, ये हेल्दी हैं, लेकिन ये कितने ऑथेंटिक हैं ये आपको पता होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे नकली प्रोडक्ट भी आ रहे हैं जो कि आपको बेच दिए जाते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कि उसमें क्या मिला हुआ है, एक्चुअली में प्रोटीन है या कुछ और मिला हुआ है उसमें। प्लस डोजेस, कि आपको कितनी डोज लेनी चाहिए, आपके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग है। आप 30 ईयर्स के हो अलग डोज होगी, आप 40 ईयर्स के हो अलग डोज होती है। तो डोज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट या बाकी के जितने भी सप्लीमेंट हैं वो कैसे लेने चाहिए और किस मात्रा में लेने चाहिए।
1: आपने बोला कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कितना ऑथेंटिक है, अब ये पता कैसे करेंगे हम?
2: कितना ऑथेंटिक है ये आपके डॉक्टर्स आपको बता सकते हैं, प्लस इनकी गाइडलाइंस होती हैं। आप उनके वेबसाइट पर जाएंगे जो इनके ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं, उनमें कुछ कुछ पॉइंट ऐसे लिखे होते हैं जिनसे आप

0: ये पता लगा सकते हो कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। मार्केट में उन चीज़ों पे वो कुछ मार्किंग ऐसी होती हैं जो मिस होती हैं, बस वो पर्सन को पता होनी चाहिए।
1: तो डॉक्टर के एडवाइस से हम ले सकते हैं सप्लीमेंट्स
0: हाँ,
1: या प्री
0: डॉक्टर
1: वर्क
0: के एडवाइस
1: एडवाइसों
0: से आप
1: में।
0: ले सकते हो, वो आपको डोज भी बता सकते हैं कि किसी को कोई अगर मान लो प्रोटीन से अगर कोई दिक्कत है तो उसको प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं दिया जाएगा फिर।
1: और ये जिम इंजरीज जो हैं, ये पर्टिकुलर किसी एज ग्रुप के लिए है कि कोई यूथ है या फिर कोई सीनियर सिटीजन है उन पे ज़्यादा इसका असर हो सकता है?
0: किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन हाँ 40-45+ में क्या होता है कि हमारी मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, हमारा बोन का कैल्शियम कम हो जाता है, तो उसको हमें ट्रेन उस लेवल पे करना चाहिए अपने एज के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि हम 30 साल के जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेन करें उसको, तो ये हमें देखना पड़ेगा। ये चीज़ आपके जो ट्रेनर हैं वो आपका आपके एज के अकॉर्डिंग आपका वर्कआउट प्लान करते हैं।
1: आपका कोई एडवाइस यूथ के लिए या फिर जो भी लोग जिम जा रहे हैं?
0: जिम जा रहे हैं उनके लिए मेरा यही एडवाइस है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जिसकी वजह से जिम में इंजरीज ना हो। उनमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले वार्म अप है। वार्म अप में क्या होता है, जिस पार्ट को आज आप वर्कआउट करने जा रहे हो उसको आप रेडी करो। कई लोग इस वार्म अप को ही अवॉइड कर देते हैं, तो बॉडी उस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं होती कि आपने एकदम से आपने ओवर वेट उठा लिया, आपको जिम इंजरीज हो जाएगी। प्लस आप करेक्ट फॉर्म में करें, आपका पोस्चर सही होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कॉमन इंजरीज जो हमें देखने को मिलती है वो मिलती है शोल्डर और बैक की। हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए, लेकिन लोग ज़्यादातर उसको बेंड करके एक्सरसाइज करते हैं। प्लस आपकी क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लूज़ कपड़े पहनिए। अगर आप टाइट क्लोथिंग करेंगे तो आप उस रेंज में नहीं एक्सरसाइज कर पाएंगे जिस रेंज में होनी चाहिए। शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आपके इल फिटिंग शूज़ हैं तो आपको इंजरीज हो सकती है। प्रॉपर रेस्ट और स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वर्कआउट के बाद में आपको कम से कम 7 to 8 आवर्स की आपको नींद लेनी ही चाहिए। प्लस आप उस बॉडी को रेस्ट दीजिए जिस पार्ट की आपने एक्सरसाइज करी।
1: कुछ लोग जो होते हैं वो जिम जाकर या फिर जो जिम के ट्रेनर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप ये डाइट लो, तो बहुत कम पीरियड में, मतलब 1 से 2 महीने में या तो वो बहुत गेन कर लेते हैं या तो बहुत वेट लूज़ कर देते हैं। कोई इंसान 80 kg का है और वो 1 से 2 महीने में 50 kg का हो जाता है, तो क्या इससे उसके हेल्थ पे फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है उसको?
0: डेफिनेटली हो सकता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना पड़ेगा कि मुझे कितना वेट रिड्यूस करना चाहिए और कितना मुझे वेट गेन करना चाहिए। ट्रेनर्स आपको बताएंगे कि आप ये चीज़ करिए आपका इतना वेट कम हो जाएगा, ये चीज़ करने से आपका इतना वेट गेन हो जाएगा, लेकिन आपको एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट के साथ आपको कंसल्ट करना पड़ेगा कि आपको वेट गेन और लूज़ कितना करना चाहिए।
1: आजकल जो बॉडी क्लॉक है वो पहले जैसा हुआ करता था अब वैसा नहीं है। कुछ लोग डे शिफ्ट करते हैं, कुछ लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, तो उनको अगर जिम जाना हो तो उनके लिए आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरह से उन्हें फॉलो करना चाहिए?
0: देखिए, वो अपना जिम का वर्कआउट अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जिनकी नाइट शिफ्ट है वो आप अपना ऑफिस जाने से पहले जो इवनिंग आवर होते हैं 5 to 6 के अराउंड आप अपना वर्कआउट करके आप अपना जा सकते हैं ऑफिस में। और जिनकी डे शिफ्ट है वो अपना मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और इवनिंग में आके भी कर सकते हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैं डाइट बोलूंगा, क्योंकि कई लोग जो ऐसे हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं वो नाइट में खाना बहुत खाते हैं, तो उनका फिर सारा वर्कआउट जीरो हो जाता है।
1: डॉक्टर राजीव शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे युवा साथियों को इतना अच्छा एडवाइस दिया आपने हेल्थ से रिलेटेड, जिम से रिलेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद साक्षी जी।
2: आप सुन रहे थे डॉक्टर राजेश शर्मा जी को, जिनसे हमने सीखा फिट रहने के तरीके, जिम एटिकेट्स और अपना खान पान सही कैसे रखा जाए। चलिए सुनते हैं अगला गाना जो आपको ऊर्जा से भर देगा, फिल्म 10 से 10 बहाने करके ले गए दिल।

0: उत्तम कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां किसी युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि एक छोटी सी लेबोरेटरी में लिखी जाती हैं।
1: बिल्कुल सोनाली, और आज हेल्थ सेगमेंट में हम बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी की जो जुड़ी है 27 जुलाई से। करीब 100 साल पहले कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी में एक साधारण सी लैब में दो लोग एक ऐसी खोज में लगे थे जिसका इंतजार शायद दुनिया को भी था।
0: एक थे सर्जन फ्रेडरिक बेंटिंग और दूसरे थे मेडिकल स्टूडेंट चार्ल्स बेस्ट। उनका उद्देश्य कोई नई मशीन बनाना नहीं था बल्कि ऐसी उम्मीद ढूंढना था जो लाखों परिवारों का काम आ सके।
1: कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद 27 जुलाई 1921 को उन्होंने पहली बार इंसुलिन को सफलतापूर्वक अलग किया।
0: दोस्तों, आज डायबिटीज के साथ सामान्य जीवन जी रहे करोड़ों लोगों के लिए इंसुलिन सिर्फ एक दवा नहीं बल्कि विज्ञान की उस सोच का परिणाम है जो इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करती रहती है।
1: और सोनाली, इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात जानती हैं क्या है?
0: बताइए।
1: फ्रेडरिक बेंटिंग ने इसका पेटेंट सिर्फ $1 में दिया ताकि ये खोज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, क्योंकि कुछ खोजें सिर्फ विज्ञान को आगे नहीं बढ़ाती, इंसानियत ह्यूमैनिटी को भी आगे बढ़ाती हैं।
0: ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने उत्तम, और जब इरादे इंसानियत के हों तो उनकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है।
1: इसी उम्मीद और नई शुरुआत की भावना के साथ सुनते हैं आज का अगला गीत, तू धूप है बम बम बोले।

0: तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम आपको आज के इतिहास से जुड़ी रोचक बातें बताते हैं। आज सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का स्थापना दिवस है। 27 जुलाई 1939 को इस बल की स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के नाम से हुई थी। आज़ादी के बाद 1949 में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नाम बदलकर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रखा। आज हम सीआरपीएफ के सभी बहादुर जवानों को सलाम करते हैं।
1: 27 जुलाई 1994, आज ही के दिन भारत के स्टार शूटर जसपाल राणा ने इटली के मिलान में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में जूनियर 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया।
0: आज वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे मनाया जा रहा है। इसके उद्देश्य हेड और नेक कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय पर जांच और इलाज का महत्व को बताना है, साथ ही सावधानी भी लें।
1: 27 जुलाई 1940, इसी दिन एनिमेटेड फिल्म अ वाइल्ड हेयर के साथ बग्स बनी ने ऑफिशियल रूप से दुनिया के सामने अपनी पहली दस्तक दी। आज 8 दशक से भी ज्यादा समय बाद बग्स बनी दुनिया के सबसे लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर में गिने जाते हैं।
0: तो सुना ली, आपसे मेरी एक गुजारिश है कि इस पे गाना हो जाए।
1: ठीक है उत्तम, आपकी गुजारिश पर फिल्म गुजारिश से

0: चलिए, अब वक्त हो चला है आज के क्विक अपडेट्स का। भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं की 48 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को पहला गोल्ड दिलाया। उन्होंने कुल 190 किलो वेटलिफ्ट कर नया खेल रिकॉर्ड भी बनाया।
1: वहीं सिर्फ 18 साल की भारतीय स्क्वैश प्लेयर अनहद सिंह ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में इजिप्ट की रुकैया को 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया।
0: डीआरडीओ ने ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कुशा का पहला सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये मिसाइल फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, ड्रोन्स और दूसरे हवाई खतरों को लॉन्ग रेंज और अलग अलग एल्टीट्यूड पर मार गिराने की क्षमता रखता है।
1: उत्तर प्रदेश का सारनाथ अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। इसके साथ ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत के कुल 45 हेरिटेज साइट्स हो गए हैं।
0: आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर के लिए हैवी रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज से बारिश की गतिविधि तेज होंगी। ऐसे मौसम को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। छाता लेकर निकलिएगा।
1: उत्तम, एक और म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: छम छम फ्रॉम मूवी बागी।

0: अभी आप सुन रहे थे आपका अपना प्रोग्राम युववाणी। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है yuvvani@gmail.com yuvvani@gmail.com।
1: कल फिर इसी समय मिलेंगे एक नए प्रोग्राम नए जोश के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मैं सोनाली
0: और मैं उत्तम।
1: अपना फीडबैक yuvvani@gmail.com पर भेजना ना भूलें। तब तक आपके लिए एक और खूबसूरत सा गीत, रांझा रांझा फ्रॉम द मूवी रावण। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
2: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
1: श्री बिरला ने सदस्यों से सहयोग और सार्थक चर्चा की अपील की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने विरोध कर रहे सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच उन्होंने सदन को शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
3: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त दान राशि के गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाले बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने SIT को जांच के संबंध में एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इंकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितम्बर को निर्धारित की है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए

0: किसी के जो व्रत रखने का मकसद ये हो ना कि मुझे अच्छा सा बलमा मिल जाए, अच्छा सा साथी और सैया मिल जाए, तो आज का दिन उसी प्रकरण में होता है, सोमवार को जो फास्ट रखते हैं। हाँ, कुछ
1: जी
0: ऐसा होता है?
1: बिल्कुल। और देखिए हम कहते हैं ना कि हम जो अपने लोकगीतों को इसमें लोक रंजनी में हम लोकगीत रागिनी उपदेश सब कुछ सुनवाते हैं और मिले जुले होते हैं ये सब कुछ। तो आज ऐसे ही मिले जुले कुछ लोकगीत हम अपने भाइयों के लिए लेकर आए हैं। और सबसे पहले जैसे कि आपने बताया कि एक बहुत प्यारा सा लोकगीत है तो उसको सुनवाते हैं मंजू शर्मा से।
0: जी।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे मंजू शर्मा को, बहुत ही प्यारा लोकगीत। और कहते हैं कि अगर किसी का गांव वंदा बहन नदी के किनारे हो जाए और उसमें भी कालिंदी यानी यमुना के किनारे हो जाए तो फिर बात ही क्या है, है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: तो सुनवाते हैं अब यमुना किनारे मेरा गांव, जयप्रकाश शर्मा की आवाज़ में।

अभी हमारे भाई सुन रहे थे जयप्रकाश शर्मा की आवाज़ में ये बहुत प्यारा सा लोकगीत। और आगे बढ़ते हैं, लोकगीत तो हमारे पास और भी हैं, और देखिए अब सुनते हैं राखी नागर की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत।

और साथियों यूं ही गेम खेलते रहिए, लोकगीत सुनते रहिए लोकरंजनी कार्यक्रम में। और अब आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं आपको एक और ख़ास लोकगीत जिसमें कालूराम यादव और साथी सुना रहे हैं आपको ये प्यारी सी रचना।

0: तो साथी हो वंदना बहन, आप कुछ कहना चाहती हैं?
1: जी हाँ, अभी हमारे भाई सुन रहे थे कालू राम यादव और सतीश यादव की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत, और इसमें हीर राँझा के प्रेम की बात लिखी हुई थी, सुनी हुई थी
0: जी। बिल्कुल, और प्रेम के जितने भी आयाम हैं, जितने भी प्रमाण हैं, उनमें से हीर राँझा की जो कहानी है वो अपने आप में बहुत पुरानी भी है, जानी पहचानी भी है। ना जाने कितनी ही बार इसको दोहराया जाता है जब भी ऐसा कोई वाक्या आता है।
1: जी, और इसी के साथ आज का हमारा लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिव नंदन लाल।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ दीपिका जसवाल और आज मेरे साथ हैं
3: विदुषी वत्स। नमस्कार।
2: तो विदुषी, सबसे पहले आज कार्यक्रम में जो खास है उससे हम बात करेंगे। जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स, जिस पर सभी की नज़र बनी हुई है और भारत का प्रदर्शन अब तक का काफ़ी खास रहा है। तो चौथे दिन की रिपोर्ट तो आज हम कार्यक्रम के दौरान सुनवाएंगे ही, साथ ही साथ पांचवें दिन का जो शेड्यूल है और कितने मुकाबले खेले जा चुके हैं उन सब के बारे में भी चर्चा होगी। इसके अलावा क्रिकेट की बात होगी,

0: भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली गई T20 सीरीज में भारत ने जिम्बाब्वे को क्लीन स्वीप किया, यानी कि 3-0 से सीरीज अपने नाम की। साथ ही साथ ISSF राइफल पिस्टल शॉटगन वर्ल्ड कप हांगझाउ चाइना में खेला जा रहा है, उसमें भी भारत के जो हमारे खिलाड़ी पहुंचे हैं उन्होंने भी सटीक निशाना लगाया है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है अब तक। UTT सीजन 7 के फाइनल्स की बात करेंगे, साथ ही साथ कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस 2026 जो दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित हुआ है और आज से शुरू हुआ है, उसके बारे में भी आपको कार्यक्रम के दौरान बताया जाएगा। U17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप और डूरन कप की रिपोर्ट भी कार्यक्रम में ज़रूर शामिल की जाएगी। और अब शुरुआत करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स से।
1: द कॉमनवेल्थ गेम्स।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, जहां भारत का प्रदर्शन शानदार लगातार जारी है। चौथे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने भारोत्तोलन, मुक्केबाजी, तैराकी और अन्य स्पर्धाओं में दमदार प्रदर्शन करते हुए 4 पदक अपने नाम कर लिए हैं। इनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल रहे हैं। इसके साथ ही भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। आइए अब आपको बता देते हैं कि कल का पूरा चौथा दिन कैसा रहा। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू की। महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई ने इतिहास रचते हुए लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। इससे पहले वह 2018 और 2022 में भी गोल्ड जीत चुकी थी। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 105 किलो का सफल प्रयास कर स्वर्ण पदक पक्का किया और कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्डन हैट्रिक पूरी करी है। आगे बढ़ते हैं। भारत का दूसरा पदक आया पुरुषों के 60 किलो के वर्ग में, जहां चानम्बम ऋषिकांत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। स्नैच में उन्होंने 116, 119 और 121 किलो वजन उठाया। उन्होंने 121 किलो का स्नैच कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी भी करी। क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 143 किलो सफलतापूर्वक उठाया। कुल 264 किलो वजन के साथ उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। इसके बाद पुरुषों के 65 किलो वर्ग में राजा मुथु पांडी ने भी रजत पदक जीतकर भारत को एक और सफलता दिलाई। स्नैच में 126, क्लीन एंड जर्क में 160 और कुल 286 किलो का वजन उठाकर उन्होंने स्कोर बनाया। गंभीर चोटों के बाद उनका शानदार वापसी का प्रदर्शन रहा। अब मुक्केबाजी की तरफ चलते हैं, जहां मुक्केबाजी में भारत के मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिया है। पुरुषों के 55 किलो वर्ग के राउंड ऑफ 16 में जदुमणि सिंह ने पाकिस्तान के सुमामा रहमान को 5-0 के एक तरफा फैसले से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं महिलाओं के 54 किलो वर्ग में प्रीति पवार ने मलावी की डेबोरा को पूरी तरह हावी करते हुए रेफरी स्टॉप्स कॉन्टेस्ट यानी RSC के जरिए हराकर अगले दौर में प्रवेश किया है। हालांकि पुरुषों के 65 किलो वर्ग में आदित्य प्रताप यादव बेहद करीबी मुकाबले में युगांडा के मुक्केबाज से 3-2 के स्प्लिट डिसीजन से हार गए और उनका अभियान समाप्त हो गया। अब इसी के साथ चलते हैं तैराकी की तरफ। पुरुषों की 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले में भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बनाई है। अनीश सुनील कुमार गौड़ा, धाक्षण शशि कुमार, आर्यन नेहरा और श्रीहरि नटराज की टीम ने फाइनल में 7:29.84 सेकंड का समय निकालते हुए छठा स्थान हासिल किया। लॉन बॉल्स की तरफ चलें तो महिला पेयर्स स्पर्धा में रूपा रानी तिकरी और पिंकी सिंह को पहले नामीबिया और फिर इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, जिसके साथ उनकी पदक की उम्मीदें समाप्त हो गई हैं। पुरुष एकल में पुतुल सोनोवाल भी अपने मुकाबले में हार कर आगे नहीं बढ़ सके। अगर बात करें व्हीलचेयर बास्केटबॉल की, महिलाओं की 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल स्पर्धा में भारत को स्कॉटलैंड के खिलाफ 21-4 से हार का सामना करना पड़ा। जिमनास्टिक्स की तरफ बढ़े तो पुरुष ऑल राउंड फाइनल में तपन मोहंती ने शानदार प्रयास किया और कुल मिलाकर 15वां स्थान हासिल किया। अब चौथे दिन के बाद भारत की स्थिति कुछ इस तरीके से उभर कर आई कि दिन के अंत में भारत के खाते में 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक, यानी कि कुल 4 पदक दर्ज हुए। भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर पहुंच गया है। अब बात कर लेते हैं आज के 5वें दिन के विभिन्न स्पर्धाओं में भारत के शानदार प्रदर्शन की। एथलेटिक्स तैराकी, पैरा तैराकी और मुक्केबाजी

0: में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी चुनौती पेश की, जबकि कई खिलाड़ियों ने अगले दौर में जगह भी बनाई। सबसे पहले बात करते हैं पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ की। भारत के गुरिंदर वीर सिंह ने अपनी हीट में 10.39 सेकंड का समय निकालते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। इस बार प्रतियोगिता का प्रारूप थोड़ा अलग है। किसी भी हीट में पहले स्थान पर आने से सीधा सेमीफाइनल का टिकट नहीं मिलेगा। सभी 11 हीट पूरी होने के बाद सबसे तेज 17 धावक सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। पहली 5 हीट के बाद गुरिंदर वीर का समय टॉप 10 में बना हुआ था और आखिर 11 हीट के बाद उनका स्थान बना 28। इसके बाद पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में भारत के तेजस शिरसे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13.76 सेकंड के समय के साथ फाइनल में जगह बना ली। अब उनका फाइनल मुकाबला आज रात 2:15 पर खेला जाएगा, जहां भारत को उनसे पदक की उम्मीद जरूर रहेगी। लॉन्ग जंप में भी भारत के लिए बहुत अच्छी खबर रही। राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक विजेता मुरली श्रीशंकर ने अपने पहले ही प्रयास में 8.01 मीटर की छलांग लगाकर पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसी स्पर्धा में भारत के लोकेश सत्यनाथन ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब लॉन्ग जंप के फाइनल में भारत के 2 खिलाड़ी पदक की दौड़ में नजर आएंगे। इसी के साथ अब बढ़ते हैं तैराकी की तरफ, जहां तैराकी में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में साजन प्रकाश ने अपनी हीट में अच्छा प्रदर्शन करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब उनका फाइनल मुकाबला आज रात 1:44 पर होगा। इसके अलावा 800 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में आर्यन नेहरा भी भारत के लिए चुनौती पेश करेंगे। ये स्पर्धा सीधे फास्टेस्ट हीट फाइनल के रूप में आयोजित होगी और इसका मुकाबला आज रात 1:07 पर खेला जाएगा। चलते हैं अब पैरा तैराकी की तरफ, जहां बहुत अच्छी खबर ये है कि पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक्स SB9 स्पर्धा में स्वातिक पटेल ने अपनी हीट पार करते हुए फाइनल में जगह बना ली है। अब उनका पदक मुकाबला आज रात 12:02 पर होगा, जहां उनसे भारत को पदक की उम्मीदें रहेंगी। मुक्केबाजी की तरफ चले तो पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के सचिन ने आज अपनी चुनौती पेश करी और सचिन उसमें कामयाब रहे। उन्होंने 4-1 से अपना बाउट जीत लिया है। और इसी समय अगर बात करें चलते हुए मैच की, तो महिलाओं में 53 किलोग्राम भार वर्ग की वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव पर भी हम सबकी नजर है, जहां उनका मैच अभी चल रहा है। इसके अलावा आज देर शाम और रात में भी भारत के कई खिलाड़ी पदक मुकाबलों में उतरेंगे, जिनमें बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स, लॉन बॉल्स और वेट लिफ्टिंग की स्पर्धाएं भी शामिल हैं। भारत की कोशिश होगी कि 5वें दिन पदकों की संख्या में और उन्नति करी जाए।
1: और अब चलते हैं ISSF विश्व कप 2026 की ओर, जहां चीन के हांगझाऊ में भारतीय निशानेबाजों ने एक बार फिर विश्व मंच पर अपनी सटीक निशानेबाजी का दम दिखाया है। सबसे पहले बात महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा की करें तो भारत की युवा स्टार ईशा सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पूरे फाइनल में ईशा का धैर्य और सटीकता का बेहतरीन प्रदर्शन किया और शीर्ष स्थान हासिल कर भारत का गौरव बढ़ाया। भारत की एक और स्टार निशानेबाज और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने भी निराश नहीं किया। उन्होंने कांस्य पदक जीतकर भारत को इस स्पर्धा में डबल पोडियम दिलाया। ईशा और मनु की सफलता ने दुनिया को भारतीय महिला पिस्टल शूटिंग की गहराई और मजबूती का एहसास कराया। इससे पहले प्रतियोगिता के शुरुआती दिन भारत के लिए सैन्यम ने शानदार शुरुआत की थी और महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में उन्होंने 243.4 अंकों के साथ रजत पदक जीतकर भारत का खाता खोला और उन्होंने क्वालिफिकेशन और फाइनल दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन किया और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आने वाले दिनों में भारतीय टीम की निगाहें 10 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन, रैपिड फायर पिस्टल और शॉटगन स्पर्धाओं पर रहेगी और यह प्रतियोगिता भारत के लिए 2026 एशियाई खेलों की तैयारियों का भी महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है। इन 3 पदकों ने साबित कर दिया कि भारतीय निशानेबाज विश्व शूटिंग में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहे हैं।
0: श्रोता श्रोताओं, खेल समाचार को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं क्रिकेट की तरफ, जहां भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर T20 सीरीज में किया क्लीन स्वीप। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर

0: 92 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 157 रन ही बना सकी। मैच और पूरी सीरीज के हीरो रहे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया है। भारत की शुरुआत एक बार फिर अच्छी नहीं रही थी इस मैच में। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा लगातार तीसरे मैच में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे और केवल 2 रन बनाकर ही लौट गए। इसके बाद 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने ईशान किशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 75 रन की एक अहम साझेदारी कर टीम को संभाला। धीमी पिच पर जहां रन बनाना आसान नहीं था, वहीं वैभव ने शानदार साझेदारी के साथ बल्लेबाजी की। उन्होंने 49 गेंदों में 81 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। उनके आउट होने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने 18 गेंदों पर 27 रन और रिंकू सिंह ने 14 गेंदों पर 25 रन की तेज पारियां खेलकर भारत का स्कोर 192 रन तक पहुंचाया। 193 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत बेहद खराब रही। तेज गेंदबाज मयंक यादव ने मैच की पहली ही गेंद पर 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालते हुए ब्रायन बेनेट को गोल्डन डक पर आउट कर दिया। इसके बाद यश ठाकुर ने 5वें ओवर में लगातार 2 गेंदों पर डियोन मायरिस 19 और कप्तान सिकंदर रजा को गोल्डन डक पर आउट कर जिम्बाब्वे की मुश्किलें और बढ़ा दी। एक समय टीम का स्कोर 34 रन पर 3 विकेट हो गया था। हालांकि रायन बर्ल और वेस्ली ने 4th विकेट के लिए 60 रन जोड़कर संघर्ष जरूर किया। उसके बाद मधेवरे ने 28 रन बनाए, जबकि रायन बर्ल 43 गेंदों पर नाबाद 54 रन बनाकर अंत तक टिके रहे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट लेते हुए जिम्बाब्वे को वापसी का मौका ही नहीं दिया। मयंक यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए, जबकि भारतीय तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से ही जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। हालांकि भारतीय टीम ने फील्डिंग में 5 कैच भी छोड़े, लेकिन इसका मैच के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ा। इस जीत के साथ भारत ने जिम्बाब्वे दौर का शानदार अंत करते हुए 3 T20 मुकाबले जीतकर 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली है। वहीं युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपनी शानदार बल्लेबाजी से भविष्य के लिए एक बार फिर मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। आइए इस पे सुनते हैं VVS लक्ष्मण ने क्या कहा।
1: फॉर मी इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम विद द प्लेयर्स, यू नो, एंड इन दिस रोल इट्स बीन क्वाइट अ फुलफिलिंग रोल where it's not only with the senior Indian cricketers, men and women, but also being part of the entire pathway program, and credit to BCCI that they invest a lot of time, effort and money for the development programs, you know, and I think me taking care of that has been a very satisfying role so far. If you see someone like Vaibhav, he just played Under-19 World Cup, and in a matter of 4 to 5 months, you know, he dominated the IPL. And we know how tough IPL competition can be, you know, and taking on the best of bowlers from not only India but around the world, the way he evolved, the way he progressed as an international cricketer, and he showed what kind of potential and class and talent he has, you know. So I think we are very fortunate that we have got a lot of depth in our ecosystem, and I think I feel for the next 5 to 10 years, we've got a lot of quality players will take Indian cricket forward.
2: और अब UTT सीजन 7 के फाइनल की बात करते हैं। यू मुंबा टीटी ने शानदार वापसी करते हुए डेम्पो गोवा चैलेंजर्स के पूरे सीजन के अजय अभियान का अंत कर दिया। रविवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में खेले गए रोमांचक ग्रैंड फिनाले में 8-5 की जीत के साथ अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 7 का लगातार दूसरा खिताब अपने नाम कर लिया। शुरुआती 2 मुकाबलों में यू मुंबा 2-4 से पीछे था, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन ने दमदार वापसी की। कप्तान मानुष शाह और एना हर्सी ने मिश्रित युगल में शानदार जीत दर्ज कर टीम की वापसी की नींव रखी। इसके बाद मानुष ने अलवारो रॉबलेस को हराकर बढ़त दिलाई और आखिर में अनुषा कुंताबले के सिंड्रेला दास के खिलाफ बेहद रोमांचक मुकाबले में निर्णायक अंक जीतकर खिताब पर मोहर लगा दी। यह पूरे सीजन में गोवा की पहली और एकमात्र हार रही। इस जीत के साथ यू मुंबा ने प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे सफल फ्रेंचाइजी बनने के मामले में गोवा की बराबरी कर ली। दोनों टीमों ने अपने नाम 2-2 खिताब कर लिए हैं। फाइनल की शुरुआत सीजन के सबसे चर्चित मुकाबलों में से एक से हुई, जहां उभरते भारतीय खिलाड़ी अभिनंद पीबी ने लिलियन वार्डे को 2-1 से हराया और इसके बाद बर्नार्ड रोजक्स ने एक गेम से पिछड़ने के बाद एन हर्सी को 2-1 से मात देकर गोवा को बढ़त 4-2

0: दिलवा दी। यू मुंबा की वापसी मिश्रित युगल से शुरू हुई। मनुष्य और हर्षी की जोड़ी ने लगातार छठी तीज जीत दर्ज करते हुए अलवारो रोब्लेस और सिंड्रेला दास को सीधे गेमों में हराया और मुकाबले का रुख बदल दिया। इसके बाद पुरुष एकल में मनुष्य ने पहला गेम गंवाने के बावजूद वापसी करते हुए दूसरा गेम 11-10 और निर्णायक गेम 11-5 से जीतकर टीम को 7-5 की बढ़त दिला दी। खिताब का फैसला अंतिम मुकाबले में हुआ सिंड्रेला के खिलाफ। अनुषा कुंतु बाले ने दबाव में शानदार संयम दिखाया और सिंड्रेला ने 5-9 से पिछड़ने के बाद स्कोर 10-10 से बराबर कर दिया, लेकिन अनुषा ने अगला अंक जीतकर 11-10 से मुकाबला समाप्त किया और यू मुंबा को लगातार दूसरा खिताब दिला दिया। यह जीत टीम के कोच जॉन मर्फी और जय मॉडक के लिए भी यादगार रही, जिन्होंने वापसी के बाद टीम को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाया।
1: अब लिए चलते हैं आपको अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 की तरफ। अजरबैजान की राजधानी बाकू में आज से विश्व कुश्ती के भविष्य के सितारों का सबसे बड़ा महासंग्राम शुरू हो चुका है। 27 जुलाई यानी आज से 2 अगस्त तक आयोजित होने वाली अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप इस बार कई मायनों में ऐतिहासिक रहने वाली है। इस बार चैंपियनशिप में 675 पहलवान हिस्सा ले रहे हैं, जो अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी है। इनमें ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल दोनों में ही 242 जबकि महिला कुश्ती में 191 पहलवान उतर रहे हैं। खास बात यह है कि महिला वर्ग में भी यह अब तक का नया रिकॉर्ड है। इससे पहले 2017 के संस्करण में 186 महिला पहलवानों ने हिस्सा लिया था। इसके साथ ही यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 14 वर्षों बाद एक बार फिर बाकू लौट रही है। आखिरी बार इस शहर ने 2012 में इस विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करी थी। अब बात करते हैं भारतीय चुनौती की। भारत ने इस बार 30 सदस्यीय दल भेजा है। इसमें 10 ग्रीको रोमन में 10 महिला और 10 पुरुष फ्री स्टाइल पहलवान शामिल हैं। आने वाले 7 दिन में भारत के युवा पहलवान अलग अलग भार वर्गों में विश्व पदकों के लिए चुनौती पेश करेंगे। अब नजर डालते हैं प्रतियोगिता के कार्यक्रम पर। आज से ग्रीको रोमन स्पर्धा के साथ प्रतियोगिता का आगाज हुआ। आपको बता दें कि इस शैली में पहलवान अपने प्रतिद्वंदी के शरीर के कमर के नीचे वाले हिस्से पर ना तो पकड़ बना सकते हैं और ना ही हमला कर सकते हैं, यानी मुकाबला पूरी तरह ऊपरी शरीर की ताकत, संतुलन और तकनीक पर आधारित होता है। यही इसे फ्री स्टाइल कुश्ती से अलग बनाता है, जहां पैरों का इस्तेमाल भी पूरी तरह वैध होता है। तो अगर बात करें आज के मुकाबलों की, तो ग्रीको रोमन में पहले दिन 48, 55, 65, 80 और 110 किलोग्राम वर्गों के क्वालिफिकेशन मुकाबले और सेमीफाइनल आयोजित करे गए हैं। भारतीय समय अनुसार ये मुकाबले दोपहर से शुरू हुए हैं, जबकि आज शाम उद्घाटन समारोह भी आयोजित किया जाएगा। फिलहाल क्वालिफिकेशन और सेमीफाइनल के विस्तृत परिणामों के लिए हम वेट कर रहे हैं कि आधिकारिक अपडेट उन पे आना बाकी है। 28 जुलाई कल इन्हीं 5 भार वर्गों के फाइनल और कांस्य पदक मुकाबले होंगे। इसी के साथ 45, 51, 60, 71 और 92 किलोग्राम वर्गों के क्वालिफिकेशन और सेमीफाइनल भी खेले जाएंगे। 29 जुलाई को ग्रीको रोमन के दूसरे समूह के पदक मुकाबले होंगे। इसी दिन महिला कुश्ती की शुरुआत होगी, जिसमें 43, 49, 57, 65 और 73 किलोग्राम वर्गों के क्वालिफिकेशन और सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। 30 जुलाई को महिला कुश्ती के पहले 5 भार वर्गों के फाइनल खेले जाएंगे। साथ ही 40, 46, 53, 61 और 69 किलोग्राम वर्गों के क्वालिफिकेशन और सेमीफाइनल मुकाबले भी होंगे। 31 जुलाई को महिला वर्ग के बाकी फाइनल के साथ उनकी प्रतियोगिता समाप्त होगी। इसके बाद पुरुष फ्री स्टाइल स्पर्धा शुरू होगी, जिसमें 48, 55, 65, 80 और 110 किलो वर्ग के क्वालिफिकेशन और सेमीफाइनल होंगे। इसी के बाद अगर 1 अगस्त की करें तो इन भार वर्गों के फाइनल तब होंगे। साथ ही 45, 51, 60, 71 और 92 किलोग्राम वर्गों के क्वालिफिकेशन और सेमीफाइनल भी आयोजित करे जाएंगे। और आखिरकार इसके आखिरी दिन चैंपियनशिप के 2 अगस्त को पुरुष फ्रीस्टाइल के अंतिम 5 भार वर्गों के रेपेचार्ज और फाइनल मुकाबलों के साथ ही इस विश्व चैंपियनशिप का समापन होगा और नए विश्व चैंपियनों का फैसला होगा। यानी अगले 7 दिन तक बाकू में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युवा पहलवानों के बीच विश्व खिताब की रोमांचक जंग देखने को मिलेगी। भारत के 30 युवा पहलवान भी इस चुनौती का हिस्सा हैं।

और खेल प्रेमियों की निगाहें उन पर रहेंगी, क्योंकि यही खिलाड़ी आने वाले वर्षों में सीनियर स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ सकते हैं।

22वां कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 जो आज से यानी कि 27 जुलाई से 2 अगस्त तक नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, जहां 25 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत की ओर से विमेंस टीम की बात करें तो सुंडेला दास हैं उसमें, श्रीजा अकुला, यशस्विनी घोरपड़े हैं, सुतीर्था मुखर्जी हैं और स्वास्तिका घोष विमेंस टीम का हिस्सा है। इंडिविजुअल और डबल्स इवेंट मेंस की बात करें तो मानव ठक्कर, मानुष शाह, साथियन गणेश करण, हरमीत देसाई, पायस जैन, अंकुर भट्टाचार्य जी, रौनित भांजा, फिडेल रफीक, स्नेहित आकाशपाल, जीत चंद्रा, हिमनाकुल पोइंगा, मुदित तानी, जश मोदी, दिव्यांश श्रीवास्तव, तनिष शेट्टी और रेगन हैं। और साथ ही साथ इंडिविजुअल और डबल इवेंट्स विमेंस की बात करें तो श्रीजा अकुला, सुंडेला दास, यशस्विनी घोरपड़े, सुतीर्था मुखर्जी और स्वास्तिका इस टीम का हिस्सा है। विमेंस टीम ड्रॉ के ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप ए में सिंगापुर, न्यूजीलैंड, श्रीलंका शामिल हैं और ग्रुप बी की ओर चले तो ग्रुप बी में भारत के साथ साउथ अफ्रीका, मालदीव्स और नॉर्दर्न ईरान है। इसके अलावा ग्रुप सी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश और साइप्रस है और ग्रुप डी में कनाडा, मलेशिया, बोत्सवाना और स्कॉटलैंड है। वहीं अगर मेंस टीम्स ड्रॉ की बात करें और ग्रुप स्टेजेस की बात करें, ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप ए में भारत के साथ मलेशिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे और वेल्स हैं। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, मालदीव्स, जमैका और नामीबिया हैं। ग्रुप सी में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, नामीबिया, साइप्रस और फैकलैंड आइलैंड है और ग्रुप डी में कनाडा, सिंगापुर, बोत्सवाना, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के साथ साथ नॉर्दर्न आयरलैंड भी है। ये तो थी ग्रुप्स की बात और आज मुकाबले शुरू हो चुके हैं, भारत के भी मुकाबले खेले जा चुके हैं और जैसे जैसे मुकाबलों की जो भी अपडेट्स हम तक आती रहेगी हम कार्यक्रम के ज़रिए आप तक पहुंचाते रहेंगे।

और अब बात करते हैं एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरन कप के 135वें संस्करण की, जिसका भव्य आगाज रांची के मोहराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ। और इस टूर्नामेंट का उद्घाटन हो चुका है और बहुत ही शानदार उद्घाटन हुआ और बहुत ही रोमांचक मुकाबले भी आगे हमें देखने को मिलेंगे। और इस मौके पर स्टेडियम में फुटबॉल प्रेमियों में गजब का जोश और उत्साह देखने को मिला। रांची में ग्रुप सी के मैच खेले जा रहे हैं और अगर इसके थोड़े से इतिहास पर अगर हम नज़र डालें तो 1888 में पहली बार डूरन कप का आयोजन शिमला में हुआ था और इतने वर्षों में ये पहला मौका है जब रांची में इसका आयोजन हो रहा है। और डूरन कप से जुड़ी और भी जानकारी आपको दे देते हैं, यानी कि जो मैच खेले गए हैं उनके बारे में आपको बात बताते हैं। कल दो मुकाबले खेले गए, जो पहला मुकाबला था ग्रुप बी का, जिसमें इंडियन आर्मी का मुकाबला था समलेश्वरी स्पोर्टिंग से और 1-0 से वो अपने नाम किया। और ग्रुप सी का मुकाबला जमशेदपुर FC और डिफेंडर FC के बीच में था, जो 5-0 से जीता गया। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में ये खेला गया। और आज एक मुकाबला है ग्रुप बी का, जो मोहम्मडन SC और बागपत FC के बीच में है और विवेकानंदा युवा भारती क्रीड़ांगन में ये मुकाबला आज खेला जाना है।

0: बेल्जियम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाले विश्व कप से पहले मानसिक कंडीशनिंग कोच पेडी अपटन के प्रशिक्षण केंद्र में 3 दिवसीय उच्च तीव्रता शिविर के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा करेगी। यह शिविर प्रसिद्ध सासी माइक के स्विस ओलम्प्स स्थित बेस कैंप में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 2024 पेरिस ओलंपिक से पहले भी इसी तरह का एक शिविर आयोजित किया था, जहां टीम ने लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता था। क्या लगता है हमें, क्या इस बार भी ऐसा कुछ अटेंड करते हुए भारत टीम से ऐसी उम्मीदें रखी जा सकती हैं?
1: और हॉकी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए ओमान के मस्कट में आयोजित यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने फाइनल में चीन से 2-4 से हारने के बाद उप विजेता रही। और इससे पहले दिन में भारत ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान को 8-1 की शानदार जीत के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी। फाइनल में चीन ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले ही मिनट में टोंग टोंग लू के गोल से बढ़त बना ली और 5वें मिनट में कैक्सिन तांग ने एक और गोल करके चीन की बढ़त को दोगुना कर दिया, जिसके 1 मिनट बाद ही जैक्सिन गुओ ने तीसरा गोल दाग दिया। और दूसरे हाफ के बाद भारत ने पलटवार किया और 13वें मिनट में नौशीन नाज ने एक और गोल दाग कर स्कोर का अंतर कम कर दिया।

0: विदुषी, कॉमनवेल्थ गेम्स चल रही हैं और क्यों ना इसके इतिहास पर थोड़ी सी नज़र डाल ली जाए कि भारत का प्रदर्शन अब तक कैसा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में। भारत अब तक 18 संस्करणों में हिस्सा लेकर 564 पदक जीत चुका है और इसके साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा के साथ इस मल्टी स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का चौथा सबसे सफल देश है। ग्लासगो 2026 भारत की 19वीं कॉमनवेल्थ गेम्स भागीदारी होगी और भारत ने पहली बार 1934 में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नई दिल्ली 2010 में रहा, जब मेजबान टीम ने 39 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक सहित 101 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया था। यह अब तक का एकमात्र अवसर है जब भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 100 से अधिक पदक जीते हैं। वहीं बर्मिंगम 2022 में भारत ने 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य सहित कुल 61 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया था। हालांकि ग्लासगो 2026 में प्रतियोगिताओं की संख्या कम कर दी गई और इस बार कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और हॉकी समेत 9 खेलों को कार्यक्रम से बाहर रखा गया है। यानी कि इस बार कुश्ती, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और हॉकी के जो फैंस हैं उनको थोड़ी सी निराशा हाथ लगेगी और वो इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में ये वाले जो खेल हैं नहीं देख पाएंगे। और इन खेलों में ही भारत ने बर्मिंगम 2022 में अपने 61 में से 25 पदक जीते थे और जिसका असर इस बार भारत की कुल पदक संख्या पर पड़ सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे दीपिका जसवाल को
1: और मुझे विदुषी वत्स को
0: दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर जांच की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण

0: अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
2: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करे। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचो में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Both the Houses of Parliament were adjourned for the day following uproar by opposition parties on the alleged police action during students' protest over knee tissue. The Lok Sabha was adjourned several times today amid repeated disruptions as Minister of State Dr. Jitendra Singh introduced the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill proposes stricter penalties, including imprisonment of up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, confiscation of properties of convicted offenders, special fast-track courts, completion

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 6:20 होने को हैं। लीजिए अब सुनिए संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वकारेण लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः उपस्थापितः। प्रतिपक्षीयाणां भृशं कोलाहलेन संसद सदनम् अद्य स्थगितम्। अस्मिन् विषये चर्चायाः स्थगनं राष्ट्राय असमीचीनं सन्देशं प्रसारयिष्यतीति केन्द्रीय मंत्री किरण रिजिजुः उदघोषयत्। एमवी ओमर्फी इति वाणिज्यपोते जाते आक्रमण प्रकरणे एकस्य भारतीय नागरिकस्य निधनात् पश्चात् भारत सर्वकारेण युक्रेन देशस्य राजदूतः आहूत।

ग्राम संसार सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम। देखिए वीरेंद्र भाई, आज हमारे पास बहुत सारी बात

0: आपको आज देशभक्ति लोकगीत सुनवाएंगे और देखिए जानकारी भी देंगे, योजना की बात भी करेंगे। और सबसे पहले जो हमारे पास चर्चा का विषय है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनकी आज स्मृति दिवस है। और कहते हैं ना कि भाई अब्दुल कलाम जो थे वो ज्ञान के महासागर थे।
1: जी बिल्कुल, वंदना बहन कहते हैं कि कुछ सितारे टूट जाते हैं लेकिन इतनी चमक छोड़ जाते हैं कि सदियों उनकी रोशनी झिलमिलाती रहती है। ऐसे ही थे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।
0: बिल्कुल, वे एक बेहद साधारण परिवार में जन्म लेकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने में उन्होंने जो भूमिका निभाई है, उनका जो सफ़र रहा दुनिया भर के युवाओं के लिए बहुत ही हौसला देने वाला है।
1: जी, और मुख्य तौर पर वंदना बहन कह सकते हैं कि जो उनके विचार हैं वो युवाओं को बहुत प्रेरित करते हैं। सपनों के विषय में वो बहुत सारी बातें करते हैं।
0: बिल्कुल, और वो कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हम जगते हुए देखते हैं या जिनको हम पूरा करने की हम लालसा करते हैं।
1: जी, तो मेहनत पे भी वो खासा जोर देते हैं और दोनों ही विचार उनके अपने मतलब व्यक्तित्व को भी दिखाते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की और कैसे उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, उनके कामों की वजह से ही कहा जाता है।
0: बिल्कुल, और कहते हैं कि अभाव के कारण भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कायम रखा। और जब सबसे पहले वो इतने निम्न परिवार से थे कि उन्हें अखबार भी बेचना पड़ा अपनी पढ़ाई के लिए, कि
1: जी
0: भई अखबार बेच के उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत करी और वो आगे बढ़े।
1: और डॉक्टर कलाम बहुत ही मतलब बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे और कलाम साहब की आज पुण्यतिथि है तो सारा राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। हम भी याद करते हैं, नमन करते हैं ऐसी विभूति को जिसने भारत को इतना सफल, संपन्न और सामरिक दृष्टि से समृद्ध बनाया है।
0: बिल्कुल, 27 जुलाई को उनकी स्मृति दिवस तो मनाया जाता है। कहते हैं इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता था और ये भारत रत्न से भी सम्मानित थे।
1: जी, और भारत के राष्ट्रपति पद को इन्होंने सुशोभित किया। बहुत ही विनम्र व्यक्तित्व, सबको प्रेरणा देने वाले ऐसे थे अब्दुल कलाम।
0: जी हाँ, तो श्रद्धांजलि के साथ साथ हमारी तरफ से ये देशभक्ति गीत,
1: जी
0: तो आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत रविंद्र कुमार बदोला की आवाज में।
2: और सब दे

0: साथियों रविंद्र कुमार भडोला राष्ट्र स्तुति गा रहे थे, राष्ट्र की महिमा और उपलब्धियों का बखान कर रहे थे
1: जी। और आगे बढ़ते हैं वीरेंद्र भाई, और देखिए कहते हैं ना कि किसी के पास धन होता है, किसी के पास दिमाग होता है, किसी के पास पैसा पैसा होता है, तो वो जो चीज़ होती है हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता
0: जी।
1: और जो हमारे युवा साथी हैं वो अपना रोजगार कुछ करना चाहते हैं, जैसे कौशल विकास के माध्यम से वो कुछ शिक्षित तो हो जाते हैं, सीख तो लेते हैं कि भाई हमने मोबाइल रिपेयरिंग करना सीख लिया है या प्लम्बरिंग सीख लिए या कार चलाना सीख लिया, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते रोजगार शुरू करने के लिए। तो जो हमारी ये योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो इसके तहत जो हमारे भाई हैं, हमारे युवा साथी हैं, वो बिना गारंटी के 20 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं।
0: जी वंदना बहन, मैंने भी सुनी है ऐसी बात। और इसमें चार तरह की श्रेणी होती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कारोबारी और उद्यमियों के लिए ये ऋण उपलब्ध हैं। और इसमें जो पहला ऋण है वो है शिशु ऋण, इसमें 50,000 तक की जो धनराशि है वो ऋण के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ऋण है किशोर ऋण, जिसमें 50,000 1 से 5 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है और काफ़ी बड़ी रकम है, अगर कोई काम धंधा लगाना चाहे तो आसानी से लगा सकता है और आसान किश्तों से उसे वापस भी कर सकता है। और वंदना बहन, तीसरी श्रेणी है इसमें तरुण ऋण, जिसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का आप ऋण ले सकते हैं, अपने व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं, उसको उन्नत कर सकते हैं, उसमें वृद्धि कर सकते हैं
1: जी।
0: और चौथा है तरुण प्लस। जी समझ गए होंगे कि मोटी लागत से आगे बढ़ना है और 10 से 20 लाख तक का आपको ऋण चाहिए। पहले आपने कोई ऋण लिया है उसके बाद भी ये ऋण मिल जाता है कि भई आप अपने व्यवसाय को उन्नत करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो तरुण प्लस ऋण आप ले सकते हैं।
1: जी हाँ, और आवेदन करने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं कि ऑफलाइन अगर आप आवेदन करते हैं तो आपके पास जो सरकारी बैंक हैं या प्राइवेट बैंक हैं, ग्रामीण बैंक हैं, उनमें आप जाइए और वहाँ पर मुद्रा लोन लेने के लिए फॉर्म भरें और ये सही दस्तावेज आप जमा करें। और कहते हैं ना, आपका पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होनी चाहिए और पता में आपका बिजली का बिल या राशन कार्ड होना चाहिए पते के प्रमाण पत्र के लिए, और व्यापार का प्रमाण पत्र में आप नाम पता और कार्य का विवरण ये जरूर लिखिए कि हमें क्या काम करना है, हमें किस काम के लिए ऋण चाहिए, और पासपोर्ट साइज की 2 फोटो। आप किसी बैंक में जाकर इस तरह आप अपना ऋण का सारा काम कर सकते हैं
0: जी। और वंदना बहन, इसमें ऋण लेने का एक अच्छा तरीका यह है कि आप कोई छोटा सा काम शुरू करें और उसमें किशोर ऋण लें या शिशु ऋण लें, उसके उपरांत उस काम को आगे बढ़ाओगे तो आहिस्ते आहिस्ते आप जो है ऋण का भुगतान भी करते रहेंगे, लौटाते भी रहेंगे, तो आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा हो जाएगा और आपको अगला ऋण आसानी से मिल जाएगा।
1: बिल्कुल। और ये तो थी हमारी मुद्रा लोन की बात, और हमारे भाइयों को पता चली गई होगी कि वो किस तरह से अपना रोजगार शुरू करें। और एक और देशभक्ति लोकगीत अपने भाइयों को सुनवाते हैं बुल्लन त्यागी की आवाज में
0: जी।

0: साथियों, भारत की जितनी भी स्तुति की जाए उतनी ही कम है। और अब आपको बता दें कि हमारे जो युवा हैं, ग्रामीण युवा हैं, उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, उनमें बहुत ज़्यादा मतलब संभावनाएं होती हैं। अगर उन्हें एक दिशा मिल जाए ना, वरना बहन
1: जी
0: वो फिर पता ना क्या से क्या कर दें, चाले पाड़ दें, यूँ कह रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: नहीं तो इसका एक तरीका है कि हम किसी ना किसी प्रकार की व्यावसायिक ट्रेनिंग जरूर लें, है ना,
1: जी
0: कार्य
1: हाँ
0: क्षमता बढ़ाने के लिए। और वो ट्रेनिंग आपकी पसंद की भी हो सकती है, जिस चीज़ में आपकी रुचि है आप उससे जुड़ी हुई ट्रेनिंग ले लें। अगर कई जो हमारे युवा होते हैं उन्हें शौक होता है कि भाई वो मतलब बकरी पालन करें, या
1: जी
0: कोई गाय पालन करें, या आप कृषि यंत्र बनाना शुरू करें, या फिर पशुओं की जो उपचार करने की विधि होती है उनके बारे में जानकारी लेके
1: सारी बहुत
0: करें।
1: सारी चीज़ें होती हैं गांव में, चाहे हमारे महिलाओं चाहे पुरुषों, उनके लिए बहुत काम है। वो करते हैं,
0: जी
1: इतना काम करते हैं वो लोग कि उनको पूरा दिन टाइम ही नहीं मिलता पहली बात तो,
0: जी
1: लेकिन उसके बाद भी वो समय निकाल सकते हैं अपना रोजगार शुरू करने के लिए, जैसे आपने अभी बताया इन चीज़ों को। और हमारी महिलाएं वो भी इनसे जुड़ सकती हैं। और जो कुछ महिलाएं ऐसी हैं वो अपने घर में वैसे भी रोजगार करती हैं, जैसे घर में जवे बना लेते हैं, मुरब्बा बना लेती हैं, अचार बना लेती हैं, फिर उसको
0: जी
1: बाद में गांव में ही बेचती हैं और अपना थोड़ा सा छोटा सा रोजगार शुरू कर लेती हैं। तो ये तो हमारे गांव के व्यक्तियों के पास एक हुनर होता है, या कह दीजिए भगवान का गॉड गिफ्ट होता है।
0: जी एक ऐसी ही योजना है जिसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन,
1: जी
0: ये भी बड़ी अच्छी योजना है। इसके तहत भी आपको मतलब ट्रेनिंग भी मिलती है, आप अपना समूह भी बना सकते हैं और जो ट्रेनिंग ली है उसका उपयोग भी कर सकते हैं। और
1: बिल्कुल
0: दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भी है, जिसमें ग्रामीण युवाओं को रोजगार से संबंधित जानकारी भी दी जाती है और ट्रेनिंग भी दी जाती
1: जी
0: है।
1: हाँ, और इस ट्रेनिंग में उनका कोई खर्चा भी नहीं होता है। और आप कहते हैं कि एक एक डेढ़ डेढ़ महीने की ये ट्रेनिंग होती हैं, और आराम से आप सीख सकते हैं, छुट्टियों में सीख सकते हैं, खाली समय में सीख सकते हैं। एक दो घंटा आपको जाना होता है तो आपको छोटा छोटा रोजगार, अगर आप प्रशिक्षण ले लें तो वो आपके हाथों में हुनर हो जाता
0: एक
1: है।
0: बात और जोड़ दूं ना बहन, के जैसे हम ऋण की बात कर रहे थे, यार आप प्रशिक्षित होते हैं, आपके पास कोई छोटा मोटा प्रमाण पत्र होता है तो आपको ऋण मिलने में और आसानी हो जाती है। तो
1: जी
0: सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है उसे तैयार करें, हम भी तैयार हैं अब एक और प्रस्तुति लेके।
1: जी हाँ, हम अगला देशभक्ति लोकगीत सुनवाएंगे अपने भाइयों को, रविंद्र कुमार भदोला की आवाज में।
2: अरे सुन।

0: और रविंद्र कुमार बद्दोला की आवाज़ में अभी हमारे भाई सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत। और इसी के साथ हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। रात्रि के 7 बजने को लीजिए आप सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर जांच की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया,

0: इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
2: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करे। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर तचंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांडर पालिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हुई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्य जहाजों पर ऐसे हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, ये अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचू में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शानदार प्रदर्शन के लिए ईशा सिंह और मनु भाकर को बधाई दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावरलिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम। वीरेंद्र भाई देखिए हम फिर से उपस्थित हैं और अपना कार्यक्रम अपने साथियों के साथ सुनवाने, उनको अच्छे से मनोरंजन करवाने और उनसे जानकारी जो हमें दिलवाना चाहते हैं वो

0: कुछ उनको देने फिर से उपस्थित हो चुके हैं। तो हम अपने भाइयों को जानकारी भी देंगे और कुछ बातें भी करेंगे, मनोरंजन तो होगा ही साथ साथ। तो जो हम जानकारी देंगे वो अपने भाइयों को देंगे कि मैदानी क्षेत्रों में सेब उत्पादन की संभावना है इसके बारे में।
1: जी।
0: तो जो हमारे किसान भाई ये सुनना चाहते हैं तो ध्यान से जरा रेडियो तेज कर लीजिए अपना।
1: जी, मैदानों में सेब की बात होने वाली है। भाई फलों का राजा तो आम है और उसका चचेरा भाई जो है वो मंत्री से कम नहीं है, उसे सेब कहते हैं।
0: जी,
1: तो जरूर जानिएगा इसके बारे में।
0: लेकिन इससे पहले एक बातचीत करते हैं AI आधारित स्मार्ट खेती के बारे में।
1: जी वंदना बहन, आजकल का जो समय है वो AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है, और कृषि में भी इसकी अपार संभावनाएं हैं। अब वंदना बहन ये देखो कि अब बारिश हो रही है और हम खेत में नहीं जा सकते, जाने में हमें कठिनाई है, हमारी ट्यूबवेल चल रही थी, अब हम उसे घर बैठे बंद करना चाहें, उसे मतलब बिजली बचाना चाहें और व्यवस्थित करना चाहें अपने खेत को, तो AI की संभावनाएं, हम घर बैठे ही अपनी ट्यूबवेल को भी बंद कर सकते हैं। नहीं
0: बिल्कुल। और देखिए कहते हैं ना कि भाई राष्ट्रीय कीट नियंत्रण प्रणाली भी इसमें है कि भारत सरकार ने AI के माध्यम से जो मशीन लॉन्च की है उसमें किसानों को सिर्फ कीट की फोटो खींचकर ऐप पे डालते हैं और पता लग जाता है कि इस पर कौन सी दवा का छिड़काव करें। ये सब चीज़ें हम AI के माध्यम से बड़ी सटीकता से जान सकते हैं।
1: जी,
0: मौसम का पता लगा सकते हैं कि कब मौसम खराब होने वाला है, हमें अपने खेतों में पानी देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कौन सा बीज डालना है, मिट्टी की जांच कर सकते हैं कि भाई हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और हमें कौन सा पोषक तत्व उसमें डालना है, सारी बातें AI के माध्यम से हम आसानी से जान सकते हैं।
1: जी वंदना बहन, अभी आपने बताया ना कि मतलब कीटों का पता लगा सकते हैं पत्तों पे फोटो खींच के, उनसे ये भी पता लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ का पौधा है, किस चीज़ का पेड़ है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये किस परिस्थिति में होता है, बहुत ही सारी चीज़ें हैं, अब कितनी बातें बताई जाएं।
0: जी, तो ये तो थी हमारे भाइयों के लिए AI स्मार्ट खेती की बातें कि अगर वो करते हैं तो उनका काम कितना आसान हो जाता है, उनकी फसल की पैदावार बढ़ती है, कम लागत में अच्छे संसाधनों के साथ उनकी बचत भी होती है और खेती में जो नए बदलाव आते हैं उसका भी एक नया ही मोड़ उनको देखने को मिलता है।
1: जी, ये आपके ऊपर है कि आप कितने जिज्ञासु हैं, कितने प्रयासरत हैं और अपने युवा साथियों के साथ मिलके आप बहुत सारी ऐसी AI आधारित कृषि जो प्रणालियां हैं उनको अपना सकते हैं।
0: बिल्कुल, ये तो थी जानकारी और अब अपने भाइयों से करवाते हैं बातचीत कि बातचीत का विषय है मैदानी क्षेत्रों में सेब उत्पादन की संभावनाएं। मनोज सैनी से बातचीत कर रही हैं कमलेश मुदकल। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: जब भी हमारे सामने हमारी भोजन की थाली आती है तो बड़े ही शौक से हम वो खाना खाते हैं क्योंकि वो हमें पोषण देता है। लेकिन जब कोई माँ ये कहती है कि मेरा बच्चा एक फल खाता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। वो इसलिए क्योंकि फलों में जो चीज़ें होती हैं वो सब्जी में नहीं मिलती, सब्जी में जो चीज़ है वो फल में नहीं मिलती। और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फल भी हमारे लिए उतने ही लाभप्रद हैं जितनी की बाकी चीज़ें हैं। और कई बार बच्चे कुछ फलों को बड़े ही शौक से खाते हैं और इसमें अगर मैं नाम लूँ सेब का, तो सेब सभी को भाता है, जो रोज सवेरे खाता है, पढ़ने को दौड़ा आता है, रोगों से छुट्टी पाता है। ये छोटी सी कविता मुझे याद आ गई और आज ये मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सेब पर और हमने अपनी बातचीत का विषय रखा है मैदानी क्षेत्रों में सेब उत्पादन की संभावनाएं। और जिन्हें हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वो है मनोज सैनी। मनोज जी, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: लेकिन जो भी हमारे श्रोता सुनेंगे और मैं भी जब सुनकर बड़ी हैरान हो गई हूँ कि भाई मैदानी क्षेत्रों में सेब का उत्पादन कैसे हो सकता है, क्योंकि जब हमें संभावनाएं दी गई हैं तो संभावना तो है, तो बात वहीं से आरंभ करते हैं कि क्या संभावनाएं हैं मैदानी क्षेत्र में।
3: जी, इसकी पूर्ण संभावनाएं हैं और इस विषय में हम 7-8 वर्षों से काम कर रहे हैं और हमने इसे सफल तरीके से उगाया है। फरीदाबाद, दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, जयपुर, इसमें हमने सब ट्रायल किया है। इवन बेंगलोर तक भी हमने ये सब सफल प्रशिक्षण किया है और 3 साल में अब अपने घर का, अगर आपने अपने किचन गार्डन में अगर सेब का पेड़ लगाया हुआ है तो आप गर्मियों में अपने घर का सेब खा सकते हैं।
2: क्या बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कहते हैं मनोज जी कि कोई

0: लगा कि क्यों नहीं मैं ही इसे अच्छी तरह से करूं और कम से कम हर घर में अपने बाग का सेब हो सके। और इसकी बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू भी होती है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और सभी के लिए। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इक्विवेलेंट ही होती है, बराबर होती है बाकी हिमाचल और कश्मीर जैसे सेबों की।
1: ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जैसे हम सेब की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ही सेब होता है, मैदानी क्षेत्रों में तो ये होगा ही नहीं। और आपने लीक से अलग हटकर ये काम किया है, तो इसमें जब हम सफलता की बात करें तो पहले मैं आपके मुख से जानना चाहूँगी कि आप कहाँ तक इस अपनी मुहिम में सफल हुए हैं।
0: जी, मैंने औरों की बात तो बाद में आती है, मैंने खुद ही अपने घर में ये लगा रखे हैं और मेरे पास अब 4 साल का पेड़ है और मैंने अभी फ्रूटिंग ली है इसी महीने। आपको ये भी बताने में हर्ष होगा, इस टाइम बाकी जो सेबों के जो रेट होते हैं वो करीब 200 से 300 रुपए होते हैं। अगर अपने घर का ही आप सेब खाएंगे और अपने गार्डन का सेब खाएंगे तो ये पूर्णतः सक्सेसफुल है। और इसके जो रिजल्ट आए हैं उसके हिसाब से हम बता देते हैं कि भाई 3 और 4 साल में आप अपने घर का सेब खा सकते हैं।
1: जी, मुझे तो आपसे बात करके बहुत ही उत्सुकता हो रही है कि मैं कैसे जानूं कि हम अपने घर में भी सेब उगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें नर्सरी देखनी होगी जहाँ से हम इसकी पौध लेकर आएंगे।
0: जी, अभी ये बहुत कम जगह अवेलेबल है तो हम इसको पहुंचाने में भी किसानों की मदद करते हैं। और हम नर्सरी ऑनलाइन करके एक हमारा पोर्टल है उसके थ्रू हम कहीं पे भी हम पहुंचा देते हैं। और ये अधिकतर हम ये डोरमेंसी का जब पीरियड होता है इनका, नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी, तो इसमें हम ये लगाते हैं क्योंकि उस टाइम पौधा सुप्त अवस्था में होता है और वो हम कहीं भी भेज सकते हैं।
1: जी, जब हम बात करते हैं कि भाई हमें तो अब मन में ठान लिया कि हमें तो सेब लगाना है, लेकिन लगाएंगे कैसे, क्योंकि भूमि भी चाहिए, तो भूमि भी कैसी हो, क्योंकि इतने सारे प्रश्न आएंगे तभी तो हम किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये बताइए कि जब हम भूमि का चयन करेंगे तो कैसी हमारी भूमि होनी चाहिए।
0: देखिए, अगर हमने अपने घर का पीएच लेवल टेस्ट करा रखा है तो 6.5 तक हम आराम से, और जैसे मिट्टी होती है जिसको भी थोड़ा गार्डनिंग का शौक होता है, बागवानी का शौक होता है और बाकी चीज़ें लगाए होते हैं फल फ्रूट, तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत ही स्पेशल मिट्टी चाहिए। अगर हल्की दोमट मिट्टी होती है और जल निकासी का आपका अच्छा प्रबंध होता है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, इस सेब के पौधे को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती,
1: यानी कम पानी में भी उगता है।
0: जी, कम पानी में, जैसे राजस्थान जैसी जगह में भी इसका उत्पादन किसान कर रहे हैं, हमने भी लगाए हैं। और जैसे आजकल मानसून का टाइम है तो इस टाइम भी जैसे अगर आपने पेड़ लगा रखे हैं या किसानों ने लगा रखे हैं तो उसका जल भराव नहीं होना चाहिए।
1: जी,
0: तो उसके लिए हमें एक ऐसी जगह चयन करनी चाहिए, जैसे हम अगर घर में लगाना चाहते हैं तो हम 3 फीट बाय 3 फीट का एक गड्ढा खोदेंगे, दूरी रखेंगे 8 से 10 फीट की, और गड्ढे में गोबर की खाद डालेंगे 10 से 15 किलो, और नीम की खली 500 ग्राम और जैविक उर्वरक 1 kg, वो डालने के बाद फिर हम वो पौधा सेब का लगाएंगे। और जैसे हमने नवम्बर में लगाया तो मार्च अप्रैल में उसकी पत्तियाँ आनी शुरू होंगी और उसका ग्रोथ शुरू हो जाएगा।
1: जी, तो पौधा हम खुद ही लगा सकते हैं या किसी माली को बुलाकर और हमें गड्ढा खुदवा कर और तब लगाना होगा।
0: जी, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए कोई विशेष तकनीक नहीं चाहिए, तो आप खुद भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास माली है तो और भी अच्छा रहेगा क्योंकि माली ज्यादा देखभाल कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ माली ही लगा सकते।
1: जब बात हम करें कि भाई हमें अपना पौधा तो अब लग गया है, लेकिन पानी तो जरूरत है ही, कि भाई हमें हर पौधा पानी के बिना नहीं रह सकता, तो इसको भी पानी की जरूरत पड़ेगी। तो कितना पानी सेब के लिए चाहिए, मतलब जब हम पहली सिंचाई करें तो हमें कब करनी होगी।
0: जैसे हम नवंबर दिसंबर में ही लगाते हैं, सर्दी का मौसम होता है, तो जैसे हमने आज पौधा लगाया तो कम से कम सिंचाई इतनी करनी है जिससे कि करीब 5 से 6 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। और फिर जब वो थोड़ा सा सेटल हो जाए फिर 2 दिन बाद फिर आप दें। और हमारे को ये पता लग जाता है जब जैसे ही मिट्टी हमारी सूखी होती है उसी वक्त हम पानी दे सकते हैं।
1: जी,
0: बस ध्यान यही रखना है कि पानी अधिक ना हो जिससे कि उनकी जड़ें खराब ना हो।
1: जी, हमारे जो श्रोता हैं वो पूरा ध्यान रखेंगे कि उनकी जड़ें जो हैं वो गले नहीं। जब हम बात करते हैं कि पोषक तत्वों की, तो क्या इसमें भी कुछ ऐसे पोषक तत्व दिए जाएंगे जिससे कि इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो।
0: हम इसमें गोबर की खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं बताना चाहूँगा नीम की खली और जैविक उर्वरक भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पर मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि हम नेचुरल फार्मिंग ही करें, जैसे गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, और फंगीसाइड के लिए उनकी जड़ों को थोड़ा सा

0: फंगिसाइड लगाने की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि उनको कोई रोग ना लगे।
1: जी, अगर इसकी हम छटाई की बात करें तो छटाई इसकी कैसे की जाएगी?
0: छटाई जैसे कि हमने नवंबर में लगाया और इसके बाद जो नेक्स्ट नवंबर आएगा तो उस टाइम क्या होता है कि ये पत्ते सारे झड़ जाते हैं, तो हमें जो प्रूनिंग करनी है, प्रूनिंग एक बहुत अच्छा तरीका होता है कटिंग का। हम अच्छे से उसको सेटल करते हैं, कैनोपी बनाते हैं जिससे कि पूर्णता जो धूप है, हवा है, वो अच्छे से मिल सके।
1: जी, किचन गार्डनिंग और जो व्यवसायिक खेती है उन दोनों की अगर हम बात करें, क्योंकि श्रोता जो है वो हमारे हर प्रकार के श्रोता होते हैं, जो व्यवसायिक खेती भी करते हैं और जो किचन गार्डनिंग में भी भरोसा करते हैं और उनको शौक भी होता है, तो उन दोनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, जैसे मैं कहना चाहूँगा, अगर जैसे किसान फार्मिंग करना चाहते हैं, इसके ऊपर एक एकड़ में लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं उनको कहूँगा कि भाई वो ट्रायल पे 15-20 पौधे लगाएं और उसका रिजल्ट देख के फिर अगले साल एक एकड़ में 400 प्लांट लगाएं, जिससे एक व्यवसायिक वो काम कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते हो कि किसान धान, गेहूं और इस तरह की फसलों में ही है, तो उनके साथ साथ भी ये कर सकता है जिससे कि एक उनको अधिक आय मिल सके, और ये आराम से किसान लोग कर सकते हैं।
1: जी, तो क्या आप अपने पौधों को लेकर या इसकी पब्लिसिटी के लिए किसी मेले में भी गए हैं?
0: जी, हम समय समय पर मेलों में जाते हैं, पूसा मेला ग्राउंड में दिल्ली में 2-3 सालों से हम वहां पर अपना स्टॉल भी लगा रहे हैं और किसानों को इसके बारे में बता रहे हैं, और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे पौधे हमारे देश से बाहर भी गए हैं और वो अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं।
1: जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम सेब को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब किचन गार्डनिंग भी कर सकते हैं, व्यावसायिक रूप में भी कर सकते हैं। जब हमने इस पर लागत लगाई दी है तो हर कोई किसान या कोई भी होगा वो यही सोचता है कि इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, कितना हम लाभ लेंगे। मान लीजिए मेरी लागत लग गई है इसमें 10,000 रुपये, तो मुझे इसका लाभ कितना मिलेगा, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
0: जैसे अगर हमारे पास, मान लीजिए हम अपने 1,000 गज में ही ये पौधे लगाते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपको ये व्यवसायिक करना है या किचन गार्डन के लिए करना है, तो जैसे हम 20 या 30 पौधे भी आराम से लगा सकते हैं। और व्यवसायिक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, व्यवसायिक अगर आप 3 साल में 8 या 10 टन उत्पादन चाहते हैं तो आपको कम से कम 400 पौधे लगाने पड़ेंगे, जिसमें आपका जो खर्चा आएगा वो करीब होगा, पौधों का खर्चा होगा प्लस उर्वरक का खर्चा होगा, और आप कम से कम 4,80,000 से 8,00,000 प्रति एकड़ तक आप आय हो सकती है।
1: और कौन कौन से राज्यों में अब तक जो है आप सेब की जो ये किस्में हैं वो सप्लाई कर चुके हैं, या कौन कौन से राज्यों में जो सेब है उसका उत्पादन जो है जैसा आप चाह रहे थे वैसा हो रहा है?
0: जी, सबसे पहले हमने कर्नाटक में लगाए थे, हमारे एक एकड़ में करीब 300 प्लांट थे और उनका उत्पादन बहुत अच्छा आ रहा है। लखनऊ में, मलियाबाद में हमारे कुछ पौधे लगे हैं, उनका फ्रूट आ चुका है। फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल में हमारे करीब 25 से 30 पौधे हैं, उनमें अभी फ्लावरिंग आ गई है, अगले साल उसमें फ्रूटिंग आ जाएगी।
1: जी,
0: फरीदाबाद में

0: जयपुर में, चंडीगढ़ में, हमें खुशी होती है कि हमने ऐसी अच्छे जगह लगाई हैं और उसका हमें प्रोत्साहन भी मिल रहा है।
1: जी
0: और हम चाहते हैं कि किसान इसको समझें और एक आय का साधन ले, एक रोजगार का साधन उनको मिलेगा और उनको एक न्यूट्रिशन वैल्यू, और उनके अपने शरीर के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जो गर्मी में करीब 200 से 300 रुपये किलो जो सेब होता है वो अपने घर में खा सकते हैं।
1: अभी मनोज जी आपने बात की है रोजगार की, और हम तो यही चाहते हैं कि हर हाथ को काम मिले। जब हम बात करते हैं रोजगार की, तो रोजगार की क्या संभावनाएं हैं इसमें?
0: इसमें बहुत संभावनाएं हैं, जैसे कि जो बेरोजगार युवक हैं वो भी इसका एक तरीके से इसको उगा के और इसको एक रोजगार के अवसर से लेके कि अपनी पहले प्लांटेशन करें, उसका रिजल्ट देखें और अपनी नर्सरी खोलकर भी बहुत अच्छी आय कमा सकते हैं।
1: यानी पौध भी तैयार कर भी सकते हैं। तो क्या ये ऑनलाइन बिजनेस भी चल सकता है?
0: जी, ये ऑनलाइन बहुत है आजकल, आप देखते हैं हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है।
1: जी
0: तो नवंबर दिसंबर में तो एक पतली सी डंडी की तरह होता है और ये कोरियर के माध्यम से देश के किसी भी हिस्से में 2 दिन में या 3 दिन में आ जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं होता, बाय एयर भी हम इसको बेच सकते हैं।
1: जी तो संक्षिप्त में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे सेब के बारे में?
0: मैं तो ये कहना चाहूँगा, घर घर एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि एक परिवार की भी आवश्यकता है। और आपने तो सुना है, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे,
1: जी
0: तो ये मल्टीपल काम होगा इससे, और सेहत भी बनेगी और अपने घर का सेब भी आप
1: ये
0: खाएंगे।
1: तो आपने बहुत ही अच्छी बात की है, और हम सब यही चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए जो हमें उपाय करने हैं या जो हमें चीज़ें खानी है, फल खाने हैं, सब्जियां खाने हैं, वो तो हमें ज़रूर खाने हैं, और हमें अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसको ज़रूर खिलाने हैं, क्योंकि वही तो नींव है हमारे देश के। मनोज जी आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: वंदना बहन, इस कार्यक्रम को सुन के, बातचीत को सुन के हमें पता चला कि जो सेब है अब वो पहाड़ों की बपौती नहीं रह गए हैं, अब सेब मैदान में आ चुका है।
3: बिल्कुल, हमारे भाई अभी सुन रहे थे यही एक जानकारी, मैदानी क्षेत्रों में सेब उत्पादन की संभावनाएं। मनोज सैनी से बातचीत कर रही थी कमलेश मुदगल, और अब करवाते हैं अपने भाइयों का मनोरंजन।
2: जी
3: लेकिन उससे पहले
2: हम
3: अपने भाइयों को मौसम के बारे में जो पूर्वानुमान है
2: जी
3: उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं।
2: जी
3: कहते हैं ना कि किसान भाइयों को अगर पहले से कुछ चीज़ का पता होता है तो वो सचेत हो जाते हैं, और सचेत होने से उनकी बहुत सारा नुकसान होने से बच जाता है।
2: जी
3: जैसे कि किसान भाइयों को बताया जाता है कि भाई हमारी सब्जियां हैं जो बेल वाली सब्जियां हैं जो
2: जी जी
3: पड़ी रहती हैं
2: जी
3: हमारे खेतों में, सब्जी है, नर्सरी है, दलहनी फसलें हैं, उनका जो जल प्रबंधन है, अगर जल भर जाता है तो उसकी निकासी आप बराबर मात्रा में करते रहें।
2: जी, बारिश के पानी में डूबने से जो बेल वाली जो कृषि होती है उसको नुकसान होता है, ये तो
3: जी
2: हम सभी जानते हैं, तो उसका उपाय भी करना ज़रूरी है। और वंदना बहन, यह समय जो है वो ख़ास तौर से मिर्च, बैंगन, फूल गोभी की पौधशाला बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है।
3: बिल्कुल, और कद्दू वर्गीय सब्जियों की भी वर्षाकालीन फसल में बुआई कर लेनी चाहिए, कि भाई हमारी जो बरसाती फसलें हैं उनकी उस समय बुआई कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है।
2: जी, और चारे के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा है। हम अपने दुधारू पशुओं के लिए, जानवरों के लिए जो चारा उगाते हैं उसमें ज्वार बहुत अच्छा है, और ज्वार तो वैसे भी मोटा अनाज है, ये इंसानी भोजन के लिए भी बहुत अच्छा है, मिलेट की श्रेणी में आता है, तो आप ज्वार की बुआई इस समय कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, और कोई भी देखिए, कोई भी फसल अगर हम लगाते हैं तो बरसात के मौसम में खरपतवारों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उनकी सफाई भी आप साथ साथ करते रहिए, क्योंकि जो हमारी ज़मीन के पोषक तत्व हैं वो आधे से ज़्यादा वही प्रयोग कर लेते हैं, और हमारी फसल को वो फायदा नहीं पहुंचता, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।
2: जी, तो अब मनोरंजन की बात कर रही थी वंदना बहन, तो करवा दें।
3: जी बिल्कुल, सुरेश चंद्र गोला से सुनवाते हैं ये उपदेश।

0: और साथियों, इसी उपदेश के साथ आज का ये कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिव नंदन लाल।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 में हैं। लीजिए अब सुनिए कुछ बेशकीमती से गजलें। गजलों और कव्वाली पर आधारित ये कार्यक्रम आप हर रोज सुनते हैं और हम कोशिश करते हैं कि कुछ खूबसूरत गजल आप तक पहुँचाएं। तो आज कार्यक्रम की पहली गजल मिताली और भूपेंद्र की आवाज़ में।

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में गाई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम गजलों का अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
6: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव में भाजपा पार्षद सत्य शर्मा अध्यक्ष और सत्यपाल सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली नगर निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ किया। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माली बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्रवाई में सहयोग करेंगे। एक रिपोर्ट।
8: 3 मई को हुए नीट यूजी पेपर लीक के आरोपों के कारण उसे रद्द करने और दोबारा नीट परीक्षा कराने की घोषणा के बाद राष्ट्रीय जनता दल सांसद सुधाकर सिंह की एक और याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि वह देखेगी कि सरकार की ओर से नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में बनाई गई हाई पावर्ड टास्क फोर्स नीट परीक्षा को ऑनलाइन कराने के बारे में क्या सुझाव देती है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि कुछ अलग तरह के सुझावों की जरूरत है, खासकर तब जब नीट परीक्षा को फिजिकल मोड से ऑनलाइन मोड में बदला जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
7: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता का विश्वास सुशासन सुधारों और प्रभावी क्रियान्वयन पर आधारित है। सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो संदेश में श्रीमती गुप्ता ने फास्ट ट्रैक कोर्ट, पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़ी सजा जैसे पहलों से सरकार लगातार काम कर रही है।
9: जिस तरीके से पेपर लीक केस में स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उठाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाई और केवल बनाई नहीं, 3 महीने के अंदर अंदर उन्हें निर्णय लेना होगा और मुजरिम को सजा दिलवानी होगी। इसी लोकसभा के सत्र में ये सख्त कानून लेके आया जा रहा है, 10 साल तक की कड़ी जेल और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, और भविष्य में कभी पेपर लीक ना हो इसलिए ये एग्जाम अब CBT के माध्यम से करवाया जाए।
7: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विद्यार्थियों से नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनने का आह्वान किया। दक्षिण जिला नवाचार परिषद प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए श्री सूद ने कहा कि उद्यमिता, नवाचार और आत्मनिर्भरता ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। दिल्ली सरकार ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रही है जहां छात्र स्कूल स्तर से ही नवाचार और रिस्क लेने की भावना विकसित कर सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। एक रिपोर्ट।
10: पिछले वर्ष 22 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को मुख्य याचिका के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय के 16 दिसंबर के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने के आवेदन पर भी नोटिस जारी किया था। निचली अदालत ने कहा था कि इस मामले में निदेशालय की शिकायत पर संज्ञान लेना कानूनन अनुचित नहीं है क्योंकि ये FIR पर आधारित नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ दिवंगत कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडियन पर साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन्होंने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हासिल की। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत।

0: कुमार।
1: दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में भाजपा पार्षद सत्य शर्मा लगातार दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुनी गई। वहीं भाजपा पार्षद सत्यपाल सिंह उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। एक रिपोर्ट।
2: पदभार ग्रहण करने के बाद सत्या शर्मा ने कहा कि उनकी कार्य योजना स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, शिक्षित दिल्ली, सुशासन और सशक्त निगम के 5 प्रमुख संकल्पों पर आधारित होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्थायी समिति में पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा तथा जनहित के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। श्रीमती शर्मा ने कहा कि निगम की विकास परियोजनाओं का समयबद्ध तरीके से पूरा करने, सफाई व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
1: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने दिल्ली नगर निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने बताया कि बैठक में ठोस कचरा प्रबंधन, जल भराव की रोकथाम, मॉनसून संबंधी रोगों से बचाव, टोल प्लाजा पर यातायात जाम, पीएम उदय योजना और सड़क कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों से स्वच्छ, सुरक्षित और बेहतर नागरिक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेही के साथ काम करने को कहा। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू के निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण राजधानी के रिज क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से पारिस्थितिक पुनर्स्थापन अभियान चला रहा है। इस अभियान के अंतर्गत 120 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,00,000 देसी पेड़ और 81,700 पौधे लगाए जाएंगे। इनमें बरगद, पीपल, नीम, अर्जुन, जामुन, शीशम, पलास और खेजड़ी जैसे प्रजातियां शामिल है। ये पहल एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत शुरू किए गए 70,00,000 पौधारोपण मिशन का हिस्सा है। इसमें DDA को 23,00,000 देसी पौधे लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वर्ष अब तक दिल्ली में 8,29,000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इस अभियान का उद्देश्य जैव विविधता बढ़ाना, वायु गुणवत्ता में सुधार, शहरी ताप प्रभाव कम करना और दिल्ली के प्राकृतिक वन तंत्र को पुनर्जीवित करना है। दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने चौखंडी और ख्याला में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि विकास कार्यों की शुरुआत जितनी जरूरी है, उनका समय पर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा होना उतना ही आवश्यक है। पश्चिमी दिल्ली के कई क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइन की मरम्मत कार्यों के कारण बुधवार सुबह 10 बजे से बृहस्पतिवार दो बजे तक जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि इस दौरान राजौरी गार्डन, तिलक नगर, टैगोर गार्डन, विष्णु गार्डन, सुभाष नगर, ख्याला, राजा गार्डन सहित कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर लोग पानी के टैंकर मंगाने के लिए 1916 पर संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 250 क्वार्टर अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल होने वाली एक स्कूटी बरामद की है। मामले में आगे की जांच जारी है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और पटना के बिहार संग्रहालय ने प्रदर्शनियों, विद्वानों की चर्चाओं, अनुसंधान और ज्ञान के आदान प्रदान में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये साझेदारी बातचीत को बढ़ावा देने और संस्थागत सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक संयुक्त पहल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्यागराज स्टेडियम में आज से एक सप्ताह तक चलने वाली 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न देशों से आए खिलाड़ियों, अधिकारियों और प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत करते हुए कहा कि खेल केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि देशों तथा संस्कृतियों को जोड़ने का सशक्त माध्यम है। इस अवसर पर दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित रहे।
3: मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता की आधिकारिक ट्रॉफी का अनावरण किया, खिलाड़ियों को खेल भावना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की शपथ दिलाई। अपने संबोधन में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है और उनकी सरकार खेल अवसंरचनाओं और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
4: ये बहुत गर्व का मोमेंट है और दिल्ली अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रही है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, स्पोर्ट्स पर्सन को फैसिलिटी देने के लिए और लगातार दिल्ली में एक माहौल बनाने के लिए जिसमें हमारे युवा, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकें।
3: इसके अलावा श्री सूद ने कहा कि यह प्रतियोगिता केवल विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के बीच खेल प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं है बल्कि विभिन्न देशों के बीच मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेल

0: भावना को सशक्त बनाने का अहम अवसर भी है।
1: 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के लिए दिल्ली में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी और गर्व हो रहा है। खेल, दोस्ती और बेहतरीन प्रदर्शन की भावना से जुड़े 25 कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना हमारे लिए सम्मान की बात है।
0: 2 अगस्त तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में भारत सहित कॉमनवेल्थ के 25 देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
2: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीराबाई चानू को स्कॉटलैंड में हो रहे ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की भारोत्तोलन स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण जीतने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि कॉमनवेल्थ खेलों में लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीतना उनकी असाधारण मेहनत, दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रतीक है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये मीराबाई चानू की शानदार खेल यात्रा का एक और गौरवपूर्ण अध्याय है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 65 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर राजा मुथु पंडी को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि स्वदेशी मिसाइल तकनीक, नवाचार और दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से डॉक्टर कलाम ने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्रियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर सभी जवानों को शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी दिल्ली में आज शाम तेज वर्षा से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के चुनाव में भाजपा पार्षद सत्य शर्मा अध्यक्ष और सत्यपाल सिंह उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली नगर निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
4: ओह लवली, वेल डन।
3: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
4: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
5: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
4: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ। समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
5: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
4: आप कौन?
6: आरबीआई कहता है
7: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के ठीक 8 बज चुके हैं और आपके इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। लेकर कार्यक्रम गीत मालिका हाजिर हूं मैं आपके साथ आपकी दोस्त सविता। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिवादन। और अभिवादन के लिए यही कहना चाहेंगे कि जो आज का मौसम है वो वाकई काफ़ी खुशनुमा है। और ये मौसम हमारे मिजाज को किस तरह से बदल देता है, हम कितने नई नई ऊर्जा से ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं, ये तो सिर्फ मौसम का ही असर होता है। और जैसा कि आज का मौसम है भाई, अभी हम जहाँ पर हैं वहाँ के मौसम की बात की जाए तो वाकई ये मौसम ऐसा है जैसा ये गीत है।

जी हाँ, रिमझिम फुहारें और सावन की बात. बारिश का जब मौसम होता है तो वो हर दिल को बड़ा ही प्यारा लगता है. आज यादों की बात करते हैं, गीतों की बात करते हैं, उन खूबसूरत एहसासों की बात करते हैं जो हर बूंद अपने साथ लेकर आती है. जब भी बूंदें बरसती हैं तो हर किसी को कुछ न कुछ याद ज़रूर आता है. बरसती बूंदें कह रही हैं एक प्यारी सी बात, हर मौसम की अपनी खुशबू, हर बारिश की अपनी सौगात.

वाकई बरसात का मौसम सिर्फ बरसात का मौसम नहीं है, ये कई जज्बातों का मौसम है, ये कई एहसासों का मौसम है। बारिश की हर बूंद कुछ न कुछ पैगाम सुनाती है, किसी के मन को उद्वेलित करती है, किसी को नई यादों में खो जाने के लिए विवश कर देती है। किसी के साथ कुछ भावनाएं याद आ जाती हैं तो किसी के साथ कुछ ऐसा जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। बारिश केवल मौसम नहीं कह सकते, बारिश भावनाओं का उत्सव है। किसानों के लिए उम्मीद तो बच्चों के लिए खेल, प्रेमियों के लिए मुलाकात तो कवियों के लिए प्रेरणा का स्रोत। बारिश की पहली बूंद जब धरती को छूती है तो जो सौंधे सौंधे से महक आती है उसमें लगता है कि जाने कौन ऐसा है जो दिल के इतने करीब है, और इतने खूबसूरती से उसने सावन की उस पहली बूंद से धरती को सींचा है कि मन में सभी भाव एकदम से उमड़ पड़े हैं।

वाकई बारिश की अपनी अलग ही बात है। अगर आपके यहाँ पर भी बारिश हो रही है तो ज़रा खिड़की के बाहर झांके तो जनाब, आपको भी याद आ जाएगी वो प्यारी सी बारिश और उस बारिश से जुड़ी हुई वो याद, चाहे वो बचपन में कागज़ की कश्ती चलाना हो या गर्मा गर्म पकौड़ों का मज़ा लेना, या हो चाय की चुस्कियाँ, या दोस्तों के साथ घंटों बैठकर बातें करना, या सावन की उस बूंद को चेहरे पर महसूस करना जो हमें ये सिखा रही है, ये बता रही है कि ज़िंदगी चलने का नाम है जनाब, इसे चलते जाने दीजिए और चलते रहिए आप भी, क्योंकि मौसम हमें यही कह रहा है कि कुछ भी हो जाए लेकिन प्यार का मौसम कभी नहीं जाता, और जब मौसम से ही प्यार हो जाए तो फिर क्या बात है जनाब।

जी हाँ, एक बरस में मौसम चार होते हैं और इन सभी मौसमों का अपना अलग ही मज़ा होता है। और लेकिन जब बरसात की बात आती है तो भाई रिमझिम बरसे पाने, धरते ओढ़ी नई कहानी, हरियाली की चूनर ओढ़े

मुस्कुराए फिर हर एक डाली। जी हाँ, मुस्कुराहट आ जाती है न सिर्फ चेहरों पर बल्कि उन फूल पत्तों पर भी जहाँ पर बरसात की बूंदें गिरती हैं। ये बरसात की बूंदें हमें ये भी सिखाती हैं कि जिंदगी का नाम चलते चले जाना है। हर बूंद अपनी एक कहानी कहती है। कुछ याद आपको आता है, कुछ याद हमें आता है, कुछ ऐसी भूली बिसरी बातें जो पानी के साथ जुड़ी हों, जो बरसात के जुड़ी हों। लेकिन इस बरसात के साथ में जो सबसे ख़ास बात रहती है वो ये रहती है कि इस बरसात में अपने दोस्तों का साथ बहुत भाता है, और जब दोस्तों का साथ हो जाता है तो मन करता है बादलों को एक बार फिर से यही कहने का कि तुम एक बार फिर से बरस जाओ।

जी हाँ, बहुत ही सुंदर सा गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में। और बारिश की जब बात आती है तो बारिश जो है वो हर किसी के लिए अच्छी होती है, चाहे वो हमारा पर्यावरण हो, हमारा मन हो, हमारे रिश्ते हो या कुछ भी हो। बारिश जब आती है तो सूखे हुए जल स्रोत भर जाते हैं, खेतों को नया जीवन मिल जाता है, पेड़ पौधों में नई जान आ जाती है और तापमान की अगर बात की जाए तो वो भी संतुलित हो जाता है। और ऐसे ही रिश्ते भी संतुलित हो जाते हैं जब बरसात आ जाती है। ये बरसात कई गिले शिकवों को मिटा देती है और जब बरसात आती है तो मन एकदम से खुश हो जाता है और बहुत सारी बातें तो याद आती ही हैं, बहुत सारे साथ को हम मिस भी बहुत करते हैं।

जी साथियों, बारिश जो है हमें सिखाती है कि बादल चाहे जितने भी हों, इसके बाद आसमान ज़रूर साफ होता है। इसी तरह से जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ होती हैं, उसके बाद वो समय भी ज़रूर आता है जब सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं, यानी कि खुशियों की बरसात भी जीवन में ज़रूर होती है। बारिश की हर बूंद यही पैगाम सुनाती है, मुश्किलें चाहे जितनी भी हो, हर रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। और इसी उम्मीद के साथ हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, और जीवन का ये फ़लसफ़ा हमें हर जगह आजमाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी चलने का नाम है रुकना नहीं, झुकना नहीं। जो भी चाहते हैं उसे पूरा करें, अपने दिल में हमेशा एक उम्मीद रखें कि जो आज नहीं हुआ वो हम कल ज़रूर करके दिखाएंगे। बस अपनी लगन से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और सावन की बूंदें भी कुछ ऐसी ही बातें हमें सिखाती है कि ज़िंदगी चलने का नाम है, और जो बादल से गरजते बरसते बूंदें धरती तक आती हैं, वो भी अपनी एक यात्रा को पूर्ण करती हैं। यानी कि उनकी वो यात्रा, जब आसमान से गिरती हुई बूंदें जब बारिश की धरती पर पड़ती है, तो वो उसका सफ़र है, वो उसे तय करता है। और ऐसे ही हमें अपनी ज़िंदगी का सफ़र भी तय करना होगा। फिलहाल तो हम अपने इस कार्यक्रम का सफ़र तय करने का वक्त आ चला है, क्योंकि अब वक्त जो है आपसे आगे बात करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन आपको एक खूबसूरत से गीत के साथ यहीं छोड़े जा रही हूँ। फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और इस बरसात में खूब आनंद लीजिएगा।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार संध्या।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित। एक रिपोर्ट।
3: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
4: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
3: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमार्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं या स्वीकार्य हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इसराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इसराइली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित सभी लोगों के साथ उनकी

0: गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक CRPF कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश के युवाओं को प्रेरित करेगी।

0: ISSF Shooting World Cup in Hangzhou, China today. Isha Singh grabbed the gold in the women's 25-meter pistol event. She upstaged Olympic medalist Manu Bhakar, who took the bronze to complete a double podium finish for India. Benchmark domestic equity indices rebounded today and entered 1% higher. We have a report.
1: The Sensex climbed 776 points to close at 76,836, while the Nifty rose 229 points to settle at 23,996. The broader market at the National Stock Exchange also gained in line with the frontline indices. In the forex market, the rupee appreciated by 67 paise to end at 95 rupees and 89 paise against the US dollar. With Ayushi's report, Gaurang Dhawan Lal for Akashwani News.
0: Indian astronomers, along with their international collaborators, have reported the rare discovery of a blue straggler star, or BSS, caught in the act of formation. This has provided direct evidence of how such stars are created. BSS are a peculiar class of stars found in star clusters that appear hotter, brighter, and more massive than their peers. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Public Examinations Amendment Bill introduced in Lok Sabha proposing stricter action in paper leak cases. Both houses of parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition on alleged police action during protests over neat issue. UP government sets up four-member SIT under IGP to investigate alleged Ram Temple Trust donation embezzlement. Supreme Court directs to include forensic auditor in team. New Delhi summons Ukrainian ambassador, lodging strong protest over death of an Indian national in vessel attack. Deep depression over northwest Bay of Bengal triggers widespread torrential rainfall across Odisha. Orange alert for heavy rainfall issued across North India. And in Commonwealth Games, weightlifter Gyaneshwari Yadav clinches silver in women's 53-kilogram category. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। अवामी इम्तिहानात का तर्मीमी बिल लोकसभा में पेश किया गया है। इस बिल में पेपर लीक मामलात में सख्त तरीन कार्रवाई करने की तजवीज है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई, नीट मामले पर एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान बार बार मुलतवी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट अतियात की मुबैना चोरी की तहकीकत के लिए IGP की क्यादत में एक 4 रुकनी SIT तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने की भी हिदायत दी है। भारत ने यूक्रेन के सफीर को तलब किया और बहरी जहाज पर हमले में एक भारतीय शहरी की मौत पर सख्त एहतजाज दर्ज किया। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर गहरे दबाव के बायस ओडिशा में बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश हो रही है। शुमाली भारत में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और दौलत मुश्तरका गेम्स में वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने खवातीन के 53 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दो नौजवानों की कार्रवाई, नीट मामले पर तालिबे इल्मों के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई से मुतालिक अपोजिशन पार्टियों के शोर शराबे के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में आज अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 पेश किया गया। ये बिल अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम के कानून 2024 में तरमीम करने के लिए है। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऐवान में यह बिल पेश किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अराकीन पर जोर दिया कि वो बिल पर बहस होने दें। उन्होंने कहा कि इस बिल पर बहस के लिए 6 घंटे वक्फ किए गए हैं और 91 तरमीमात मौसूल हुई हैं।
3: देना चाहता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज्यादा अमेंडमेंट का नोटिस भी आए, इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पर हम चर्चा शुरू करें।
2: चूंकि शोर शराबा जारी रहा, इसलिए प्रिसाइडिंग अफसर ने ऐवान की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर

0: की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 एक अहम कानून है जो मुल्क के करोड़ों नौजवानों के मुस्तकबिल, जफाकशी और उम्मीदों से वाबस्ता है।
1: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। सभी मान्य सदस्यों से आग्रह है, इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए।
0: इस दौरान राज्यसभा की कार्रवाई भी इसी मामले पर कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल जब ऐवान की कार्रवाई दूसरी मरतबा मुलतवी किए जाने के बाद दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई तो उमूर दाखिला के वज़ीर मुमलकत ने कौमी तज़ीम की बेहरमती की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 पे बहस के लिए पेश किया। इस बिल का मकसद कौमी तज़ीम की बेहरमती की रोकथाम के कानून 1971 में मजीद तरमीम करना है। मुजवदा कानून वंदे मातरम को कौमी तराने जनगण मन जैसा ही कानूनी तहफ़ फराहम करना चाहता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मानसून इजलास के दूसरे हफ्ते के पहले रोज़ लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बार बार मुलतवी की गई क्योंकि अपोजिशन के अराकीन नीट मामले पर एहतजाज के दौरान तालिब इल्मों के खिलाफ दर्ज की गई FIRs को वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे। लोकसभा की कार्रवाई 4 बार मुलतवी की गई जबकि राज्यसभा की कार्रवाई 5 बार मुलतवी की गई। अपोजिशन के शोर शराबे के माबैन अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। ये बिल अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम के कानून 2024 में तरमीम करने के लिए पेश किया गया है। इस कानून का मकसद एक जामे कानूनी लाहे अमल कायम करने के साथ साथ तालिब इल्मों के मुस्तकबिल को तहफ़ फराहम करके इम्तिहान के निज़ाम में शफाफियत, ईमानदारी और इसके वक़ार को मुस्तहकम करना है। इसमें बहुत सी अहम शिकें हैं जिनमें 10 साल तक की सज़ा, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और कसूरवार ठहराए गए मुजरिमों की इमलाक को जब्त करने समेत सख्त गुंजाइशें शामिल हैं। चेयर और हुकूमत की बार बार अपील किए जाने के बावजूद अपोजिशन के अराकीन दोनों ऐवानों में शोर शराबा करते रहे। चूँकि शोर शराबा और मुखालफत का सिलसिला जारी रहा इसलिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल यानी मंगल के रोज़ दोबारा शुरू होगी। आकाशवाणी न्यूज़ दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट में मौसूल होने वाले अतियात की मुबैना चोरी की जांच के लिए लखनऊ रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किरण एस की सरबराही में एक 4 रुकनी खसूसी तहकीकती टीम SIT तश्कील दी गई है। इस टीम में DIG ओहदे के एक अफसर, एक पुलिस सीनियर सुप्रिंटेंडेंट और एक एडिशनल SP शामिल होंगे। अदालत आलिया ने रियासती सरकार से कहा है कि वो SIT के 5वें रुकन के तौर पर फॉरेंसिक एक ऑडिटर को भी शामिल करे जो 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी पहली रिपोर्ट पेश करेंगे। अदालत की बेंच उन बहुत सी उजरदारियों पर समाप्त कर रही थी जिनमें मंदिर ट्रस्ट के अतियात की चोरी और ऑडिट के इल्जाम के मामले में CBI के जरिए जांच की दरख्वास्त की गई है। इस दौरान आज उत्तर प्रदेश में खसूसी अदालत ने राम मंदिर अतियात की चोरी के मुबैना मामले में तमाम 8 मुलजमीन की अदालती तहवील में 14 दिन की तौसी कर दी है। वजारत खारजा ने एक तजारती जहाज MV ओमोरफी पर हमले के बाद आज भारत में यूक्रेन के सफीर डॉक्टर ओलेग्जेंडर पोलिशकुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हो गया है। इस वाक़े पर उन्हें अपनी शदीद तशवीश से आगाह करते हुए वजारत ने सख्त अल्फाज में तजारती जहाज़ों पर इस तरह के हमलों की मजम्मत की है। वजारत ने बहरी जहाज रानी के तहफ़ जहाज रानी की आज़ादी और बैन अवी तजारत पर इन हमलों के मनफी असरात को उजागर किया। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि सफीर से दरख्वास्त की गई है कि वह यूक्रेन के हुकाम को तजारती जहाज़ों को निशाना बनाने पर भारत की शदीद तशवीश से आगाह करें। वजारत ने यादा किया कि इस तरह की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जहाज़रानों की जिंदगियां खतरों में पड़ जाती हैं। इस तरह की कार्रवाइयां नाकाबिल कबूल हैं और इनसे बचना चाहिए। सऊदी अरब ने आज कहा कि उसने इराक में ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशिया की जानिब से दागे गए ड्रोन्स मार गिराए हैं। सोशल मीडिया पर सऊदी वजारत दिफा का बयान आज ऐसे वक्त पोस्ट किया गया जब अमरीका और ईरान ने हफ्तों की कशीदगी के बाद गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में एक दूसरे पर हमले रोक दिए हैं। बयान में मजीद कहा गया कि इन ड्रोन्स में मशरक़ी सऊदी अरब और राजधानी रियाज में पेट्रोलियम

0: मराकिज को निशाना बनाया। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने चीन के अपने दौरे का आगाज आज सीपीसी बैनुल अक्वामी महकमे के नायब वजीर सन हयान के हमरा मीटिंग के साथ किया। उन्होंने लीडर सतह की रहनुमाई, तरजीही मामलात और वसीतर सियासी, अवाम से अवाम, तालीमी और थिंक टैंक तबादलों के जरिए बाहमी ताल्लुकात को बेहतर करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और चीन के दरमियान नथुला पास के जरिए सरहदी तिजारत अगले महीने की पहली तारीख से दोबारा शुरू हो जाएगी। ये तिजारत कोविड-19 वबा के बाद साल 2020 से मुअत्तल थी। तिजारत दोबारा शुरू होने की तकरीब में तवक्को है कि दोनों मुल्कों के हुकाम शिरकत करेंगे। तवक्को है कि तिजारत के दोबारा शुरू होने से सरहद पार की तिजारत को फ़रोग मिलेगा, जिससे इंदराज शुदा ताजिरों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स और मुंसलिक कारोबारियों को फ़ायदा पहुँचेगा। ओडिशा शदीद मानसून से दोचार है, क्योंकि बुहरे बंगाल पर बने गहरे दबाव की वजह से रियासत भर में मूसलाधार बारिश हो रही है। ओडिशा के कई ज़िलों से ताज़ा सैलाब, पानी भर जाने, फसलों के नुकसान और बुनियादी ढांचे के नुकसान की खबर है। रियासती हुकूमत ने तैयारी और आफात से निमटने के इकदाम को मुस्तहकम करते हुए ज़िला इंतजामिया को सूरत हाल से निमटने के लिए 24 घंटे अलर्ट पर रखा है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: बहिरे बंगाल पर बने गहरे दबाव की वजह से उड़ीसा भर में मूसलाधार बारिश हो रही है। ताज़ा सैलाब आ रहे हैं, जिससे मुख्तलिफ ज़िले शदीद तौर पर मुतासिर हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने इस महीने की 30 तारीख तक रियासत के मयूरभंज, क्योंझार, बालासोर, भद्रक, जयपुर, देवगढ़, अंजुल, ढेनकनाल, सुबर्णापुर, बौद्ध, नौपारा और बलांगीर में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। भद्रक ज़िले की 7 ग्राम पंचायतों में सैलाब जैसी सूरत हाल बरकरार है, जबकि सुबर्णापुर ज़िले से फसलों के बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। रियासत के महसूल और कुदरती आफात से निमटने के वजीर सुरेश पुजारी ने आला सतह मीटिंग की सदारत करते हुए सभी ज़िला इंतजामिया को हाई अलर्ट के दौरान 24 घंटे चौकसी बरतने और राहत और बचाव के फौरी इकदाम को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। उड़ीसा से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में कल शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने साहिली कर्नाटक, वस्ती महाराष्ट्र, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक और विदर्भ में भी कल इसी तरह के मौसमी हालात रहने की पेशगोई की है। उत्तराखंड हुकूमत ने अपने सभी ज़िलों की इंतजामिया को अलर्ट पर रहने की हिदायत दी है। उत्तराखंड हुकूमत ने चारधाम यात्रियों, सयाहों और रिहायशियों को सफ़र से पहले मौसम से मुतालिक अपडेट हासिल करने का मशवरा दिया है। इधर आसाम में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है, क्योंकि ज़्यादातर इलाकों में पानी की सतह कम हुई है। फिलहाल आसाम में 37,000 से ज़्यादा अफराद अब भी 109 राहत कैंपों में क़याम पजीर हैं। ओडिशा के पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा की सालाना इख्तितामी रस्म नीलाद्री बीजे आज मनाई जा रही है। ये पवित्र तकरीब भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के मंदिर के गर्भगृह में वाक़ रत्न सिंहासन पर रस्मी वापसी की अलामत है। पुरी में लाखों अकीदतमंद इस अजीमोशान वापसी के शाहिद बनने के लिए जमा हुए हैं, जो रथ यात्रा तकरीबात का अजीमोशान इख्तिताम है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ये रस्म बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये इस बात की अलामत है कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के बाहर लोगों से मिलजुल कर फातिहाना तौर पर अपनी अवधि पनाहगाह में वापस लौट आए हैं। भगवान जगन्नाथ का देवी लक्ष्मी को मुकद्दस रसगुल्ला पेश करना इस तकरीब का सबसे अहम लम्हा होता है। रसगुल्ला पेश करना खुशनूती और सुलह आश्ती की अलामत है। इसके बाद देवी लक्ष्मी मंदिर के दरवाजे खोल देती हैं, जो माफ़ी, हम आहंगी की बहाली और मोहब्बत की फतेह की अलामत है। नीलादरी बीजे के साथ रथ यात्रा का ये मुकद्दस सफ़र अपनी मजहबी तकमील को पहुंचता है। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज़।
0: दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस रहनुमाओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की उस अर्जदाश्त पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया है, जिसमें ट्रायल कोर्ट की जानिब से नेशनल हेराल्ड से मुतालिक काले धन को जायज़ बनाने के केस में इन रहनुमाओं के खिलाफ दायर करदा ईडी की फर्द जुर्म पर समाअत करने से इनकार कर दिया था। जस्टिस मनोज जैन ने जवाब दहिंदा की जानिब से जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगे जाने के बाद मामले की अगली समाअत के लिए 10 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। असातेज़ा की अहलियत से मुतालिक महाराष्ट्र के इम्तिहान के पेपर लीक मामले के अहम मुलजिम ने आज भिवंडी की एक अदालत के सामने

0: ने खुद सुपुर्दगी कर दी। इसके साथ ही इस मामले में मुलजिमीन की तादाद 15 हो गई है। इम्तिहान में हुई बेजाब्तगी की पुलिस जाँच कर रही है। भारत की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने आज ग्लासगो में मुनक़िदा दौलत मुश्तरका खेलों में खवातीन के 53 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। एशियन चैंपियनशिप में कांस्य का तमगा जीतने वाली ज्ञानेश्वरी ने स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाया, जिसके साथ उनका मजमुई वजन 199 किलोग्राम रहा। नाइजीरिया की ओनोम डीडी ने कॉमनवेल्थ और गेम्स रिकॉर्ड के साथ 206 किलोग्राम का वजन उठाकर सोने का तमगा जीता है। जीत के बाद भारत की तमगों की तादाद 5 हो गई है, जिनमें सोने का 1, चांदी के 3 और कांसे का 1 तमगा शामिल है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में मुनाक़िदा दौलत मुश्तरका खेल 2026 में वेटलिफ्टिंग के जुमरे में चांदी का तमगा जीतने पर भारतीय वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव को मुबारकबाद पेश की है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। अवामी इम्तिहानात का तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया गया है। इस बिल में पेपर लीक मामलात में सख्त तरीन कार्रवाई करने की तजवीज़ है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट मामले पर एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान बार बार मुलतवी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट अतियात की मुबैना चोरी की जाँच के लिए IGP की क्यादत में एक 4 रुकनी SIT तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने की हिदायत दी है। भारत ने यूक्रेन के सफीर को तलब किया है और बहरी जहाज पर हमले में एक भारतीय शहरी की मौत पर सख्त एहतजाज दर्ज किया है। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर गहरे दबाव के बायस ओडिशा में बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश हो रही है। शुमाली भारत में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज हम मच्छरों से होने वाले रोगों और उनके उपचार पर चर्चा करेंगे। मच्छरों से होने वाली बीमारियां भारत सहित दुनिया भर में जन स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ये वो रोग हैं जो वायरस, बैक्टीरिया या परजीवियों के कारण होते हैं और वाहकों के माध्यम से मनुष्यों तक पहुँचते हैं। ये वाहक आमतौर पर मच्छर, टिक, सैंडफ्लाई और पिस्सू जैसे कीड़े या ऑर्थोपॉड होते हैं, जो संक्रमित जीव से रोगाणु ग्रहण करते हैं और उन्हें दूसरे जीव तक पहुंचाते हैं। सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले संक्रमणों के विपरीत मच्छरों से होने वाले रोग संचरण के लिए इन वाहकों पर निर्भर करते हैं। इन बीमारियों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला ज्वर, जापानी एंसेफेलाइटिस, जीका, स्क्रब टाइफस आदि हैं। बारिश के मौसम में और बारिश के बाद इन बीमारियों का संक्रमण बढ़ जाता है, पर डेंगू का संक्रमण बारिश के अलावा अन्य मौसम में भी देखा जा रहा है। इन बीमारियों से बचने के उपाय और उपचार पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अक्षय धारीवाल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। नंबर है 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। आप हमारे एक्सेंडल @YARNewsAlerts पर भी #AskYAR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। सबसे पहले धारीवाल जी, ये बताइए कि मच्छर से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं?
2: देखिए, मच्छर विभिन्न प्रकार के होते हैं। मैं बात वहाँ से शुरू करना चाहूँगा और उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो समय आपने रखा है वो बड़ा उपयुक्त समय है, क्योंकि अभी बारिशें चल रही हैं और बारिशों की वजह से पानी इकट्ठा होता है और ये जितने मच्छर जनित रोग हैं

0: मच्छरों की आप लोग देखते होंगे कि संख्या बढ़ जाती है इन दिनों में, तो उसका कारण का अपने को समझना है आज के कार्यक्रम में, और उससे जो होने वाले रोग हैं वो जैसा बताया गया कि कुछ वायरल डिजीज़ हैं उसमें मुख्य डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानीज इन्केफेलाइटिस है, और पिछले कुछ सालों से जिका नाम की बीमारी भी जो है वो अपने देश में रिपोर्ट हुई हैं।
1: जी
0: और कुछ ऐसी जो है वो डिजीज़ेस हैं जो वनवासी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, जैसे मलेरिया है।
1: जी
0: मलेरिया एक प्रोटोजोअल डिजीज़ है और फाइलेरिया है, उसका वैसे बारिशों से संबंध नहीं होता। और जो एक नाम लिया गया कालाजार, वो भी जो है वो ज़रूरी है, लेकिन उसका भी बारिशों से कोई ऐसा संबंध नहीं है, वो अलग उसका कीटाणु है, अलग कीट है उसका,
1: जी
0: सैंड फ्लाई का नाम जैसे आपने लिया, वो उससे जो है वो होता है। और ख़ास करके बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कालाजार, और उसके लिए उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है। और लगभग अच्छी बात है कि भारत ने लगभग लगभग उस पर विजय प्राप्त कर ली है, और उसका जो WHO का सर्टिफिकेशन है हमारा वो हो जाएगा। तो मुख्य बात है कि मच्छर जो है वो इसमें तीन कैटेगरी में रखना चाहूँगा मैं। एक मच्छर जो दिन के समय काटते हैं
1: जैसे डेंगू के
0: जैसे डेंगू का है, डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर का नाम आम बोलचाल की भाषा में टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है इसको, जिसको कोई भी व्यक्ति देख करके पहचान सकता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल डॉक्टर ही जो है वो पहचानेंगे या जो है वो जो विशेषज्ञ हैं वही पहचानेंगे, उसमें स्ट्रिप्स होती हैं, जैसे टाइगर के शरीर में स्ट्रिप्स होती हैं, वाइट ब्लैक इसी तरह की, तो इसलिए उसको टाइगर मॉस्किटो कहा जाता है, और वो दिन के समय काटता है, ये इसमें मुख्य बात है।
1: जी
0: और बाकी जो मच्छर होते हैं वो डॉन और डस्क कहा जाता है, कि
1: जो रात के
0: संध्या के समय पर या जो है वो प्रातःकाल
1: अर्ली मॉर्निंग
0: अर्ली
1: जी
0: मॉर्निंग का। और तीसरी कैटेगरी होती है जो मिडनाइट में काटने के लिए आते हैं, और ख़ास करके
1: शिफ्ट में आते हैं
0: वो, तो इन लोगों में भी मच्छरों में मतलब एक कि उन्होंने अपना समय बांट रखा है, तो ये एक समाज के लिए मैसेज भी है कि देखिए वो अपनी जो है वो प्रजाति को बरकरार रखने के लिए कोई दिन में आता है, क्योंकि ज़रूरत क्यों पड़ती है उनको, मानव के खून की या पशु के खून की ज़रूरत मच्छरों को इसलिए पड़ती है कि उनको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजाति जो है वो चालू रखने के लिए कोई ना कोई, किसी ना किसी का खून चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल आदमी का ही, व्यक्ति का ही खून जो है वो काम करेगा। जानवरों में उनको जो है वो जूफिलिक जो है वो मच्छर कहा जाता है, कि वो जानवरों पर ज़्यादा जो है वो निर्भर करते हैं। तो ये मुख्य बात अपने को ध्यान रखनी है कि मच्छर दिन में काटने वाले डेंगू करेंगे, और जो सुबह और शाम करने वाले हैं वो ज़्यादातर मॉस्किटो न्यूसेंस मॉस्किटो कहलाते हैं, वो नहीं करते हैं बीमारी, नहीं जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। और ख़ास करके जो नालियाँ वगैरह होती हैं, गंदा जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें उसकी ब्रीडिंग जो है वो ज़्यादा होती है। जो डेंगू का मच्छर होगा वो साफ पानी में, और छोटे छोटे से आपके जैसे बॉटल, बिस्लरी की बॉटल है या कप है,
1: उसमें भी
0: उसमें पानी भी
1: पनपते हैं।
0: इकट्ठा हो गया, तो उसमें भी ब्रीडिंग,
1: तो
0: और 7 दिन लगते हैं उसमें।
1: डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया सब में तेज़ बुखार आता है, लेकिन अलग अलग हम कैसे पहचानेंगे, लक्षण क्या होते हैं अलग अलग उनके?
0: देखिए डेंगू का लक्षण एक आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर, कि उसमें बुखार बहुत तेज होगा और उसके साथ उसको बॉडी एक जो है वो बहुत सीवियर होगा, और उसमें एक ख़ास लक्षण होता है कि रिट्रो जो आईज़ हैं, आई बॉल, उसके चारों तरफ जो है वो दर्द जो है वो रहता है, और चकत्ते हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक डेंगी में ख़ास करके ये संभावना होती है कि खून वगैरह निकल सकता है।
1: और चिकनगुनिया में
0: चिकनगुनिया में जोड़ों का दर्द जो है वो होता है बुखार के साथ में।
1: और मलेरिया में डॉक्टर पीयूष
2: जी ये

0: तीनों बुखार जो हैं पोस्ट मानसून सीज़न में पाए जाते हैं। अगर पहला बुखार बहुत तेज़ हो, जैसे बुखार शुरू हुआ और बहुत तेज़ बुखार हुआ और शरीर पे लाल रंग के रैसेस हुए और जैसा सर ने बताया कि ये तेज़ दर्द के साथ अगर ये होता है तो ऐसा माना जा सकता है कि ये डेंगू हो सकता है। आंखों के पीछे का दर्द इसका ही है। मलेरिया में बुखार पैरोक्सिज्म में आता है, यानी कि थोड़े समय तक बुखार आया, जारा कपकपी के साथ बुखार आया, ठीक हो गया। और अगर चिकनगुनिया में जो जोड़ों में दर्द होता है वो बुखार के बाद के समय में पाया जाता
1: मतलब बुखार ठीक होने के बाद
0: के
1: दर्द
0: बाद में,
1: होता
0: ये
1: है।
0: लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन जो दीर्घकालिक जो जटिलताएं के रूप में हम लोग इसे कहते हैं।
1: अच्छा, हमारे एक श्रोता जुड़ चुके हैं, योगेश जांगरे छत्तीसगढ़ से। योगेश जी
2: जी नमस्ते।
1: नमस्ते। योगेश जी अपना सवाल पूछिए।
2: हम ये जानना चाहते हैं, दो प्रश्न हैं।
1: जी
2: पहला ये है कि ये मच्छर जनित रोग क्या जानलेवा भी हो सकते हैं? और दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे आसपास की साफ सफाई में हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है?
3: देखिए, जहाँ तक योगेश जी जानलेवा की बात है तो ये बीमारियाँ, और क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से आते हैं और छत्तीसगढ़ में खास करके मलेरिया का प्रकोप पहले बहुत होता था, और आपको शायद जानकारी होगी। आप कौन से ज़िले के हैं छत्तीसगढ़ में?
1: अभी हमारा संपर्क उनसे
3: अच्छा,
1: टूट गया,
3: कोई बात
1: हालांकि वो
3: नहीं।
1: हमें सुन पा रहे हैं। आप अपनी बात जारी रख सकते हैं। जी
3: छत्तीसगढ़ में मलेरिया का जो उन्मूलन प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत जो बेड नेट्स हैं, मच्छरदानी है, और मच्छरदानी में भी ऐसी जिसमें कीट जनिक पदार्थ जो है वो रखा रहता है, लगा रहता है, इसको हम लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स बोलते हैं, उसके द्वारा मलेरिया की काफ़ी कमी आई है। लेकिन जो आपका मुख्य प्रश्न है कि जानलेवा ये हो सकती है यदि जो है वो समय पर दवाई जो है वो ना ली जाए। इसी तरह से डेंगू में भी जानलेवा हो सकता है, बहुत कम केसेस में इस तरह के जो है वो लक्षण होते हैं, और चिकनगुनिया तो नहीं जो है
0: कम ही
3: वो
0: है।
3: बहुत
0: एक
3: कम
0: मोटे
3: होता
0: आंकड़े
3: है।
0: के तौर पर अगर देखा जाए तो एक एक से लेकर के 3% तक, जी ये डिपेंड करता है कई सारे चीज़ में कौन से स्पीसीज में है, तो मलेरिया और डेंगू जो हो है वो जानलेवा हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर धारीवाल सर ने भी कहा, इसके लिए ज़रूरी है अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली रिकॉग्निशन, यानी जल्द से जल्द इसे पहचाने और उपयुक्त इलाज इसका करें।
1: तो क्या जो नियमित रक्त जांच होती है उससे शुरुआत में पता चल जाएगा
0: जी
1: संक्रमण
0: हाँ
1: का?
0: जी हाँ, ये जैसे मूल तौर पे डेंगू और मलेरिया की बात करें तो दोनों में खून के जांच के द्वारा इसका पता चल सकता है। किस दिन बुखार के किस दिन कौन सी जांच कराई जाए, यह जांच अलग अलग होता है, तो उसके अनुसार हमें पता चल सकता है। और अब तो कई तरह के रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स अवेलेबल हैं जिसमें कि ये जिसकी कि सेंसिटिविटी जो है 80-90% तक ऐसा रहता है, या इससे भी ज़्यादा कई केसेस में होता है, जिसमें कि हम लोग बफ़ीकोट और जो अगर उसे अगर इसे माइक्रोस्कोप के अंदर में थिक एंड थिन स्मियर के द्वारा देखते हैं, तो ये सारी जांच बड़े प्रामाणिक हैं और बिल्कुल आसानी से आपके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। तो बारिश के मौसम के बाद जब कभी भी आपको बुखार और उसके लक्षण, जिसकी चर्चा हम लोग कार्यक्रम में आगे करेंगे, अगर आपको वैसा हो तो आप नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के अपने डॉक्टर की सलाह पर ही आप उपयुक्त जांच करवाएं, और जांच के अनुसार जो उसका उपयुक्त इलाज है वो अगर आप करते हैं तो इसमें जो हम लोग जो मॉर्बिडिटी यानी आपके शरीर को होने वाले नुकसान को और जान को होने वाले खतरे को बिल्कुल शून्य के बराबर कर सकते हैं।
1: विपिन
3: अभी
1: है जी।
3: एक योगेश जी का एक प्रश्न और था
1: जी जी
3: कि हमारा नागरिक होने के नाते क्या कर्तव्य है इन बीमारियों से बचने का। तो उसमें एक संदेश मैं देना चाहूँगा इस कार्यक्रम के द्वारा कि सप्ताह में एक दिन, ये जो आजकल का मौसम चल रहा है मानसून का, पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दें। हफ्ते में एक बार, चाहे जो भी आपको ठीक लगे, वो नागरिक जो है वो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से डिसाइड करके, और घर के आसपास जो डेंगू का मच्छर होता है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जो है वो जा सकता, केवल मीटर्स में ही उसकी जो है वो फ्लाइट रेंज होती है, इसको फ्लाइट रेंज बोलते हैं हम। तो घर और घर के आसपास यदि जो है वो हम हफ्ते में एक बार एक नियम बना लें कि परिवार के लोग निकलें और जो है वो ये देखें कि कहीं कोई कंटेनर तो नहीं पड़ा रह गया, कोई बॉटल तो नहीं पड़ी हुई है, कोई प्लास्टिक का कप तो नहीं पड़ा है, कोई प्लास्टिक का सामान तो नहीं पड़ा है, छत पर कोई ट्यूब वगैरह

0: तो नहीं पड़ी है, टायर वगैरह तो नहीं पड़ा है, उसको जो है वो खाली कर दें,
1: और कूलर की
0: और
1: सफाई भी बहुत
0: कूलर
1: जरूरी
0: की
1: है,
0: सफाई में उसमें रगड़ना जरूरी है,
1: सिर्फ पानी सुखाना ही नहीं, रगड़ना भी जरूरी
0: रगड़ना
1: है।
0: जरूरी है। उसके पीछे साइंस ये है कि अंडा जो है वो चिपका रह जाता है दीवार से, और इसमें मच्छरों के जो अंडे होते हैं उसके द्वारा भी एक से दूसरे मच्छर को भी बीमारी जो है वो जा सकती है, जिसको हम ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन कहते हैं। तो ये एक संदेश
1: जी,
0: है।
1: विपिन
0: विपिन
1: है सागर मध्य प्रदेश से।
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते विपिन जी।
2: मेरा सवाल ये था कि डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी जो तीनों बीमारियां हैं, क्या इनका होने का कारण एकमात्र मच्छर ही होता है, या फिर कोई अन्य कारण से भी ये बीमारियां हो सकती हैं, या फिर किसी को बीमारी हुई है तो फिर मच्छर काटने से ही होती है? थैंक यू।
3: देखिए, विज्ञान के तौर पर अगर हम लोग बात करें तो डेंगू और चिकनगुनिया ये एक वायरस की ये के द्वारा ये होता है, और मलेरिया जो है एक पारासाइट की वजह से होता है। मच्छर सिर्फ इसे एक जगह से दूसरे जगह फैलाते हैं, तो ये ट्रांसमिशन कराते हैं, और मच्छर काटने की वजह से यह मूल तौर पर होता है।
1: देशदीप दास है हमारे साथ अब, यह है केंद्रापाड़ा ओडिशा से। जी
2: नमस्ते
1: नमस्ते।
2: जी।
1: नमस्ते
2: नमस्ते जी। नमस्ते जी।
1: जी, आप अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं।
2: मेरा सवाल है, वेक्टर जनित रोगों का कारण क्या है?
0: देखिए,
1: आप प्रोग्राम सुन रहे हैं
3: कार्यक्रम के शुरू में हम लोगों ने इसके
1: तो
3: संबंध
1: हम
3: में
1: अभी तक
3: विस्तृत
1: यही
3: चर्चा
1: चर्चा
3: की
1: कर रहे थे, फिर भी संक्षेप में
3: जी।
1: एक बार फिर से बता दीजिए।
0: देशदीप जी, जो वेक्टर एक शब्द है जो हम लोग मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं, बाकी ये जो है वो जो आर्थ्रोपोड्स या कीट होते हैं जिसमें मच्छर आता है, मक्खी आती है, प्लेग का जैसे पिस्सू जो है वो जिसको ये कहा जाता है, जो इसके ऊपर रहता है, चूहे के ऊपर रहता है, और स्क्रब टाइफस का एक माइट्स होता है, छोटा छोटे जो है वो कीटाणु होते हैं, उनसे होने वाले रोगों को वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कहा जाता है।
1: अमित उपाध्याय हैं अब फोन लाइन पर सासाराम बिहार से। अमित जी, क्या कहना चाहते हैं आप?
2: जी, मैं अमित उपाध्याय बोल रहा हूँ सासाराम बिहार से। मैं
1: जी
2: ये मेरा ये सवाल था कि हर एक साल हम लोग देखते हैं कि हर एक जगह बाढ़ आता है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हमेशा मच्छर का प्रकोप ज्यादा रहता है, और वैसे भी जो छोटे मोटे जो बरसात के दिनों में और भी जगह होता है, तो हम लोग इसमें कुछ नए नए इतना टेक्नोलॉजी हम लोग अपडेट हो गया है, चाहे बहुत सारा हम लोग उपग्रह वैसा छोड़ते हैं, तो कुछ हम लोग ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं क्या, कुछ ठोस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि इसमें कुछ ठोस हम लोग मच्छर को लेकर एक ऐसा कुछ बना दिया जाए ताकि उसको कुछ मारा जा सके, या कुछ वैसा कुछ दवाई या प्रयोग करके, ताकि उसको कुछ मतलब परमानेंटली कुछ सोल्यूशन हो जाए, खासकर बरसात के मौसम में 4-5 महीने
1: तो नहीं हो
2: जो
3: अमित जी,
1: सकता।
3: आपका विचार बहुत उत्तम है। शायद अगले कुछ वर्षों में या फिर अगले कुछ दशकों में इस संबंध में भी कुछ नई चीज़ें जो बायोटेक्नोलॉजी इसके माध्यम से हो सकता है, लेकिन जब तक तब तक के लिए जैसा कि कार्यक्रम के दरमियान में डॉक्टर धारीवाल वाल साहब ने आपको बताया है कि सप्ताह में एक बार अपने आसपास 1 किलोमीटर तक, 500 मीटर तक आप जाएं, जहां कहीं भी जल जमाव की समस्या हो तो उसको आप ठीक करें, आसपास सफाई रखें। वर्तमान समय में यह सबसे उचित और कारगर उपाय है, और पोस्ट जो बरसात के समय में जो है वो पर्सनल प्रोटेक्शन करें, यानी कि पूरी बाजू वाले ये कपड़े पहनें, घर के बाहर जब कभी भी ये निकले तो मॉस्किटो रिपेलेंट लें, और जिन क्षेत्रों में मच्छरों का ज़्यादा प्रकोप है वहाँ पर आप मच्छरदानी का प्रयोग करें। अब तो इंसेक्टिसाइड से जो अप्लाइड जो ये मॉस्किटो नेट रहता है, जो मच्छरदानी रहता है, उसका प्रयोग करें। इन सभी के प्रयोग के माध्यम से हम लोग मच्छर के काटे जाने के कारण जो कोई भी बीमारी होता है उसकी संख्या में को नियंत्रित कर सकते हैं।
1: ये बात ये भी कर रहे थे कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि वहाँ सरकार कुछ करे मच्छरों से
3: जी
1: बचाव के लिए, क्योंकि छोटे स्केल पर तो लोग कर सकते हैं, लेकिन बड़े स्केल पर तो सहयोग चाहिए।
0: नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, और इसमें अमित जी का जो कहना है बाढ़ वाला, तो उसमें एक थोड़ा सा मैं साइंटिफिक फैक्ट्स रख दूं सामने कि जब बाढ़ आती है तो ये जितने ब्रीडिंग प्लेसेस होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, तो शुरू में तो ये मच्छर जनित रोग जो हैं वो कम होते हैं बाढ़ वाले में, लेकिन उसके बाद जब
1: जब
0: पानी
1: पानी घटता
0: रिसीट कर
1: है
0: जाता है, हाँ, और
1: तब
0: पानी
3: जब
0: जब
3: जमा हो
0: इकट्ठा हो
3: जाता है।
0: जाता है
1: हाँ,
0: और खास करके छोटे छोटे पोखर जो बन जाते हैं,
1: जो रुक जाता है पानी,
0: जो रुक जाता है पानी उसमें यदि 7 दिन से ज़्यादा का होगा तो उसमें मच्छर होगा, और फिर उसका एक अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है
1: 7 डेज।
0: तो लगभग लगभग ये 7 डेज का उसका एडल्ट निकलने का टाइम और उसको इन्फेक्ट होने का टाइम, और उसके बाद जो है वो व्यक्ति को वो काटेगा तब जो है वो। तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से पूरी जो है वो इसमें विज्ञान की तरफ जो सैटेलाइट की बात की इन्होंने, तो वो सैटेलाइट से वो एरिया इंगित कर लिए जाते हैं और उसमें फिर विशेष खास करके इंसेक्टिसाइड्स का जो है वो स्प्रे वगैरह किया जाता है, जैसे पहले DDT का होता था, आजकल DDT क्योंकि बैन हो गई है और उसकी जगह दूसरे केमिकल जो सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप के वो हैं उनका स्प्रे होता है और उसका प्रभाव काफ़ी समय के लिए रहता है। तो सरकार की तरफ से ये सुविधा की जाती है।
1: हमारे अगले श्रोता हैं चौधरी महेंद्र सिंह, मथुरा उत्तर प्रदेश से। जी चौधरी जी, आप जी अपना सवाल पूछिए।
4: जी आदरणीय आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय नमस्कार।
0: नमस्कार
4: सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये डेंगू की बीमारी है, ये नर के काटने से फैलती है या मादा के से, और इसके लक्षण क्या है जब ये काट लेता है मच्छर का?
1: डेंगू के लक्षण तो हम बता ही चुके हैं।
3: डेंगू के लक्षण ये मादा मच्छर के काटने की वजह से होता है, तेज बुखार होना, शरीर में दर्द होना, आंखों के पीछे में दर्द होना, ये इसके प्रमुख लक्षण है।
1: डेंगू के प्रिवेंशन के लिए ड्राई डे का जो कॉन्सेप्ट है, जो आप जिसके बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा और बताइए।
0: देखिए इसमें इसके पीछे जो विज्ञान है वो ये है कि जो मच्छर का लाइफ साइकिल है वो यदि पकड़े अपन एडल्ट यदि पकड़ते हैं तो एडल्ट अंडे देता है और वो पानी में देता है, वो लार्वा में कन्वर्ट होता है और फिर वो लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट होता है और प्यूपा से वो इमर्ज होकर के फिर एडल्ट होता है जो काटता है। तो ये सारी प्रक्रिया में अंडे से लेकर के और एडल्ट बनने तक लगभग लगभग 7 दिन का समय लगता है। ऐसा नहीं है कि मच्छर ने आज अंडा दिया और वो एडल्ट बन जाएगा। तो इसलिए ये 7 दिन का कंसेप्ट आया है कि यदि पानी आपका 7 दिन से ज़्यादा खड़ा रहा है किसी भी जगह पर, चाहे वो आजकल जैसे प्लास्टिक ये चाय के कप्स वगैरह जो है वो मैं देखता हूँ जगह जगह जो है वो छोड़ देते हैं और उसका फिर कलेक्शन नहीं होता, तो बारिश हो जाती है तो उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसमें खास करके ये डेंगू के जो मच्छर हैं, एडीज मॉस्किटो जिसको बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटोज, वो जो है वो, तो इसलिए वो 7 दिन वाला कंसेप्ट जो है वो आया है।
1: हमारे अगले श्रोता हैं राकेश शिमला से।
5: जी नमस्कार, मैं राकेश वाकरव को छाई शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
5: जी, तो मेरा सवाल ये है कि जैसे डेंगू मलेरिया जो है, अगर आप बच्चों को काटा है, क्योंकि छोटे बच्चों को ज्यादा बुखार से नहीं कर पाते हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए ताकि बच्चों को अगर मच्छर से बचाना हो?
0: राकेश जी, बच्चों को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके लिए ये जो है वो एक तरीका ये होता है कि दिन के समय में, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि डेंगू का जो मच्छर है वो दिन के समय काटता है, तो छोटी जो मच्छरदानी आती है उसमें बच्चे को सुलाएं और बच्चे को कपड़े ऐसे पहनाएं कि उसमें मच्छर के खुला शरीर जो है वो ना रहे। और तीसरी बात ये कि जो है वो जालियों का, घरों में जालियों खिड़कियाँ खुली नहीं होनी चाहिए, और ख़ास करके शिमला के क्योंकि आप हैं और क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का जो विषय चल रहा है उसकी वजह से भी ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश अब जो है वो अछूता है।
1: कई पहाड़ी जगहों पर भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, नागालैंड में भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: पीयूष जी, ये बताइए कि डेंगू को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो क्या क्या हैं? जैसे प्लेटलेट्स को लेकर ही काफ़ी बातें की जाती है कि इसे बढ़ाने के लिए घरेलू उपचार करो, कितना सच है, कितना कारगर है ये?
3: देखिए डेंगू को लेकर के 3-4 मुख्य भ्रांतियां हैं। सबसे पहले ये कि डेंगू के इलाज में सिर्फ प्लेटलेट ही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं रहता, किसी भी मरीज को या डेंगू के सीजन में हर कोई प्लेटलेट को लेकर के बड़ा जब बहुत ज़्यादा पैनिकी होता है,
1: रोज़ की संख्या देखी जाती है,
3: रोज़ उसकी संख्या देखी जाती है, तो सबसे पहले प्लेटलेट की संख्या महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इसकी संख्या बुखार ठीक होने पर यानी 5 से 7 दिन या उसके बाद में यह महत्वपूर्ण रहता है। शुरुआती समय में बुखार का नियंत्रण करना यह ज़्यादा ज़रूरी रहता है और इस दौरान हाइड्रेशन का अप्रोप्रिएट होना यह ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और इस दौरान अगर ब्लड की जाँच भी कराई जाती है तो ब्लड में जो है पैक्ड सेल वैल्यू यानी हिमेटोक्रिट की जो वैल्यू देखी जाती है वह महत्वपूर्ण रहता है। तो सबसे पहले जब कभी भी डेंगू या इसकी संभावना अगर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल नाम की ही दवा लेनी चाहिए। डिक्लोफिनैक या निमोसिलाइड या ऐसे दूसरी कोई भी और दवाई जो लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बाद में प्लेटलेट की संख्या कम होती है। पहली बात, शुरू के समय में जब बुखार बहुत तेज हो तो पैरासीटामोल भी एक डेफिनेट डोज तक दिया जा सकता है,
1: जैसे
3: कि 500 से लेकर के 1 ग्राम, एक दिन में मैक्सिमम 3 ग्राम तक एडल्ट आदमी को दिया जा सकता है। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ ये रेडियो पर सुन करके लोग खुद का इलाज ना करें, ये सिर्फ एक बताने के लिए डॉक्टर के पास जा करके करें। और अगर बुखार उस समय ठीक ना हो तो फिर वो टेपिड वाटर से स्पॉन्जिंग करें, नंबर एक। नंबर दो ये हुआ कि प्लेटलेट की संख्या को लेकर के बहुत ज़्यादा ना घबराएं। ऑल्दो 1 लाख से कम की संख्या को हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, लेकिन सीवियर टाइप ऑफ ब्लीडिंग की संख्या, ये ब्लीडिंग की संभावना बढ़ने के लिए 10,000 या उससे कम के लेवल पर ही प्रोफाइलेक्टिक प्लेटलेट को चढ़ाने की ये के इंडिकेशन बनते हैं।
1: 10,000 से ऊपर हो तो जरूरत
3: तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हॉस्पिटल के में सेटअप में अगर आपको कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं हो रहा है तो वो और ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर टू ये बात हो गया। नंबर तीन, किसी भी भोज्य पदार्थ के खाने से, जैसे लोगों के मन में ऐसा रहता है कि बकरी का दूध या फिर पपीते के पत्ते या छाला, ये पीने की वजह पीने से जो है प्लेटलेट की संख्या बढ़ती है। मैं इस बात को बिल्कुल पुरजोर ढंग से कहना चाहूँगा कि यह एक भ्रम है। किसी भी तरह के भोजन के पदार्थ को, चाहे वो कोई तरह का फल हो, कई लोग कीवी हो गया या पपीता हो गया, ये सब के खाने से किसी भी तरह से नहीं होता। पपीते के छाले को पीने के वजह से जो है कई बार गैस्ट्राइटिस या फिर लीवर इंजाइम के बढ़ने की या हल्के तरह से लीवर में सूजन की आने की संभावना बढ़ जाती है। तो लोगों में मैं ये इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन में बताना चाहूँगा कि यह बिलीफ सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, और आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लोग एक दूसरे को जो है वो शिक्षा जो है
1: हर आदमी
3: डॉक्टर बनने, तो यह नुकसान ज़्यादा करता है। तो जब कभी भी डेंगू होने, डेंगू में 95% बिल्कुल खुद ब खुद ठीक हो जाता है, सिर्फ 3 से 4% लोग हैं जिनको कि अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जिसमें कि डेंगू के जो सीवियर साइन जो होते हैं वो अगर उसको आप देखते रहें, आप अपने नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के संपर्क में रहें तो ये आपका ठीक रहेगा।
1: विजय कुमार कोल्हापुर से हमारे एक और श्रोता, विजय जी।
6: जी कनक दीदी नमस्ते।
1: नमस्ते
6: विशेषज्ञों को नमस्कार।
3: नमस्ते जी।
6: हाँ विजय कुमार महालिंगा, विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवर तहसील शहर जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी
1: जी।
6: मेरा सवाल यह है कि मच्छर कट गए तो, समझो मच्छर कटे तो कौन सी क्या सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए?
3: अगर मच्छर काट ले तो फिर उसके बाद उस जगह को हल्का सा रब कर दें और बस, ताकि वो आपको जो दर्द हो रहा है वो ठीक हो जाए। मच्छर काटने से बचने के लिए ये आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है जी।
1: मच्छर काटने के बाद बीमारी के लक्षण, रोग बुखार हो जाए, दर्द हो,
3: तब हो,
1: उल्टियां हो, तब आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। धारीवाल जी, 21 जुलाई को सरकार ने डेंगू की नई वैक्सीन क्यूडेंगा को स्वीकृति दे दी है। कहा जा रहा है कि डेंगू नियंत्रण उपायों में ये मददगार साबित होगा, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन करें।
0: ये बिल्कुल आपने ठीक जानकारी दी कि भारत सरकार ने ये क्यूडेंगा नाम की एक वैक्सीन है जो डेवलप हुई है, और इसका लाइसेंस भारत सरकार ने इशू कर दिया है। और ये एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो इसकी टेस्टिंग होती है, और पहले भी ये बात चली थी और डेंगू की वैक्सीन जो है वो आई थी, लेकिन भारत सरकार ने उसको लाइसेंस नहीं जो है वो किया था। इस बार वाली जो वैक्सीन आई है ये क्यूडेंगा, ये अभी लाइसेंस हुई है मार्केटिंग करने के लिए। अभी इसका उपयोग पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में, जैसे और दूसरी टीके लगते हैं बच्चों को, चाहे वो डीपी टीका हो, पोलियो का हो या आजकल पेंटावेलेंट जो है वो दिया जा रहा है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जा रही है, तो ये पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स मतलब सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाती हैं। अभी ये क्यूटेंगा वैक्सीन उस स्थिति में नहीं है,
1: भविष्य में

0: उम्मीद कर सकते हैं
1: भविष्य में इस पर जो अपना भारत सरकार का एक नियम है उसके द्वारा विशेषज्ञों के द्वारा इसकी जो है वो कि जब मासेस में यूज होगी
0: जी,
1: मतलब इसमें आपके प्रोग्राम के द्वारा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो डेंगू बुखार होता है वो चार तरह के है वायरल, लेकिन चार तरह के अलग अलग इसके वायरसेस होते हैं जिसको डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4 ऐसा नाम जो है वो दिया गया है। डेंगू 1 और डेंगू 3 माइल्ड होता है
0: जी,
1: और डेंगू 2 और डेंगू 4 ये सीवियर फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसमें जो कहा जाता है कि ब्लीडिंग की जो है वो टेंडेंसी हो सकती है। तो वो जो है वो आपस में कैसी रिएक्ट करेंगे
0: जी,
1: तो वो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में जब यूज होंगे मासेस में तब उसका
0: यूजली रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो म्यूनिसिपल एजेंसीज और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं मच्छरों को दूर रखने के लिए संक्षेप में।
2: जी इन बीमारियों के नियंत्रण की जिम्मेदारी व्यक्ति हर व्यक्ति और RWA की है। अपने आसपास जहां कहीं भी पानी अगर जमा हो रहा हो तो सप्ताह में एक दिन सभी लोग बाहर निकलें और उसके बाद ये करें, यह बीमारी जो है वो ठहरे हुए पानी में ये से फैलता है। अगर ठहरे हुए पानी में आसपास अगर सफाई रखेंगे तो सरकार को और हम सभी स्वास्थ्यकर्मी को नियंत्रण करने में काफ़ी मदद मिलेगी।
0: अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIRNSJTalks@gmail.com। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का यंग यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कनकलता को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
5: मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काईरूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काईरूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल

प्रयोग नहीं करने को कहा है। यूके पीएनपी ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांडर पोलिशुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दीपक सिंह कोस्ता की आवाज में अभी आप सुन रहे थे गजलें, कार्यक्रम गुलदस्ता में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि की 10:30 हुए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उदय कुमार मलिक का राग मियाँ की मल्हार में द्रुपद गायन। पखावज पर संगत कर रहे हैं शुभाशीष घोष।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में अभी आप सुन रहे थे उदय कुमार मलिक का राग मियां की मल्हार में ध्रुपद गायन। ये आकाशवाणी दिल्ली का अंतरप्रस्थ चैनल है, मिडे वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को है, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
2: मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्षी दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर 89 अमरीकी डॉलर और 74 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार वर्षा जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 2400 घंटे अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. A report.
2: For the sixth consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Raj Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIRs filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments while Raj Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation aims to strengthen the transparency, fairness and integrity of the examination system by establishing a robust legal framework while safeguarding the future of the students. It incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju alleged that Congress and its allies are deliberately not allowing discussion in the
4: House. I would like to thank you for providing adequate time for discussion on this very important bill. A large number of amendment notices have also been submitted, which clearly shows that many members wish to express their views on this significant legislation. You have also assured the House that sufficient time will be given for the discussion. Then why are they raising slogans and trying to disrupt this debate? The entire nation, especially the youth, is closely watching these proceedings. I once again request the Congress party to counsel its members so that we can begin a meaningful discussion on the bill.
2: Despite repeated appeal from the chair and the government, the opposition members were on their feet in both the houses. As the pandemonium continued, both Lok Sabha and Raj Sabha were adjourned for the day to meet on Tuesday. During the ongoing monsoon session, so far, no substantive business has been transacted in Parliament. With Anupam Misra, Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
3: Prime Minister Narendra Modi today interacted with Pavan Chandana and Nagabharat Daga of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in their discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about the journey and insights into their future plans. He said their energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. The Uttar Pradesh government today informed the Supreme Court that it has set up a 4-member special investigation team SIT headed by Inspector General of Police IG for the Lucknow Range, Kiran S., to probe the alleged embezzlement of donations received by the Ram Temple Trust in Ayodhya. The team will also include a DIG rank officer, a senior superintendent of police and an additional SP. The top court asked the state government to include a forensic auditor as the 5th member of the

0: SIT, which will submit its first status report within 2 weeks. The bench was hearing a batch of petitions seeking a CBI investigation into the allegations of embezzlement of donations and audit of the temple trust finances. Union Minister for Development of Northeastern Region Jyotiraditya Scindia today chaired the Ministry of Development of Northeastern Region Parliamentary Consultative Committee meeting in New Delhi to review the progress of flagship Unique Selling Proposition USP initiative. Indian weightlifter Gyaneshwari Yadav clinched the silver medal in women's 53kg category at the Commonwealth Games in Glasgow today. Asian Championship bronze winner Gyaneshwari lifted 88kg in the snatch section and 111kg in clean and jerk for a total lift of 199kg. Onome Omolola Didi of Nigeria won the gold with a Commonwealth and Games record total lift of 206kg. Another Indian weightlifter, Vindhya Rani Devi, won the bronze medal in the women's 58kg category competition. Vindhya Rani lifted 87kg in the snatch section and 112 in the clean jerk for a total lift of 199kg. And that is the end of this news bulletin.
1: Yeah. आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि की 11:10 हुए हैं। सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रिया का प्यार भरा नमस्कार। मैं कार्यक्रम आपकी पसंद में लाई हूँ आपकी फरमाइश के गीत। दोस्तों, आज दिल्ली की बारिश ने ना पूरे मौसम का मिजाज ही बदल दिया। तपती गर्मी में राहत मिली और हवा की एक ताजगी सी घुल गई। कहते हैं ना दोस्तों, पानी का अपना कोई रंग नहीं होता है, वह जिस रंग में मिल जाए उसी जैसा नज़र आने लगता है। ठीक वैसे ही इंसान की पहचान भी उसकी संगत और उसके विचारों से बनती है। इसलिए हमेशा अच्छी सोच और अच्छे लोगों का साथ चुनिए। तो चलिए इसी खूबसूरत सोच और इस प्यारे से मौसम के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में आप सुन रहे थे खूबसूरत गीत फिल्म शोर से। इस गीत की फरमाइश की थी एयरपोर्ट रोड वंदना नगर से इंदौर मध्य प्रदेश से नारायणा खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक और परी और स्वाति प्रयाग चौधरी ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र और गुरप्रीत, लवप्रीत कौर ने और करमजीत कौर ने। दोस्तों जब भी मैं ना आसमां को देखती हूँ लगता है जैसे वह किसी की कहानी चुपचाप से सुन रहा है, किसी के सपनों का गवाह है तो किसी की दुआओं का साथी और किसी के इंतज़ार का हमसफ़र।

किशोर कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म कलाकार से इस गीत की फरमाइश की थी राजस्थान से राजेश कुमार मेहरा नंद किशोर विनोद अर्जुन दुर्गा शंकर सिकंदर राहुल चंदू देवराज लक्ष्य और समस्त गोस्वामी परिवार ने। साथ ही दिल्ली से इस गीत की फरमाइश की थी प्रियाशी एसपी सिंह वेदांशी नीलम मनीष गीतांजलि रणवीर और तनिष्का ने। दोस्तों मोहब्बत की शुरुआत अक्सर एक ख्याल से होती है और फिर दिल यही सोचता है कि काश कोई ऐसा मिले जो हर खुशी और हर मुश्किल के साथ निभाए। इसी भावना के साथ हम पेश करते हैं अगला गीत कार्यक्रम का।

अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म चालबाज से। इस गीत की फरमाइश की थी अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रज़िया बेगम, मोहम्मद सादिक, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवान परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद, और हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहरा जहाने। जिंदगी की भाग दौड़ में ना अगर दोस्तों अगर कभी दिल उदास हो जाए तो उसे अपने के पास ज़रूर लौटिए जो आपकी खामोशी को भी समझता है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म कुली नंबर 1 से। गांव लोहागढ़ ठकुरा वाला से इस गीत की फरमाइश की थी स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक ने।

दोस्तों, चूड़ियों की ना खनक में एक अलग सा जादू है। ये सिर्फ हाथों की शोभा नहीं बढ़ाती, बल्कि रिश्तों में प्यार और अपनापन का एहसास भी घोल देती है। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म यस बॉस से। इस गीत की फरमाइश की थी शास्त्री नगर भीड़ शहर से किशन सबपाल, आशा सबपाल, सोनिया सबकाल, साहिदा सबकाल, विशाल सबकाल ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी फातिमा कलोनी महाराज से, नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद, गोविंदपुरा से अहमदनगर से, गोविंदापुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा माइकल, जनेब मुजावर ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके से। इस गीत की फरमाइश की थी रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नयाब और लड्डू ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म हाँ मैंने भी प्यार किया है। इस गीत की फरमाइश की थी सोनीपत से सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन मुखी ने।

0: उदित नारायण की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर। हमारे प्रसारण जारी हैं। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने के विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्यों को घायल कर दिया। स्थानीय निवासियों ने ये जानकारी दी। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने बताया कि यह हमला कडुना राज्य के कौरा परिषद क्षेत्र के नारीडोन गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी समय इसी समुदाय पर हमला हुआ था। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6ठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन और खिलाड़ियों और दर्शकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष के टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी गई है, जबकि अगले वर्ष से विजेता टीम को 2,00,000 रुपये और उपविजेता को 1,00,000 रुपये मिलेंगे। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन

दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा, आपका पसंदीदा शो। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज सरिता आपके लिए आज के कार्यक्रम में किस कलाकार को लेकर आई है। तो हम आपको बता दें कि आज जो कलाकार हैं, गायिका हैं आज के सुरों के सफ़रनामा की, वो हैं अलका याग्निक। दोस्तों, जब भी बात होती है 90 के दशक की और बात होती है रोमांस की, बारिश की बूंदों की, या फिर पहली मोहब्बत की, एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी सुरीली आवाज़ जो हमारे कानों में मिसरी घोल देती है, एक ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर लगता है कि दिल का हर कोना गुनगुना उठा, गा उठा। जी हाँ, बॉलीवुड की आइकॉनिक मेलोडी क्वीन अलका याग्निक जी। तो हम अपनी यादों की खिड़की को खोल लें, क्योंकि आज जिस सफ़र पर हम चले हैं वो सफ़र बहुत ही सुरीला है, बेहद कर्णप्रिय है। आपको कार्यक्रम पसंद आएगा, गीत संगीत पसंद आएगा, और इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ा रहना है। जी हाँ, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ आप इस कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा में अपने ईमेल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। जी हाँ, ये वो माध्यम है जिसके ज़रिए आप साझा कर सकते हैं अपने दिल की बात हमारे साथ।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज सुरों के सफ़रनामा में अलका याग्निक की, और अब हम बात करते हैं उस गीत की जिस गीत ने अलका को, जी हाँ, फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया, उन्हें इतना पॉपुलर कर दिया। और यकीन मानिए कि उस गीत ने अलका याग्निक को फिल्म फेयर अवार्ड तक दिला दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वो गाना कौन सा है, तो हम आपको बता दें कि वो गाना है जो हम अगले ही पल प्ले करने वाले हैं। और उस गाने के बारे में हम आपको बताएं कि वो गाना ऐसा है, क्या है, सुनते ही हर इंसान, हर श्रोता थिरकने लगता है। और उस गाने की रिकॉर्डिंग की अगर बात की जाए, तो जब उस गाने की रिकॉर्डिंग हुई, उस समय अलका जी का गला खराब था, उन्हें तेज़ बुखार हो रहा था, और यकीन मानिए वो तो रिकॉर्डिंग करना भी नहीं चाहती थी। लेकिन शुक्रिया अदा किया जाए लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल जी का, उन्होंने कहा कि वे बस एक बार कोशिश तो करें, इस गीत को गाएं तो सही। अलका याग्निक ने उनकी बात को सुना और अपनी टूटी आवाज़ और साथ ही साथ बुखार में जो वो तप रही थी, फिर भी उन्होंने इस गीत को गाया। और बाद में जब ये गाना रिलीज़ हुआ, तो उस गाने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अलका जी को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड इसी गाने ने, जी हाँ, दिलवाया।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें।

दोस्तों, अलका जी के सुरों का सफ़र की शुरुआत होती है कलकत्ता से, लेकिन उनके जो सुरों की गूंज है वो पूरे देश को अपना दीवाना बना देती है। महज 6 साल की उम्र में उन्होंने आकाशवाणी रेडियो के लिए गाना शुरू कर दिया था। जब वो मुंबई आई तो उनकी आवाज़ का जादू ऐसा चला कि हर बड़े डायरेक्टर की वो पहली पसंद बन गई। अलका याग्निक जी का जन्मदिन 20 मार्च को होता है और उनका जन्म 20 मार्च 1966 को कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था। और अगर आप उनके रेडियो शो शुरू का सफ़रनामा का जिक्र करें तो जी हाँ, बिल्कुल, आप आज सुन रहे हैं इस कार्यक्रम में अपनी दोस्त सरिता के साथ। दोस्तों, 20 मार्च का वो दिन भारतीय संगीत के लिए के इतिहास में बहुत खास था, क्योंकि इसी दिन एक सुरीले परिवार में जन्मी थी हमारी मेलेडी क्वीन अलका याग्निक। मार्च का महीना बसंत का होता है और उनकी आवाज़ भी बाहर से, किसी बाहर खूबसूरत बाहर से कम नहीं है। पिछले 4 दशकों से उनकी आवाज़ हमारे दिलों पर राज कर रही है, हमारे दिलों में गूंज रही है। और दोस्तों, फिलहाल तो मेरे सामने मुझे एक संदेश नजर आ रहा है, भेजने वाले हैं सुनील कुमार गुंद, नैनीश गुंद उर्फ नील माधव, और इन्होंने भेजा है ये ईमेल संगरूर पंजाब से। ये मिसाल मैन ऑफ इंडिया, पूर्व राष्ट्रपति और साइंटिस्ट स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और इन्होंने हम तक अपना ईमेल पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सुन रहे हो कार्यक्रम सुरों का सफ़रनामा और आज इस सफ़र पर हम लेकर चले हैं, हमारे साथ हैं अलका याग्निक। जी हाँ, सफ़र है अलका याग्निक के सुरीले गीतों का। दोस्तों, आप भी अपने संदेशों के ज़रिए हम तक पहुंच सकते हैं। हमारा मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। आज की हमारी कलाकार हैं अलका याग्निक।

दोस्तों, दिल्ली में मौसम का मिजाज थोड़ा सा बदल रहा है, और ऐसे सुहाने मौसम में अगर अलका जी की आवाज़ के साथ साथ, जी हाँ, गरम गरम चाय हो जाए तो क्या बात है। फिलहाल रात की बात है, लेकिन रात में चाय तो किसी वक्त भी चल सकती है। तो ऐसा करते हैं, जो अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, एक खूबसूरत सा गीत सुन लें हम, उसके बाद हम बात करेंगे।

माँ शुभा याग्निक शास्त्रीय गायिका थीं और मैं 6 साल की उम्र में उन्होंने अलका याग्निक को आकाशवाणी के लिए गाने के लिए उत्साहित किया और यही वजह थी कि वो 10 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ मुंबई आ गई थी। तो मुंबई आकर जब अलका को फिल्म फेयर अवार्ड में राज कपूर जी मिले और राज कपूर जी ने उनकी आवाज़ सुनी, फिल्म मेकर राज कपूर जी ने उनकी आवाज़ सुनी तो उनकी आवाज़ के वो मुरीद हो गए। वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अलका जी को एक खत लिखकर उस दौर के दिग्गज संगीतकार कल्याण जी और आनंद जी के पास भेज दिया। राज कपूर जी ने अलका याग्निक की आवाज़ को बहुत अनोखा नाम दिया। उन्होंने कहा कि अलका की आवाज़ बिच्छू के डंक के समान है। और दोस्तों, अलका जी की अगर आवाज़ की बात की जाए, उनकी जुगलबंदी की बात की जाए, तो बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन जब बात अलका और उदित नारायण की हो, जब ये दोनों माइक के पीछे खड़े होकर खूबसूरत आवाज़ में स्टूडियो में अपनी आवाज़ से जब जादू बिखेर देते हैं, तो उस आवाज़ में जो मासूमियत होती है, जो केमिस्ट्री होती है, वो सीधे दिल को छू लेती है। ऐसा लगता है कि दोनों ही एक दूसरे के सुरों को पूरा कर रहे हैं। तो आइए, जो अगला गाना है वो अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़।

दोस्तों, अलका जी की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उनकी पर्सनल लाइफ बहुत दिलचस्प रही है। उन्होंने 1989 में शिलोंग के बिजनेसमैन नीरज कपूर से शादी की, लेकिन अपने कैरियर और काम की वजह से दोनों पिछले 35 साल से ज़्यादा समय हो गया है अलग अलग शहरों में रहते हैं। अलका जी मुंबई में और नीरज शिलोंग में, लेकिन फिर भी बिना किसी विवाद के ये आपसी समझ और भरोसे के दम पर इनका रिश्ता, लॉन्ग डिस्टेंस जो रिश्ता है, वो आज भी बेहद मजबूत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अलका याग्निक जी का नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है? उन्होंने अपनी जादुई आवाज से हजारों गाने गाए हैं और वो भी बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स। जी हाँ, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर जीतने का मामला अगर किया जाए तो उसमें अलका याग्निक जी टॉप पर आती हैं। पूरे 7 अवार्ड्स से उन्हें नवाजा गया है। चलिए एक और खूबसूरत से गीत के साथ हम आपको नवाजते हैं। इस गीत को एंजॉय कीजिए।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

दोस्तों, वक्त का पता ही नहीं चला और सुरों का सफरनामा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया। अलका याग्निक की आवाज ने हमें हंसाया भी है, रुलाया भी है और सबसे बढ़कर प्यार करना सिखाया है। उनकी आवाज कल भी, आज भी और आने वाले कई दशकों तक गूंजती रहेगी। तो फिलहाल अपनी दोस्त सरिता को शुरू का सफरनामा कार्यक्रम को यहाँ संपन्न करने की इजाज़त दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए एयर लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल को। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त और जाते जाते ये खूबसूरत सा गीत एंजॉय कीजिए। नमस्कार।

0: न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। स्टूडियो की घड़ी में रात के 1 बजने को है। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार 6ठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने के विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्यों को घायल कर दिया। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने कहा कि यह हमला कडुना राज्य के कौरा परिषद क्षेत्र के नारिडोन गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी समय इसी समुदाय पर हमला हुआ था। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6ठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन और खिलाड़ियों तथा दर्शकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष के टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी गई है, जबकि अगले वर्ष से विजेता टीम को 2,00,000 रुपये और उपविजेता टीम को 1,00,000 रुपये मिलेंगे। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। वहीं अंकुश भी पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने एंटीगुआ और बारबूडा के जान जालान को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराया। बुधवार को क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला सेशल्स के जेड माइकोक से होगा। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: weightlifting event at the Commonwealth Games. In a social media post, the vice president said her strength, resilience and unwavering pursuit of excellence have brought yet another moment of pride to India on the international stage. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AI लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 1:10:15 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त होता है कार्यक्रम गीत सुनहरे का। आज के गीत सुनहरे कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। लाई हूँ गोल्डन एरा के वो खूबसूरत गीत जो हमेशा सदाबहार रहते हैं। तो इन्जॉय कीजिए इस खूबसूरत से गीत को, जिसे गाया है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी।

आइए सुनते हैं अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है अपनापन।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में स्वामी फिल्म का ये गीत। लीजिए सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है त्रिशूल। आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। संगीत दिया है खयाम ने और गीतकार हैं साहिर।

अभी आप सुन रहे थे बप्पी लाहिरी का संगीत दिया हुआ फिल्म टूटे टूटते खिलौने का ये गीत, आवाजें थी येशु दास की। आइए सुनते हैं अगला गीत। संगीत दिया है आर डी बर्मन ने, फिल्म का नाम है कस्मे वादे, आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है।

चीजें सुनते हैं अगला गीत फिल्म हम किसी से कम नहीं से। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी और सुषमा श्रेष्ठ की, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

लीजिए सुनिए अगला गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अदालत, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

इसे सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म का नाम है बदलते रिश्ते। आवाज़ें लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की हैं। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इसी खूबसूरत गीत के साथ फिलहाल गीत सुनहरे कार्यक्रम को संपन्न करने की अपनी दोस्त सरिता को दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए AIL Live News 24x7 चैनल के साथ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में पहले हिंदी में और उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार 6ठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के

0: दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्य को घायल कर दिया। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने कहा कि यह हमला कडुना राज्य के कौरव परिषद क्षेत्र के नारीडोन गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी समय इसी समुदाय पर हमला हुआ था। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6ठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन और खिलाड़ियों तथा दर्शकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष के टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी गई है, जबकि अगले वर्ष से विजेता टीम को 2,00,000 रुपये और उपविजेता टीम को 1,00,000 रुपये मिलेंगे। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। अंकुश भी पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने एंटीगुआ और बारबुडा के जान जालान को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराया। बुधवार को क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला सेशल्स के जेड माइकोक से होगा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इस बीच तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, public grievances and

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। गीत बहार कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार। ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3 बजने को हैं। अब समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्यमंत्री किरेन

0: रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस भी हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम एलोटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मंत्रालय की प्रमुख अद्वितीय विक्रय योजना यूएसपी पहल की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की भूमिका केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना और कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सभी हितधारकों को जोड़ना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने नवनियुक्त अधिकारियों से सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और जनहित को बनाए रखने का आग्रह किया और भारत के पूंजी बाजारों की नींव के रूप में विश्वास पर बल दिया। एनआईएसएम में आयोजित एक दीक्षांत कार्यक्रम में अधिकारियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि सेबी की भूमिका विनियमन से परे निवेशकों के विश्वास की रक्षा तक फैली हुई है। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6ठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीमों ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा तथा मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, वक्त हो चला है 3:10 और 10 सेकेंड और ये समय है हमारे कार्यक्रम गीत और गजल का।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अर्चना। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। इसके अंतर्गत लीजिए सुनिए टीके जयराम अय्यर द्वारा बजाए वायलन पर ये प्रस्तुति।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नाद ब्रह्म कार्यक्रम। इसके अंतर्गत अभी आपने टीके जयराम अय्यर द्वारा बजाए वायलन पर ये प्रस्तुति सुनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की छठी तिथि, तदनुसार 28 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 और 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप जानेंगे बद्ध पद्मासन के बारे में। 5:20 पर आप आनंद ले सकते हैं देशभक्ति गीत का।

5:30 का वक्त होगा कार्यक्रम स्वर रंजनी का, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सुधा माथुर द्वारा गाया राग यामिनी बिलावल। सुबह 6 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार, जबकि 6:05 का वक्त होगा अंग्रेजी में समाचार का। 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना।

0: सुबह के 5 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज सुबह 11 बजे तक के लिए कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमफुर्मी में हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंडर पोलिशुक को तलब किया है। इस हमले में एक भारतीय की मौत भी हो गई है। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की निंदा कड़ी है। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, यह अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन

0: हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। एक दिन के लिए निर्धारित चुनाव अब अगले महीने की 10 तारीख तक 3 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने चुनाव का बहिष्कार किया, जबकि संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीटीआई का दावा है कि पिछले महीने जेएएसी के विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई हिंसक झड़पों में 100 से अधिक लोग मारे गए, जिसके कारण लगभग 50 दिनों तक क्षेत्र में अशांति रही। नाइजीरिया के कडुना राज्य में कल बंदूकधारियों ने कम से कम 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्य घायल हो गए। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने बताया कि यह हमला कडुना राज्य के कौरा परिषद क्षेत्र के नारीडों गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी समुदाय पर इसी समय हमला हुआ था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की। वे कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि कार्यबल देश के खिलौना उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिला शूट पुट F57 फाइनल में जीत हासिल करके देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही पांचवें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। वल्लूरी अजय बाबू ने पुरुषों के भारोत्तोलन के 79 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। वहीं एथलेटिक्स में सर्वेश अनिल कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद में दूसरा स्थान हासिल करके एक और रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले मीराबाई चानू ने 190 किलोग्राम भार उठाकर महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए खिताब जीतकर भारत के लिए स्वर्ण पदक की शुरुआत की। भारत के आदित्य पटनायक ने सेपांग अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में गोल्ड व्यूज चैंपियनशिप मलेशिया के तीसरे दौर में स्पोर्टिंग क्लास जीतकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार रेसिंग खिताब जीत लिया है। इससे पहले वे लगातार 2 साल पोलो कप इंडिया में उपराष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Both the Houses of Parliament were adjourned yesterday following uproar by opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. In the Lok Sabha, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date of information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Prime Minister Narendra Modi yesterday interacted with Pavan Chandana and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in their discussion along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about their journey and insights into their future plans. He said their energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. The Uttar Pradesh government has informed

शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन दो शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं, हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। श्वास अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांघ पर ले आएं और फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा। अब अपना बायां हाथ पीठ के पीछे से आगे की ओर ले आएं और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ दें। यह करने के बाद इस मुद्रा में एक से दो बार सांस अंदर और बाहर लें। और अब यही क्रिया दाएं हाथ से भी दोहराएं। बहुत से लोग ये आसन उतनी आसानी से नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए जहां तक आपके हाथ जाते हैं पद्मासन में बैठे हुए, पीठ के पीछे से क्रॉस करते हुए जितनी दूरी तक आपके हाथ जाते हैं वहां तक ले जाएं। नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ेगा और आप इस आसन को पूरी तरह से कर पाएंगे। जिन लोगों का बद्ध पद्मासन लग चुका है, अब आप उस मुद्रा में थोड़ी देर बैठें और कुल मिलाकर 5 बार सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, ताकि आप आसन में 30 से लेकर 60 सेकेंड यानी 1 मिनट तक रह सकें। धीरे धीरे जैसे आपके शरीर में ताकत और लचीलापन बढ़ने लगे, आप इस समय को बढ़ा भी सकते हैं, परंतु कभी भी इस आसन को 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड से ज्यादा ना करें। 5 बार सांस लेने के बाद आप इस मुद्रा से बाहर आ सकते हैं। अब बद्ध पद्मासन करने के लाभ के बारे में बात करें। बद्ध पद्मासन घुटनों और कूल्हों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है। कंधों, कलाइयों, पीठ, कोहनियों

0: राहत दिलाता है। बद पद्मासन का दैनिक अभ्यास गठिया में भी आपको फायदा देता है, लेकिन इस आसन को करने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये आसन निषेध है। जिनके घुटनों में तीव्र दर्द हो उन्हें बद्ध पद्मासन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हैमस्ट्रिंग में चोट हो तो बद्ध पद्मासन ना करें। कंधों में चोट या दर्द हो तो ये आसन आपके लिए वर्जित है। और हमेशा की तरह एक सुझाव, अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर न लगाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी एक नए आसन के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत अभी आपने बद्ध पद्मासन के बारे में जाना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत अभी आप सुनेंगे सुधा माथुर द्वारा राग यामिनी बिलावल।